0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके

अपने अंदर रह सकता है, इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से, लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है, इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं, लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवान रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 की लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल ना पिएं, थोड़ा सा बचें। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिएं। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें। योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुने योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा
वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं, उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं, बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है, लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है, इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से, लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है, इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं, लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए।
जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवान रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिएं, थोड़ा सा बचें। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिएं। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में है। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम स्वचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या।
क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिल करके, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में, यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़ें और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप 0 पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें। यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है, बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20 से 30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन, यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम
भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूँ, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी, आपको आदत डाल लेनी।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार श्रोताओं, सुबह की भोरी भोरी की पहली किरण के साथ मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा हाजिर हूं आपके आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण में। आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन है, कारण आज है सीता नवमी, यानी वो दिन जिस दिन माता सीता का इस धरती पर अवतरण हुआ था। सीता हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी और महाकाव्य रामायण की नायिका है, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार और राम की पत्नी माना जाता है। राजा जनक की पुत्री सीता साहस, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन में 14 वर्ष का वनवास, रावण द्वारा अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी चीजें शामिल हैं। तो बहुत कुछ है जो हम इनके जीवन से शिक्षा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के जीवन और जीवन शैली पर चर्चा करेंगे आपके सुबह के कार्यक्रम यानी पहली किरण में। फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

जानकी, मैथिली और वैदेही, इन सभी नामों से जानी जाती हैं माता सीता। उन्हें पृथ्वी की संतान माना जाता है, जिन्हें राजा जनक ने एक हल्की नली में पाया था। ये एक आदर्श पत्नी और सद्गुणों की प्रतीक हैं, जिन्हें देवी रूप में पूजा जाता है, जो अपार कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करती हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी की पुत्री यानी धरा धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई, तो जिस तरह से जो सहन शक्ति हम माता धरती में देखते हैं, उसी तरह से इनके भीतर भी इनके पूरे जीवन काल में सहन शक्ति देखी जाती है, जो कि महाकाव्य यानी कि रामचरित के कई सारे दृश्यों में पढ़े जा सकते हैं। अब बात करेंगे रामायण की, जिसमें माता सीता के उस गुण की व्याख्या की गई है जिसे बोला गया है पवित्रता। यानी कि रामचरितमानस में माता सीता के सहन के गुण को ऊपर रखा गया, केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बनाया गया है। और वही जो कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित मानी जाती है, उसमें केंद्र बिंदु माता की पवित्रता को बनाया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कुछ कथाओं में माता सीता को माया सीता कहते हैं, यानी छाया या फिर भ्रमित सीता, ऐसे भी उल्लेख पाए जाते हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया था, जबकि वास्तविकता में सीता सुरक्षित रही। ये सारी चीजें किंवदंतियों में पाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और सीता नवमी और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों के साथ इन्हें विशेष रूप से रामानंदी संप्रदाय के भीतर सुंदरता और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और ये दिवस मनाया जाता है। और अगर माता सीता की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाभिमान नहीं छोड़ा इन्होंने। और इनसे लेने वाली शिक्षा की अगर बात करूं तो EQ यानी कि इमोशनल क्वांटिटी जो इनमें है, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, तो हमें अपनी भावनाएं समझने और संभालने की कला सिखाती हैं माता सीता। जैसे कि टॉक्सिक रिश्तों परिस्थितियों में सीमाएं तय कर पाना, हम इनके जीवन की अगर चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, इनकी चीजों को समझेंगे, तो वहां से हमें ये सीख प्राप्त होगी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है और निर्णय स्पष्ट किस प्रकार से रखना है, ये हम रामचरितमानस के माता सीता के पात्र से या फिर रामायण के माता सीता के पात्र से बखूबी सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं माता सीता की ध्यान की ओर, एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

श्रोताओं, आपने वो कथा तो सुनी ही होगी जो कि पूरे के पूरे 14 वर्षों के वनवास की है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जानकी, भूमिपुत्री, जनकात्मजा, रामवल्लभा, भूसुता, मैथिली, सिया आदि नाम वाली माँ सीता की, जिन्हें माना जाता है लक्ष्मी का अवतार। रामायण और रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में इनका उल्लेख पाया जाता है। इसलिए आज के आध्यात्मिक शो यानी कि पहली किरण में आज मैं लेके आई हूँ माता सीता की जीवन शैली और उनसे जुड़ी हुई कुछ कलाओं को, उनके कुछ गुणों को, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर आत्मसात करके अपने जीवन को और सरल और सुगम बना सकते हैं।

अगर इनके जीवन साथी की बात की जाए तो वो थे प्रभु श्री राम। इनके दो संतान थी लव और कुश। माता पिता की बात करें तो जनक जी इनके पिताजी थे और सुनैना इनकी माता थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीता रामायण के अनुसार मिथिला के नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री व अयोध्या के नरेश दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र यानी राम की भार्या थी, जिन्हें त्रेता में लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। रामायण के अनुसार राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक कलश से अटक गया था उनका हल। इन्हें उस कलश में पाया गया था। राजा जनक और रानी सुनैना ने गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा के दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया। उसके बाद सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला इनकी छोटी बहन थी। और त्रेता युग में जब बहुत ही विकट समस्या सामने आई तो माना जाता है कि राक्षस लोग इस तरह उत्पात मचा रहे थे कि सभी देवताओं का वो मर्दन करते जा रहे थे और उससे उनके जो रक्त होते थे उसको भर भर के उन्होंने जनक की भूमि पर गिराया था, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था। उस वक्त जरूरत थी कुछ ऐसे चमत्कार की जिससे भूमि फिर से हरी भरी हो सके। तो फिर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने हल चलाया और वहां से उत्पत्ति हुई माता सीता की, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और उसके बाद हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा और जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को मिथिला में हुआ।

श्रोताओं, शो चल रहा है आपका भोरी भोरी का पहली किरण। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं माता सीता की। अभी हमने कुछ बातें की और अब बात करेंगे माता सीता के विवाह की। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाकर भंग किया। इस तरह माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह होना निश्चित हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, और मांडवी जो कि माता सीता की बहन थी का विवाह भरत से। साथ ही साथ श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से होना निश्चय हुआ। विवाह उपरांत सीता अयोध्या आई व उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। सीता की रीति से अगर कुछ सीखने की बात करें तो कर्तव्य निष्ठा इन्होंने बखूबी निभाया है अपनी लाइफ में। परिवार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी यानी भरोसेमंद व्यक्तित्व, टीम में सम्मान और दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता, ऐसे गुण अगर आपको सीखना है तो माता सीता के जीवन से बखूबी आप सीख सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने जाना माता सीता के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके विवाह के बारे में। अब बारी आती है उस पल की जब 14 वर्ष का वनवास आया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ माता सीता चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर वनवास के लिए गईं। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में इन्होंने वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीची सोने के हिरण का रूप धर राम और लक्ष्मण को वन में ले गया और उनकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों की उपस्थिति में इनकी देखरेख की गई।

यहाँ पर अगर मैं आपसे माता सीता के जीवन से कुछ गुण सीखने की बात करूंगी तो वो है धैर्य। आजकल के लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो यहाँ से हम सीख सकते हैं। अशोक वाटिका में अटूट धैर्य की आवश्यकता थी जो माता सीता ने दिखाई। माइंडफुलनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक माता सीता के जीवन से हम सीख सकते हैं। दबाव में भी शांति और केंद्रित कैसे रहते हैं ये हम माता सीता के जीवन से सीखते हैं। पढ़ाई काम में निरंतरता और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए माता सीता का अनुसरण करें। चलिए फिर चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, अभी हम चलेंगे उस ओर जब एंट्री होती है हमारे महाबली की यानी कि हनुमान जी की। जी हाँ, हमने जाना कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे रहा, फिर उनका विवाह, फिर 14 वर्षों का वनवास, उसके बाद में रावण द्वारा इनका अपहरण, और अब बारी आती है हनुमान जी से इनकी भेंट की। जैसा कि रामचरितमानस में और रामायण में पढ़ने पे प्राप्त होता है कि सीता जी की वन वन खोज करते राम जटायु तक पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण द्वारा दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना दी। राम लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलकर वे हनुमान जी से मिले जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम जी संग मैत्री के बाद में सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता माता लंका स्थित एक वाटिका में है।

श्रोताओं, इस प्रकार हनुमान जी को जामुन जी द्वारा उनकी शक्ति का भान कराया गया। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारियों की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है, राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है, रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इस घटना से निराश रावण ने राम को लंका आकर माता सीता को मुक्त कराने के लिए 2 माह की अवधि दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर श्री राम 2 माह की अवधि तक नहीं आए तो उसके उपरांत रावण व सीता का विवाह होना निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज धराया माता सीता को और कहा, श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। चलिए फिलहाल हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन जो कि श्री राम जी को अर्पित है।

त्रिजटा राक्षसी के धीरज धराने के उपरांत हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन किया और अपने लंका आने के कारण को बताया। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचार करने लगी। श्री राम जी की मुद्रिका देकर हनुमान जी कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती हैं कि नहीं, ये अनुचित है, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हें भले ही पुत्र मानती हूँ पुत्र, पर समाज की नजरों के लिए ये उचित नहीं है। रावण ने मेरा हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से अगर कोई मुझे मुक्त कराएगा तो वो मेरे प्रभु श्री राम ही होंगे, और ये उनका कर्तव्य भी है। विशेषता रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करते हुए माता सीता ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति ले महाबली अपने यात्रा की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार हनुमान जी सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना को अपने साथ लेकर हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे, माता सीता की चूड़ामणि दी और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। तो श्रोताओं, ये थी रामचरितमानस और रामायण में उल्लेखित वो कथा जो कि माता सीता के जीवन पर आधारित थी। इसके अलावा अगर आज की लाइफस्टाइल और उस समय की यानी कि त्रेता युग की बात करें, तो अगर हम माता सीता से सीखने की बात करें तो हर परिस्थिति में करुणा और संवेदनशीलता कैसे सीखनी है, ये हम इनके जीवन से जान सकते हैं। रिश्तों में मजबूती और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप में वृद्धि के लिए भी हम माता सीता के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें स्वाभिमान, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना, समानता, अधिकार और न्याय की समझ, इन सभी को भी हम माता सीता के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। सम्मानजनक समाज का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, लड़कियों में आत्मविश्वास और लड़कों में संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, तो माता सीता से ये हम सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से गहरा संबंध, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार हम निर्वहित कर सकते हैं, ये भी हम माता सीता के जीवन से सीख सकते हैं। संस्कार और वैल्यू एजुकेशन, ये सीखना हो तो हमें लवकुश के श्रेष्ठ संस्कारों की ओर चलना चाहिए। कहा जाता है लवकुश बहुत ही छोटे थे उम्र में, तभी से इन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया था, सारी कठोरताओं को सीखते हुए ये बड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे माने तो कम वर्ष में राजा बनना था उन्हें, इसलिए कहीं ना कहीं प्रकृति उन्हें सिखा रही थी, प्रकृति यानी माता सीता स्वयं। और जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं तो हम उनके साथ कठोरता नहीं करते हैं, हम उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगली पीढ़ी में नैतिकता और अनुशासन डालना बेहद जरूरी है, परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं इससे, इसलिए न्यू अगर डालनी है तो हमें संस्कार डालने होंगे बच्चों में। और ये भी अगर हम सीखने की बात करें तो हम माता सीता के जीवन से बखूबी सीख सकते हैं।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: सो मैं यहाँ हूँ और यहाँ। वेलकम करते हैं मॉर्निंग वाले शो में आपका। आपने ट्यून कर लिया गुड मॉर्निंग गुंडा और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। दिन सैटरडे यानी वीकेंड वाली वाइब के साथ हम शुरू कर रहे हैं आपसे बातचीत। सो चलिए भाई, जब दिन इतना अच्छा है और मौसम इतना मस्त है, हालांकि मौसम में धूप फिलहाल निकल आई है, अब मौसम भी कंफ्यूज्ड होने लगा है कि व्हाट शुड आई डू। सो चलिए हम अपनी मॉर्निंग का तो मौसम बना के ही रखते हैं। सो फिलहाल आज सैटरडे है और सैटरडे वाला पूरा का पूरा फील लेने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि सैटरडे को छोड़ना नहीं चाहिए भाई। वो एक अलग ही फील आता है कि कल संडे है, कल ऑफ है, और इसी बीच में अगर हम पूरी तरह से एंजॉय करते हैं तो हमको फिक्र नहीं होती है। सो चलिए ऐसे दिन में, ऐसे वक्त में आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन से थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का आपका थॉट ऑफ द डे क्या है आपके मॉर्निंग वाले शो का, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो भाई आपको आज के थॉट ऑफ द डे से रूबरू कराते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? आज का थॉट कहता है कि राह तो बड़ी सीधी है। क्या राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। ये छोटी सी दो लाइंस और प्रभाव उतना ही ज्यादा। राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। राहें हमेशा सीधी रहती हैं, जब कोई चीज करना हो तब भी और जब कुछ छोड़ना हो तब भी राहें अपने में क्लियर रहती हैं। मोड़ जो आते हैं हमारे वो मन के आते हैं। हालांकि हमको पता होता है कि सारी चीज़ें सीधी सीधी करनी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों जैसे अजब सी कैफियत, अजीब सी हॉल रहती है, घबराना, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो मोड़ जो होते हैं वो मन के होते हैं, जहाँ पे हम कन्फ्यूज्ड होते हैं, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें मन की होती है और राहें हमेशा बहुत सीधी होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब बहुत सिंप्लिसिटी के साथ अपनी लाइफ को देखने लग जाते हैं तो यकीन मानिए कि ऐसे वक्त में हम कहीं ना कहीं अपनी उन चीज़ों को जिनको हम सीधे सीधे कर सकते थे उसको कर लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये तो सच में काफ़ी इजी है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आती है जहाँ पे हम खुद से कई चीज़ों को क्रिटिकल बना लेते हैं, सोच सोच के, फलाने क्या सोचेंगे, धमाके क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या रहेगा। इस तरह से हर शख्स ने खुद को डराया और एक ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई डरा डरा रहता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। यही तो बात समझनी है। करना बहुत सिंपलिसिटी के साथ होता है। बहुत सिंपल सी लाइफ है कि हमको अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग इसलिए करनी क्योंकि हमको पता है कि हम ऐसे ही कर पाएंगे या ये मेरे लिए एक बेहतर वे है करने का, एक ऐसा रास्ता जिसमें हम खुद को फिट पाते हैं, जिसमें हम खुद को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसलिए इसको करना बेहतर रहेगा। लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूजन, क्यों यार पता नहीं क्या हो, कौन क्या सोचे, इसका क्या देखा जाएगा या यहाँ पे क्या किया जाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में चलती रहती है। लेकिन आज का थॉट बड़ी ही प्यारी बात कहता है कि भाई राह तो आपकी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। तो ये जो मोड़ है, ये जो रुकावट है, ये सब मन में है, राहों में नहीं है। राहें तो अपने आप में क्लियर है। कुछ भी हो गया तो राहें कहती हैं फिर भी बढ़ो, कोई भी चला गया फिर भी राहें कहती हैं बढ़ो, कोई आ गया फिर भी राहें कहती हैं चलो, कोई मिल गया फिर भी राहें कहती है चलो, कोई जख्म हुआ फिर भी राहें कहती हैं चलो। राहें तो ले जाने का ही काम करती हैं और वो अपने आप में पूरी तरह से लॉयल हैं। बस हम ही अपने मन के डर में न जाने क्यों इतना ज़्यादा जीते रहते हैं और यही बात शायद हमको अलग कर देती है सीधी साधी राहों से। कई बार रियलाइज़ हुआ है ना बाद में कि कितनी सीधी सी चीज़ थी, कितनी आसान सी बात थी और हम न जाने क्यों उसको शायद सोच के ही ज़्यादा क्रिटिकल बना चुके थे, हम समझ ही नहीं पा रहे थे और इसको क्रिटिकल बनाते जा रहे थे। तो ये जो क्रिटिकल बनाते हैं वो खुद से हम बनाने लग जाते हैं और यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो आपको आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लगा और क्या आपको नहीं लगता है कि जब आपने हर चीज़ को, जब आप बहुत बुरा फंसे थे और बहुत बुरी कंडीशन आपको लगा हो जाएगी, उस वक्त बहुत सीधा सा रास्ता था कि ये करना है भैया, बस होना है, अब कर दो इसको, और आपको लगा कि हाँ यार ये चीज़ तो करने के बाद लगा कि इतना आसान था या यही करना था ना, तो मैंने बाकी चीज़ों को इतना ज़्यादा क्यों प्रायोरिटी दी या इतना ज़्यादा क्यों सोचा, इतनी तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी, है ना। अगर रियलाइज हुआ है तो डेफिनेटली ये थॉट आज का आपके लिए सैटरडे स्पेशल।

0: अपनी बातों को पहुंचा देना। सो फिलहाल हमारे साथ में कई लोगों ने मौजूद होकर के कई सारे कमेंट्स किए हैं, जिसको हम लेकर के आपको बताने वाले हैं। क्या कुछ लिखा है आपने? फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई सबसे पहला जो मैसेज आया है आज के इस शो में वो सविता दुबे जी का आया है और आपने लिखा है सुप्रभात। सभी को सुप्रभात, आपको भी। साथ ही साथ धर्मेश त्रिपाठी मौजूद हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवास विकास से, गुड मॉर्निंग लिखते हैं। प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, सर जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड साथ ही साथ हमारी सविता जी ने रिएक्शन दिया है आज के थॉट ऑफ द डे पर, क्या उनको लगा। उन्होंने कहा, मैं कल से बहुत सोच रही थी, आज सब सही हो गया। चैट रूम में अपने नाम के लिए आज सब सही है, तो आज का विचार भी आपको खूबसूरत लगा है, क्या बात है। चलिए, आपकी सारी चीज़ें आराम से रिजॉल्व हो गई। और वही वाली बात कि जैसा कि आज का थॉट था, आपको लगा कि हाँ सोच ज़्यादा गए थे आप, लेकिन सब कुछ बहुत आराम से हो गया। दैट्स वेरी नाइस। और इसके बाद प्रीति जी ने बहराइच से बोला, ऑसम, बहुत ही उम्दा थॉट। आज का भी गुजरा हुआ वक्त बहुत याद करती हूँ और गुजरा हुआ वक्त सोच सोच कर बहुत ही खुश हो लेती हूँ, क्या बात है, दैट्स गुड। एंड इसके बाद उस्मान खान साहब मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग आरजे अदनान से, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। सो थॉट तो बहुत प्यारा है, और जब छोटे से छोटा थॉट हो और उसके मायने बड़े अपने गहरे हों, तो क्या ही बात कहने को, मज़ा ही आ जाता है। फिलहाल थॉट जो था वो हमने बता ही दिया आपको, और साथ ही साथ आपने चर्चा भी की इसमें, ये बहुत बेहतरीन है। फिलहाल आज चूंकि सैटरडे है, सो कई सारी बातों के बीच आपका स्पेशल सेगमेंट भी होने वाला है, यानी आपके सिटी की अपडेट आप तक पहुंचने वाली है, जो कि पहुंच रही है कुछ ही देर में, क्योंकि आप ट्यून कर चुके हैं गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। और आज सैटरडे वाइब विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: बरसात की धुन सुन। सो फिलहाल बरसात की धुन तो हमने सुन ली है। और अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि भाई आज तो बारिश भी नहीं हो रहे हैं, तो आज क्यों हमने ये गाना प्ले किया। दरअसल बात ये, कई बार माहौल बनाने के लिए भी होता है कि भाई इस तरह बन जाए तो हो सकता है चीज़ें हो जाए, इसलिए भी समटाइम्स ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। फिलहाल आइए चलते हैं अपडेट्स की तरफ और बताते हैं आपको गोंडा में क्या कुछ चल रहा है इन योर सिटी अपडेट्स।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

ऑफ कोर्स आपको जो अंदाज़ा है वही, पानी, सरयू, कटान, ये पहली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं एल्गिन ब्रिज पर नदी के ख़तरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर है इस वक्त सरयू, और खेत छप्पर जो है वो नदी में समा रहे हैं। सो लोग जो है वो सेफ़ जगह जाने की तलाश में जुटे हुए हैं ताकि उनकी सेफ्टी वो इंश्योर कर सके। इसके अलावा आपको हम बता दें कि कानपुर नगर में तैनात सहायक ज़िला सेवा योजन अधिकारी जो थी प्रिया गौतम, इनको प्रमोशन दे करके गोंडा का नया ज़िला सेवा योजन अधिकारी बनाया गया है। जो यहां तैनात ज़िला सेवा योजन अधिकारी गुलाब चंद्र मौर्य की जगह पर आएंगी, और इनका फ़िलहाल जो ट्रांसफ़र हुआ है वो वाराणसी किया गया है। सो गुलाब चंद्र मौर्य जो हैं जून 2024 से गोंडा में तैनात थे, हाल ही में प्रमोशन मिलने के बाद इनका जो स्थानांतरण हुआ है वो वाराणसी किया गया है। सो देवी पाटन मंडल के सहायक निदेशक राजीव कुमार सिंह का भी प्रयागराज जो है वो ट्रांसफ़र किया गया, हालांकि अभी इन्हें क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय से कार्यमुक्त नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क ने ठगी का शिकार 2 पीड़ित के 4,30,000 रुपये वापस भी कराए हैं। जी हाँ, सुनौली मोहम्मदपुर निवासी पंकज कुमार ने बताया कि जालसाजों के बहकावे में आकर मिल्क डेयरी के नाम पर 3,90,000 रुपये का पेमेंट किया, बाद में उन्हें ठगी का पता चला। साइबर हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट करने पर यह रकम वापस करा दी गई। आदमपुर के रहने वाले संजय कुमार सिंह के खाते से एक अननोन लिंक के ज़रिए 40,000 रुपये निकाल लिए गए और पुलिस की कोशिश से ये रकम वापस भी आ गई है। एंड इसके अलावा आपको ले चलते हैं आगे अगले अपडेट की तरफ। सो ज़िले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत महापुरुषों, समाज सुधारकों और सामाजिक न्याय के अग्रदूतों की मूर्तियों और स्मारकों का कायाकल्प किया जाएगा। योजना के तहत हर एक विधानसभा में कम से कम 10 स्मारकों का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए 31 जुलाई तक जो है वो प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को एक तय फॉर्मेट में प्रस्ताव तैयार करके वक्त पर अवेलेबल कराने के निर्देश दिए गए हैं। सो शासन ने प्रस्ताव भेजने की आखिरी तारीख 31 जुलाई जो है वो फिक्स्ड की है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एक जांच में 80 में से 9 विद्यार्थी जो हैं वो बीमार मिले। सो RBSK के तहत CHC की टीम ने कल यानी शुक्रवार को बहुवन मदार माझा पश्चिमी प्राथमिक विद्यालय सुकुईपुरवा में 80 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें से 9 बच्चे बीमार मिले। सो फिलहाल डॉक्टर ने बताया कि 3 बच्चों में दांत का रोग, 3 में चर्म रोग और 1 में विटामिन B और D की कमी और 1 में जन्मजात टेढ़ा पुंजा यानी क्लब फुट की प्रॉब्लम मिली। डॉक्टर ने बताया कि विद्यार्थियों को इलाज के लिए CHC रिफ़र किया गया है। एंड इसके अलावा जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ चलते हैं। सो अगली अपडेट है खुशी ऐप से जुड़ी हुई। जी हाँ, TB मुक्त भारत बनाने की दिशा में फ़िलहाल TB मुक्त गोंडा करने के लिए खुशी ऐप जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। सो आपको हम बता दें कि TB मुक्त भारत अभियान के ही तहत डिजिटल जागरूकता और मरीजों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने TB मुक्त भारत मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। सो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के अंतर्गत तैयार किए गए इस ऐप के जरिए TB पेशेंट्स को ट्रीटमेंट, पोषण सहायता और ज़रूरी जो उनको हेल्प चाहिए होती है वो मिलेगी। ज़िला कार्यक्रम समन्वयक विवेक सरन ने बताया कि इस ऐप को स्वास्थ्य कर्मी, निक्षय मित्रों और जो वॉलंटियर्स हैं इनके मोबाइल में भी डाउनलोड कराया जाएगा, जिससे मरीजों का जो डिटेल्स है वो दर्ज होने के बाद उनका उपचार संबंधी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑनलाइन नज़र रखी जाएगी। सो इस ऐप में खुशी नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित चैटबॉट भी शामिल है।
चैटबॉट टीबी मरीजों और आम लोगों के सवालों को आसान भाषा में जवाब देगा। इसके जरिए टीबी के लक्षण, उपचार प्रोसेस, बचाव और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उसकी जानकारी यहां से मिल जाएगी। सो बताया गया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत ज़िले के करीब 4,800 टीबी मरीजों को अब डिजिटल निगरानी होगी। इसके लिए संचालित अभियान के तहत स्वास्थ्य टीमें जो हैं गांव-गांव जा कर के टीबी मरीजों की पहचान कर रही है और उनका ट्रीटमेंट शुरू करा रही है। सो स्वास्थ्य कर्मी और बाकी संबंधित लोगों के मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कराया जाएगा। ऐप के ज़रिए टीबी मरीजों का जो विवरण है यानी उनका जो डिटेल्स है वो डिजिटल रूप से दर्ज करके उनकी निगरानी की जाएगी। सो फिलहाल ये खुशी ऐप के बारे में बताया जो कि टीबी मुक्त बनाने के लिए अभियान चल रहा उसके तहत बताया गया है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो फुटबॉल प्रतियोगिता से जुड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज सुबह 10 बजे से किया जा रहा है। इसके अलावा टॉमसन इंटर कॉलेज मैदान में खिलाड़ियों को हॉकी का जो है वो प्रशिक्षण आज शाम 5 बजे दिया जाएगा। सो इसके अलावा आपको ले चले अगली अपडेट की तरफ। सो यस, अगली जो अपडेट आ रही है दरअसल वो आ रही है शिक्षा और स्वावलंबन को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है वो परसों को रुपहड्डी में मौजूद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ये कार्यक्रम किया गया। इसमें जो किशोरियां हैं उनको और महिलाओं को शिक्षा स्वावलंबन और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया है। सो कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर ने बताया कि हर एक बालिका और महिला को अपनी प्रतिभा यानी टैलेंट, क्षमता, दक्षता और रुचियों की पहचान कर उन्हें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। जेंडर स्पेशलिस्ट ज्योत्सना सिंह ने भी बताया कि आज की जो लड़कियां हैं महिलाएं हैं रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल करके शिक्षा, प्रशासन, पुलिस, साहित्य, व्यवसाय, विदेश सेवा, खेल और बाकी फील्ड्स में एक अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं। सो ये अगली अपडेट थी जो कि हमने आपको बताई और साथ ही साथ ये हमने आपको बताया गुंडा अपडेट के बारे में। एंड एक बड़ी अपडेट है जो कि खान पान से जुड़ी हुई है। ODOC के लिए मिलने वाला है अनुदान। सो आपको पता है कि भाई ODOC में गोंडा के दही बड़े का नाम शामिल हो चुका है टिया थोक के। सो ज़िले में दही बड़ा और कचौड़ी के कारोबार से जुड़े जो भी बिजनेसमैन हैं और नया बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए ये एक खबर है। एक जनपद एक उत्पाद व्यंजन में ODOC ये वित्त पोषण सहायता योजना के तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकानों और जो भी सिलेक्टेड उत्पाद हैं वो बनाने वाली यूनिट्स को नया उद्योग स्टैब्लिश करने और कारोबार के एक्सपेंशन यानी उनको बढ़ाने के लिए जो है वो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं हेल्प किया जाएगा। सो उद्योग उपायुक्त ने बताया भी है कि गोंडा के लिए दही बड़ा और कचौड़ी को ODOC प्रोडक्ट के रूप में सेलेक्ट किया गया है। योजना के तहत कोई भी उद्योग, सेवा या व्यवसाय के क्षेत्र के पात्र जो लाभार्थी हैं वो इसके विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और किसी शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता इसमें नहीं दी गई है। जो एप्लीकेंट है वो किसी बैंक या सरकारी संस्था का जो है वो लोन में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और साथ ही उसने केंद्र या राज्य सरकार की किसी बाकी स्वरोजगार योजना का फ़ायदा पहले ना लिया हो। सो योजना के तहत जो है वो परियोजना लागत के आधार पर मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। 25 लाख रुपए तक की परियोजना पर लागत जो है वो 25% यानी कम से कम 6,25,000 रुपए और 25 लाख से 50 लाख रुपए तक की परियोजना का जो लागत है 20% यानी 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की जो परियोजना का लागत है वो 10% यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए और 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजना पर लागत का 10% यानी ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख तक मार्जिन मनी का जो है वो फ़ायदा मिलने वाला है इसमें। सो इसको हम बता दें कि जो सामान्य वर्ग हैं उनको जमा करना होगा लागत का 10%।
सामान्य वर्ग के जो लाभार्थी हैं परियोजना लागत का 10% अंशदान जमा कराना होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, इनके लिए ये अंशदान 5% जो है वो निर्धारित किया गया है। और उद्यम के 2 साल के सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी का जो ऋण है, राशि बैंक का ऋण, उसमें अनुदान के रूप में इसको समायोजित कर दिया जाएगा और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही इसमें लिए जा रहे हैं। सो योजना के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ पात्रता संबंधी जो शपथ पत्र है या जो आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं उनको सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र जो है इसमें लगाना होगा और आवेदन सिर्फ ऑनलाइन के जरिए ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, ये बता दिया गया है। सो फिलहाल ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो आप तक पहुंचा दी गई। आई होप कि भाई आप तक ये बातें पहुंची है तो इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा आप उठाने वाले हैं। एंड यस, फिलहाल वक्त हो गया है आपको अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ ले जाने का, तो आइए सुनते हैं ये ज़बरदस्त सॉन्ग आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉग आर जे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

place. Let's head to the bar. Come on.

0: डॉगिंडी, दीदी से ब्रेकअप हो गया तो नैन्सी को भी भूल गए हा? फोन नंबर चेंज किया, कॉल नहीं किया, कुछ
1: okay,
0: नहीं।
1: ओके ओके ओके, अगर तुम्हें मिलता तो वो याद आती। आई जस्ट वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग फॉर अ व्हाइल। ओके नाउ आई विल टेक योर नंबर।
0: यू विल कॉल मी।
1: आई विल कॉल यू।
0: प्रॉमिस।
1: आई प्रॉमिस। द सेम नंबर राइट?
0: या। आर यू ओके नाउ? ओके लेट्स डांस गाइस। लेट्स डांस। गो गो गो।
1: कम ऑन।
0: लेट्स गो। ओह माय गॉड।

कई ऐसे नाम होते हैं, कई ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हम बार बार और कई बार सुनते हैं, लेकिन उनके बारे में शायद उतना हम बेहतर से जान नहीं पाते हैं। वैसे एक नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा जिसका नाम है एंग्जाइटी। जी हाँ, एंग्जाइटी आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई कि मुझे एंग्जाइटी हो जाती है या मैं एंग्जाइटी से परेशान हूँ। सो आखिर एंग्जाइटी होता क्या है और कैसे इसको कम करने के लिए कौन सी थेरेपी चुनना बेहतर होता है? देखिए, आजकल अगर हम बताएं तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन हैं और जो मोस्टली लोगों में देखी जा रही है और वो लगभग लगभग सारे एज ग्रुप को कवर कर रही है। सो ऐसी चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पहले तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि एंग्जाइटी क्या है एंड दूसरी बात कि इस एंग्जाइटी को दूर कैसे किया जा सकता है, किस थेरेपी के ज़रिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। लेकिन उससे पहले आइए इस शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक पर चलते हैं।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: सो हम बात कर रहे थे एंग्जाइटी की, कि एंग्जाइटी है क्या और इससे बचने के लिए, इसको कम करने के लिए आखिर कौन सी थेरेपी को अपनाया जाए। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एंग्जाइटी क्या है बहुत ही आसान सी भाषा में। देखिए, हम रोज़ के थॉट ऑफ द डे में जो बातें करते हैं, यानी हम जो अपने मन में ही कई चीज़ों का फितूर पाल लेते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब वही फितूर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो बीमारी बन जाता है। कैसे, बताते हैं।
4: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

सो एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी दरअसल सीधी सी बात अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना किसी ठोस वजह के, यानी बिना किसी रीज़न के, लगातार डर, घबराहट और बेचैनी महसूस होना, इसी को एंग्जाइटी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लिखते हैं ANXIETY, एंग्जाइटी। सो आपको ये पता चल गया कि एंग्जाइटी जो है वो, उसके लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कोई बिना ठोस वजह के हम लगातार बेचैन होते हैं, न जाने क्यों घबराहट हो रही होती है या किसी चीज़ से हम डर रहे होते हैं। ये अक्सर देखा जाता है जब एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू है, उससे पहने वाला जो डर है वो तो एक सामान है, लेकिन उससे अलग लगता है ये, क्योंकि इसमें दिमाग छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा और ख़तरनाक मान लेता है। कई बार होता है ना कि हम बहुत छोटी सी चीज़ को इतना ज़्यादा डरने लगते हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अच्छा, इसके साइन क्या क्या हैं एंग्जाइटी का? अगर हम साइन देखें तो दिमाग पर इसका असर काफ़ी होता है। होता इसमें यह है कि हर वक्त बुरा होने का जो है ख़तरा हमेशा या डर बना रहता है, ऐसा लगता है कि कोई बुरा भी कुछ हो जाएगा, या किसी काम में आपका ध्यान नहीं लगता है, ये एंग्जाइटी का लक्षण है। दूसरा है इसका बॉडी पर असर कैसे होता है, दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई होती हैं, तेज़ होती हैं, पसीना आने लगता है, हाथ पैर जो है उसमें कपकपी बन जाती है या सांस फूलने लगती है। अच्छा, इसे ठीक कैसे करते हैं? रोज़ सुबह योग या ध्यान या फिर गहरी सांस लेने का मेडिटेशन करते हैं। इसके अलावा बेहतर सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, ख़ुद को समझाते हैं कि सब ठीक है, हम ही बिला वजह ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड ज़रूरत पड़ने पर किसी डॉक्टर या काउंसलर की हेल्प भी लेते हैं। बट अगर थेरेपी की बात करें, सो आइए हम बताते हैं कि पहली थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो इस थेरेपी में क्या होता है, नेगेटिव सोच को पहचानना सिखाता है, यानी आपकी जो सोच है वो नेगेटिव है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि देखो ये कितना नेगेटिव हम सोच रहे हैं खुद ही। दूसरा है सोचने और रिएक्ट करने का तरीका बदलने में मदद करती है, यानी आप जो सोचते हैं और आप जो रिएक्ट करते हैं, जो प्रतिक्रिया आपकी होती है उसको बदलने का जो तरीका होता है उसमें मदद करती है। एंग्जाइटी के लिए सबसे जो इफ़ेक्टिव थेरेपी है उसमें से ये एक मानी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। दूसरा है एक्सपोजर थेरेपी। सो ये मन का डर कम करने के लिए होती है और इसमें धीरे धीरे उसी डर का सामना कराया जाता है। फोबिया, पैनिक और सोशल एंग्जाइटी में ये मददगार साबित हो सकती है। तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। सो अपनी भावनाओं से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सिखाया जाता है। इसमें तनाव के बावजूद ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाती है और माइंडफुलनेस पर भी फोकस करती है। इसके अलावा डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, सो इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाती है, बैलेंस करना, स्ट्रेस और गुस्से को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करती है, रिश्तों को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है इससे। दूसरा है इंटरपर्सनल थेरेपी, यानी IPT। सो रिश्तों और बातचीत से जुड़ी परेशानियों पर काम करती है। अगर रिश्तों की वजह से एंग्जाइटी बढ़ रही है तो ये थेरेपी मदद कर सकती है। सो इतने तरह की थेरेपी होती है जो एंग्जाइटी में काफ़ी काम आती है, जैसा कि हमने बताया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, डायलेक्टिकल थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी। सो ये कुछ थेरेपीज़ हैं जो कि एंग्जाइटी में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। सो एंग्जाइटी अभी आम तौर पर देखा है जा रहा है कि काफ़ी लोगों को हो जाती है, बिला वजह से पैनिक होने लग जाते हैं और ख़ुद से ही न जाने क्यों चीज़ों का पहाड़ बना लेते हैं कि इसका अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हो गया तो क्या हो जाएगा, यानी ख़ुद से ही, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन खुद ही किसी को बहुत ज़्यादा आपने बुरा मान लिया या किसी को आप उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते जा रहे हैं कि अजीब अजीब ख्याल आ रहा है, तो या कोई सिचुएशन में आप फंसे हैं तो उसके लिए इतना आपने सोच लिया कि भाई इस सिचुएशन से तो हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं ये सब आते हैं, लेकिन ये सच्चाई इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, कोई ऐसा दौर नहीं जिसको आप पार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये नेचर नहीं हमको ऐसा डिज़ाइन किया है। हमने कहा था ना, बस मोड़ तो सारे मन के हैं, रास्ता तो बहुत सीधा है,
सो एंग्जाइटी से भी निकलने का रास्ता बहुत सीधा है, सीधी सी बात है। सो आपको आई होप कि भाई ये समझ में आया होगा कि एंग्जाइटी क्या है और इस एंग्जाइटी के लक्षण क्या है, साथ ही इसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये भी आज आपने अपने मॉर्निंग वाले शो में जान लिया। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी काम की होगी और अगर कोई जूझ रहा होगा तो उसमें आप उनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
5: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में? क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
6: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
6: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो गया हूँ, अब बता नहीं सकता क्या क्या दिक्कतें हैं, कुछ इलाज करिए।
1: ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत, आपको आराम की सख्त जरूरत है।
0: हाँ डॉक्टर साहब।
1: तो आपको ये नींद की गोलियां दे रहा हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
1: हाँ, अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। हाँ, यही बीमारी मुझे भी थी।

0: सो एक पेड़ के पुराने होने की अगर हम आपसे बात पूछें तो आप कहेंगे हाँ, मतलब 50-60 साल, 100 साल कोई पेड़ जीता है, जीने की बात तो आपने सही, 300 साल, चलिए भाई मान भी लेंगे एक बार को आप। लेकिन अगर हम कहें कि भाई कोई ऐसा पेड़ है जिसका जीवाश्म मिला है और वो काफ़ी साल पुराना है, तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कितने साल पुराना होगा? 100, 200, 300, 500, 1000 साल? ओह, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए हम बताते हैं कि आखिर ये जो जीवाश्म मिला है ताड़ के पेड़ का बंगाल में, वो आखिर कितने साल पुराना है। सुनकर चौंक जाएंगे आप, गारंटी है मेरी।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

पश्चिम बंगाल की वीरभूमि जिले में करीब 50 लाख साल पुराना ताड़ का पेड़ का जीवाश्म मिला है। ताड़ का जो पेड़ है, इस जीवाश्म की दरअसल पहचान जो है पामोजाइलॉन मियोफ्लेबिफर प्रजाति के रूप में की गई है। है ना ये हैरान करने वाली बात, एक दो नहीं, 10,000 नहीं, 50 लाख साल से ज्यादा पुराना। जी हाँ, दरअसल कोलकाता यूनिवर्सिटी, सोनारपुर महाविद्यालय और सिदो कान्हो बिरसा विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स के ताज़ा स्टडी में ये खोज की गई। ये स्टडी पश्चिम बंगाल के बेसिन में मौजूद मुलुक गांव वीरभूमि के पास की गई, जहां पे रिसर्चर्स को उत्तर प्लायोसीन काल की चट्टानों से ताड़ वृक्ष के पुरातन अवशेष मिले हैं और ये खोज आधुनिक ताड़ के वृक्षों का विकास क्रम को समझने में बहुत ही अहम मानी जा रही है। सो ताड़ की खोजी ये गई प्रजाति आज के ताड़ के जो पेड़ हैं इसकी प्राचीन पूर्वज बताई जा रही है और इसकी जो इंटरनल बनावट है वो आधुनिक ताड़ से मिलती जुलती है। सो इसमें कुछ खास तरह की कोशिकीय संरचनाएं हैं जो इसे बाकी जीवाश्म प्रजातियों से अलग बनाती है। सो ये खोज भारत के प्राचीन वनस्पति इतिहास, जलवायु परिवर्तन और पेड़ों के जो विकास क्रम है इसको समझने में अपना पूरा पूरा योगदान देने वाली है। एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी, मतलब 50 लाख साल पुराना। यार 50 साल पुराना तो ज़माना ही चेंज था और 50 लाख साल, माय गॉड। सो इसीलिए मैंने कहा लाइए भाई आप तक ये खबर, ये बात पहुंचा ही देते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत अहम बात है। खैर ये तो हमने एक बात की कुछ वनस्पति से जुड़ी हुई, ताड़ के पेड़ की, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं, चूँकि आपको पता है कि अगर हम अजवाइन का नाम लेते हैं तो आप कहते हैं हाँ इसका नाम सुना है, और ना सिर्फ नाम सुना है बल्कि ये भी सुना है कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदेमंद होता है अजवाइन, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आप घर में ही उगा सकते हैं? नहीं पता है ना। चलिए हम आपको आ करके बताते हैं कि किस तरह से आप इसको घर में ही उगा सकते हैं और ये आपके कितना ज़्यादा काम की होने वाली है, यानी शायद आपको अंदाज़ा भी उतना ना हो जितना आपके ये काम की सच में होने वाली है। सो आई होप आपको ये बात जो है वो पसंद आने वाली है, आप इसको समझने वाले हैं, और अगर आप कर सकें तो इसको घर पे खुद ही उगा लें क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है और आपको जान करके काफ़ी हैरानी भी होगी कि भाई आप इस चीज़ को घर पे ही उगा भी सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, यानी कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इजीली इसको अपने घर पर कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का है। जैसा कि हमने बताया कि ये काम का बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसको करने में आपको अच्छा भी लगेगा और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हम मार्केट से लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमको बिलीफ होता है जब अगर हम खुद से कोई चीज़ प्रोड्यूस करें। तो चलिए हम बताएंगे कि अजवाइन आप घर में कैसे उगा सकते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं एक ज़बरदस्त म्यूजिकल ट्रैक की तरफ उसको एंजॉय करने के लिए। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: सो भाई, आपको हमने वादा किया था आने के बाद बताने वाले हैं अजवाइन को आप किस तरह से घर पे ही उगा सकते हैं और कितनी ज्यादा फायदेमंद है। इसको तो आप बखूबी समझ रहे हैं, किस तरह से आप इसको उगा सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
4: Now you're listening, Good Morning Koda, with your favorite RJ Khan.

कौन नहीं चाहता भाई कि जब इतनी महंगाई बढ़ी हुई हो तो उसमें कुछ कम में काम चल जाए। तो अगर आप भी कम जगह और कम खर्च में ऐसा पौधा उगाना चाहते हैं जो रसोई के साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखे, तो अजवाइन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसे आप बालकनी, छत या छोटे गमले में आसानी से लगा सकते हैं। अच्छी बात यह कि इसके बीज और हरी पत्तियां दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, दोनों ही काम के होते हैं। अब अगर हम अजवाइन की बात करें तो ये डाइजेशन को सुधारने का काम करता है। गैस, अपच, सर्दी खांसी और जोड़ों के जो दर्द हैं उसमें राहत देने का काम करता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी ये सहायक माना जाता है। देखिए, अजवाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अजवाइन के बीज या कटिंग दोनों तरीकों से आसानी से इसको उगाया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है कि 8 से 10 इंच गहरे गमले में 50% मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 20% रेत मिला करके पौधा लगाइए तो डेफिनेटली इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन बात क्या है कि बीज और कटिंग से पौधा उगाया जाना ज़्यादा बेहतर होता है। सो रसोई में मौजूद अजवाइन बीज सीधे या रात भर भिगो करके मिट्टी में बो सकते हैं। हल्की सी सिंचाई करके 4 से 6 दिनों में बीज जो है इसके अंकुरित होने लगते हैं। अच्छा, कटिंग से पौधा लगाने के लिए 3 से 4 इंच लंबी टहनी नम मिट्टी में 1 से 2 इंच गहराई तक लगा सकते हैं और कुछ ही दिनों में नई पत्तियां निकलने लगेंगी। सो रोज़ाना 4 से 5 घंटे धूप और हल्की सिंचाई अगर हम देते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। और गमले में पानी नहीं रुकने देना है क्योंकि पानी ठहरा तो पौधे को नुकसान हो सकता है। हल्का पौधा है, सेंसिटिव है, तो ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं ठहराना है। सो पौधों से भी दूर रहते हैं लोग। अजवाइन के पौधे की खासियत तो बहुत सारी है लेकिन इसमें है कि कीट और रोगों का जो प्रकोप है वो कम रहता है। इसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अजवाइन की जो पत्तियां हैं उसकी कटाई करते रहने से पौधा ज़्यादा घना और हरा भरा रहता है। तो इस तरह से अजवाइन जो है अगर आप लगाते हैं किचन गार्डन के फॉर्म में तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है और इसका पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो कहीं ना कहीं अगर आप सच में ऐसी चीज़ लगाना चाहते हैं जो रसोई में भी काम आए और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो तो ये सबसे बेस्ट है। आई होप कि आप जो है अजवाइन लगाने का सोच रहे हैं अपने घर के गमले में। और साथ ही साथ हमने जो बातें आपको बताई अगर वो जहन में है तो ज़रूर आप लगाइए और ये बहुत फ़ायदा आपको देने वाला है। ये तो गारंटी सच में हमारी है, यकीन नहीं आता तो लगा के देख लीजिए।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: स्कूल्स को लेकर के एक चिंताजनक बात जो है वो सामने आ रही, क्योंकि नीति आयोग ने ही इस आंकड़े को दिया है और नीति आयोग ने बताया है कि भारत में हर दिन बंद हो रहे हैं 25 स्कूल्स। जी हाँ, भारत में हर दिन 25 स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आखिर नीति आयोग ने क्या कहा है अपनी रिपोर्ट में और उसका रीजन क्या बताया, ये हम आप तक जरूर साझा करते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में 94,000 सरकारी स्कूल्स बंद हो गए हैं, यानी अगर हम एक एवरेज निकालें तो हर दिन 25 स्कूल्स पर ताला लगा है। 10 साल में सरकारी स्कूल्स में बड़ा बदलाव, जिसमें साल अगर हम 2014-15 की करें तो सरकारी स्कूल्स 11,07,000 थे, साल 24-25 में 10,13,000 हुए, यानी 94,000 की कमी आई। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जो थे 2014-15 में इसका आंकड़ा 83,000 था, 24-25 में 79,000 हो गया और 4,000 की कमी सरकारी सहायता स्कूल्स में आई। प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो 2,88,000 स्कूल्स थे 2014-15 में, 2024-25 में 3,39,000 हो गए, यानी 51,000 जो है वो प्राइवेट स्कूल्स बढ़े हैं पिछले 10 सालों में। और अगर हम सरकारी स्कूल्स की बात करें तो जैसा कि हमने बताया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल्स बंद हुए हैं। सो एक तरफ सरकारी स्कूल्स बंद हुए हैं 10 साल में 94,000, और दूसरी तरफ 51,000 स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स बढ़े हैं। ये कहीं ना कहीं एक फिक्र की तो बात है कि आखिर ये डेटा इस तरह क्यों आ रहा है, जबकि ये खुद नीति आयोग का डेटा है। सो फिलहाल इतनी बड़ी गिरावट जो है उसको लेकर के 2014-15 के बारे में बताया गया कि 11,07,000 सरकारी स्कूल्स थे 14-15 में और 24-25 में 10,13,000 सरकारी स्कूल्स बचे हैं। सो इसके पीछे जो वजह बताई है वो है जन्म दर में गिरावट और स्कूल में आने वाले जो बच्चे हैं उनकी आबादी में कमी, कम नामांकन वाले स्कूल्स का मिल जाना, कुछ स्कूल्स का बंद हो जाना और राज्यों के ज़रिए रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल के लिए स्कूलों का पुनर्गठन। सो ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा किस लेवल पर है? प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करें कक्षा 1-5 के बीच तो 0.3%, उच्च प्राथमिक में 6-8% तक के बच्चे यानी 3.5% ड्रॉप आउट हो रहे हैं। माध्यमिक की बात करें यानी क्लास 9-10 में, सो 11.5% इसमें बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। फिलहाल ये नीति आयोग की रिपोर्ट है और ये एक चिंता का विषय तो है ही कि इस तरह जो शिक्षा प्रणाली है उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल। और कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि जब से शुरुआत हुई है, जब से इनकलाब कहीं पे भी आया है तो वो शिक्षा से ही आया है, चाहे दुनिया में किसी भी देश की बात कर लें, किसी भी जगह की बात कर लें, आज जो भी संपन्न देश माने जाते हैं, जो भी बहुत खुशहाल देश माने जाते हैं, वहाँ की एजुकेशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा आ गया। क्योंकि हमको पता है हम जो भी आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो एजुकेशन की वजह से, क्योंकि उसको किसी ने पढ़ा, किसी ने समझा, एक्सपेरिमेंट किया और बनाया और आज अब वो हम आम लोगों तक पहुंच रहा है। सो एजुकेशन का लेवल जहां बेहतर होगा वहीं पे तरक्की होगी, वहीं पे हम आगे चीज़ों को बढ़ते हुए देख पाएंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें और अपने घर में जो भी स्टडी कर रहे बच्चे हैं उनको इस तरह का एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें कि उनकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके। लेकिन इस बात का ख्याल बिल्कुल रखना है कि पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम बंधुआ मजदूर बना करके सिर्फ पढ़ाते जाएं, उनके खेलने का, उनसे बात करने का, उनको घुमाने का और उनको कुछ अच्छा खिलाने का, ये सब कुछ होना चाहिए जो कि एक बचपन डिज़र्व करता है। जैसा कि हमने अपने बचपन में बहुत सारी मस्तियाँ की, बहुत जगह घूमे, बहुत कुछ खाया, सो चलिए बहुत तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए जितने में बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे। सो फिलहाल ये तो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन जो बात आई है डेटास की वो सच में काफ़ी चिंताजनक है। पिछले 10 सालों में 94 सरकारी स्कूल्स का बंद होना और 51,000 प्राइवेट स्कूल्स का बढ़ना, ये थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो लेवल है उसको अब बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको और इनोवेटिव करने की ज़रूरत है, उसमें
नयापन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़माना अब आगे बहुत बढ़ चुका है। सो नई चीज़ों को जोड़ते हुए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर बढ़ा जाए तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM आपकी मॉर्निंग जॉक के साथ।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: सो भैया, अगर हम आ गए हैं चैट बॉक्स पर, तो जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद के कुछ मैसेजेस और आए हैं हमारे साथ में। कुछ हमारे लिसनर्स जुड़ गए हैं चैट बॉक्स पर आकर के। आइए, किसने क्या कुछ लिखा है ये भी बताते हैं, और एक कंटेंट भी आ गया है वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं।
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद का जो आया है, धर्मेंद्र मोहन जी का, आवास विकास गोंडा से आया है। और आपने भी लिखा अदनान सर, वेरी बेस्ट मॉर्निंग। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वो है जिसका उपदेश कभी गलत ना हो। क्या बात है। इरफान शाह मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू इरफान जी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। सविता दुबे जी को गाना बहुत पसंद आया है, गीत सुन सुन करके आप लोगों को काफ़ी एंजॉय किया है। एंड उस्मान खान साहब, आपका भी स्वागत करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग, थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आया। एंड यस, इसके बाद नीना का वेलकम करते हैं। अगला जो मैसेज आया हमारी आशु जी का है, लखनऊ से। हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर महकती खुशबू एक जादू जगाती है, जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, निगाहों पर सुबह सुबह अपनों की याद आ ही जाती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अनोखी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड यस अज्जू, थैंक यू सो मच, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम करते हैं आपकी इस नई फैमिली में। साथ ही साथ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने गाने को 3 से 4 कॉलर ट्यून गोंडा में, और शाम में 8:30 से 9:30 फरमाइश आपके नाम इस प्रोग्राम में आप फरमाइश कर सकते हैं। नंबर 6393164229 है। एंड इसके बाद धर्मेश का भी मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। प्रीति जी का कंटेंट आया है बहराइच से, आपने लिखा है दृढ़ मजबूत अपनी सोच। देखिए, ये ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप जो कुछ लिखते हैं वो हम तक पहुंचाते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के मैसेंजर के जरिए। सो मुझे सबसे बेहतरीन वक्त लगता है क्योंकि आपकी लिखी हुई बातें आती है। सो हम प्रीति जी ने क्या भेजा है बहराइच से कि जब जागो तभी सवेरा, सोच कर देखा मैंने, हो गया सब नया नया, अपनी सोच को किया मैंने दृढ़ मजबूत, उसी पल से हो गया हर मंजर हंसी खूब, अब ना अनाप शनाप कुछ सुनना है, बस अपनी ही मंजिल की ओर बेहिचक बढ़ना है, बहुत हो चुकी दुनियादारी, अब सिर्फ है मेरी बारी, करूंगी अपनी सोच बुलंद, हो जाऊंगी मस्त मलंग। क्या बात है भाई, यही तो अगर लाइफ में आपने अपना लिया तो समझ लीजिए लाइफ जिंगा लाला, यानी जबरदस्त बिल्कुल। सो इसके अलावा हमारे पास में कुछ और कंटेंट्स आए हैं जो कि बहुत लाजवाब हैं, आप लोगों के ही हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप सुनते हैं और आप लिखते हैं और आप हम तक पहुँचाते भी हैं। सो चलिए हम पहुंचा देते हैं जो कुछ भी आपने लिखा है, बताया है हमको। सो इसके बाद जो आ रहा है अगला कंटेंट, वो दरअसल शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है कुंदन राज दत्ता उर्फ निश्चल जी से, जो कि पूर्णिया बिहार से लिखते हैं कि शंकर को पाना है तो, ये उनवान है, ये विषय है। इस पे क्या लिखते हैं कि शंकर को पाना है तो कंकड़ पर चलना होगा, भोले की भक्ति में खुद को हर पल ढालना होगा, सुख

लेना होगा। त्रिनेत्रधारी अंतर्यामी मन का पीड़ा जानेंगे, सच्ची श्रद्धा लेकर जाओ भोले तुम्हें पहचानेंगे। धन दौलत से नहीं मिलेंगे, प्रेम से उन्हें बुलाना होगा। एक लोटा जल अर्पित करके श्रद्धा दीप जलाना होगा। मन में छल का भाव न रखना, सच की राह अपनानी होगी। शिव की कृपा अगर है पानी, भक्ति सच्ची लानी होगी। हर हर महादेव की ध्वनि से जग को आज जगाना होगा। शंकर को पाना है तो कंकड़ पर चलना होगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और ये कुंदन राज दत्ता उर्फ निश्चल जी ने पूर्णिया बिहार से भेजा है। अगला जो है वो नरेंद्र छाव जी ने बस दो लाइन लिखी है, बहुत शॉर्ट में, और आप लिखते हैं कि अपने वक्त पे कागज़ हो गया नर्म इतना, अपने वक्त पे कागज़ हो गया नर्म इतना, अपने ही अल्फाजों से चोट खा बैठा। क्या बात है, बहुत सच्ची बात लिखी है आपने, थैंक यू सो मच नरेंद्र छाव जी। पुनीता सिंह जी लिखती हैं, तुम्हें देखना तुम्हें सोचना और फिर तुमसे ही खो जाना, तुम्हें देखना तुम्हें सोचना फिर तुम में ही खो जाना, कितना आसान है ना अपनी ही दुनिया को तुम तक सीमित कर पाना। अब कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रही इस दिले नादां की, बस आखिरी सांस तक तुम्हारे नाम की ही साथ है मुस्कुराना। क्या बात है, इट्स वेरी रोमांटिक। इसके बाद जो है यामिनी चौहान जी लिखती हैं, हर एक सफ़े पर तेरे लम्हों की महक ठहरी हुई है, कैसे कह दूं ये बस कागज़ के कुछ टुकड़े हैं, कभी रुखसार भिगोते हैं कभी लब मुस्कुरा उठते हैं, इन अल्फाज में आज भी तेरे एहसास जिंदा हैं। मैंने यादों को कभी कैद नहीं किया अपनी मुट्ठी में, ये तो खुद मेरी तन्हाइयों का सहारा बन गई। कुछ अमानतें वक्त नहीं मोहब्बत संभालती हैं, इसलिए कुछ पुराने खत उम्र भर नहीं छोड़े जाते। वाह क्या बात है, बहुत डीप लिखा है। वर्षा कुमारी पायल जी लिखती हैं, हर ओर बस छात्र प्रदर्शन है और आज पंक्तियां भी उसको लेकर, कुर्बानियां मांग रही है धरती बदलाव की मशाल जलाने को, बच्चे निकल पड़े हैं सड़कों पर अपना भविष्य बचाने को, शिक्षा हमारा अधिकार है परीक्षाएं निष्पक्ष करानी होगी, इस बार सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, हर कोने से उठी बस एक पुकार अब अन्याय नहीं सहेंगे हम, मेहनत का हक छीनने वालों के आगे कभी नहीं झुकेंगे हम, स्याही से लिखने वाले हाथ अब इनकलाब भी लिख देंगे, शिक्षा पर जो वार करेगा उसी से जवाब हम देंगे। क्या बात है, और कहीं ना कहीं जो एक इनकलाब जगा है एजुकेशन सिस्टम को बदलने का लेकर के, उस पर आपने अपनी बात रखी, थैंक यू सो मच वर्षा कुमारी पायल जी। इसके बाद मिस्टर आकाश नवदीप वेस्ट बंगाल से लिखते हैं, उनका भी उनवान यही है, लाठियों से हर बार हक की जुबां खामोश नहीं होती, अर्ज है, लाठियों से हर बार हक की जुबां खामोश नहीं होती, झूठी इल्ज़ामों से सच्ची आवाज़ बदनाम नहीं होती, और जो तालीम का हिसाब मांगे उन्हें गद्दार कह देना आसान है, कि जो तालीम का हिसाब मांगे उन्हें गद्दार कह देना आसान है, मगर सवालों से भागती हुकूमत कभी बेदाग नहीं होती। क्या बात है, बहुत फैक्ट लिखा है आपने, और कहीं ना कहीं आप भी इसी विषय पर आए हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे देश का विषय है। इसके बाद गुंजन जौहरी जी जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सुनती हैं गोंडा एफ एम को, आप लिखती हैं, ना लड़ो आसमां में इतना कि खुदा लगने लगो, जमी से रिश्ता रखो तभी बड़े लगने लगो, हर बुलंदी का सफर एक दिन उतरता भी है, वक्त बदले तो सबकी नजरों में छोटे लगने लगो, ताज शोहरत दौलतें सब यहीं रह जाएंगी, दिल जीत लो तभी लोगों को अपने लगने लगो, फूल बनकर महकना है तो झुकना सीख लो, खुशबुओं की तरह हर दिल में बसने लगो, गुरूर की धूप पल भर में जला देती है, सादगी ओढ़ लो और चांद से उजले लगने लगो, यारा यही दुनिया का फसाना है हमेशा, इंसान रहो तभी सच में बड़े लगने लगो। क्या बात है, सो आपने भी लिखा है और उनवान आपका भी कुछ मिलता जुलता ही नज़र आ रहा है, साथ ही आपने एक अच्छी बहुत ही बेहतरीन सी न्यूज़ दी है, आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है, आपकी जो सीरीज़ है कैकई, जी हाँ उसको लेकर के सर्टिफिकेट मिला है अप्रिसिएशन, वो भी पॉकेट एफएम पर, जिसको बहुत सारे लोग पूरे इंडिया में सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच बताने के लिए, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास भेजने वाली हम सभी की गुंजन जौहरी जी जो कि

सहारनपुर से भेजती हैं, उनको ये पॉकेट एफएम की तरफ से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया है। थैंक यू सो मच कि अपनी खुशियों को आपने हम सभी के साथ में साझा किया। एंड जाने से पहले धर्मेश ने लिखा है कि शुक्रिया आरजे अदनान, महफिल तो हर रोज़ सजती है मगर हर आवाज़ दिल तक नहीं पहुंचती है। आपकी बातों में जो अपनापन है वो हर शाम को यादगार बना देता है। आज का ये शो यही ख़त्म हुआ मगर आपकी आवाज़ की गूंज दिल में देर तक रहेगी। यूं ही मुस्कुराते रहिए, गीतों से दिलों को सजाते रहिए। दिल से शुक्रिया आरजे अदनान, क्या बात है। धर्मेश थैंक यू सो मच दिल से अप्रिशिएट करने के लिए, एंड दिल से मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दिल से उन सभी का शुक्रिया जो लिखते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच, आप अपने जज्बात लिखते हैं और हम लफ्ज़ों से सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये कोशिश बहुत कामयाब भले ही ना होती हो, लेकिन छोटी ही सही कोशिश तो कोशिश है।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता गांव की गूंज का एक नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें हर बार की तरह मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वह श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर आवाज में है और उसका साथ देने आ रहे हैं जिमी, श्वेता और समता। आज हम आपको ले चलने वाले हैं हमारे गोंडा के ही एक पर्यटक स्थल यानी कि बलरामपुर की ओर, जहां पर आप सभी को पता है कि पर्यटक स्थल होने के साथ साथ वहां पर एक माता जी का भव्य मंदिर भी है। तो आइए दोस्तों, हम गांव की गूंज का जो ये एपिसोड है, इस बार हम आपको ले चलने वाले हैं एक नए और एक बहुत ही प्यारे से पर्यटक स्थल की ओर। अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। उफ, श्वेता भी अभी नहीं आई है, गांव भी जाना है। किरण दी तो अभी आते ही बस शुरू ही हो जाएंगी। चलो चलो, क्या कर रही हो सब?
2: राधे राधे समता जी, क्या हाल है? बहुत गुस्से में दिख रही है, आखिर बात क्या है?
1: अरे पूछो मत श्वेता, देख नहीं रही कितनी गर्मी है और इतने पसीने गिर रहे हैं। मैं तो इस गर्मी से परेशान ही हो गई हूँ।

0: अरे सब लोग रेडी हो भाई, किरण भी आती होंगी। और आओ सब लोग रोटी सब्जी खा लो, बस अभी गरम गरम बनाई है।
1: मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, पर किरण दीदी आ जाती तो सब एक साथ मिल के खा लेते और मजा ही आ जाता।
2: सच्ची कहा श्वेता, पर किरण दी आज कहाँ रह गई भला, गांव भी तो निकलना है। श्वेता देखो जरा फोन लगा के किरण दी को।
1: ओके।
3: हाँ श्वेता, मैं रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। और सुनो, ड्राइवर भैया रास्ते में मिल गए हैं, तो मैं गाड़ी से ही आ रही हूँ, और सब बिल्कुल मुझे तैयार मिलो।
0: हाँ दी, आप आइए, तो हम सब बिल्कुल रेडी हैं। किरण दी आइए, आज मैंने रोटी और कटहल की सब्जी बनाई है, चलिए सब मिलकर खा लें, फिर सब चलते हैं।
3: ठीक है, आओ सब कटहल की सब्जी और रोटी खाते हैं।

0: किरण दी, इस बार हम लोग बलरामपुर चल रहे हैं ना? बलरामपुर के किस गांव में?
1: हम लोग चल रहे हैं बलरामपुर के बैरिया सुरजनपुर गांव में, और पता है जहां पर जिम्मी की नानी रहती हैं और उनकी नई नई बहू आई है, उसी को देखने चल रहे हैं। चलो सब लोग।
2: और जानती हैं समता दी, हमारी नानी जी अपने बहू बेटे दोनों से बहुत प्यार करती हैं। अभी आप जैसे उनके सामने पड़ेंगी वो अपने बहू के गुणगान गाने लगेंगी।
3: जो बहुओं के गुण गाती है वो सा

0: अभी कितनी दूर है गांव? जिमी, तुम्हारी नानी का घर तो बहुत दूर है।
1: अरे श्वेता दी, बस आने वाले हैं ड्राइवर भैया, थोड़ा आराम से चलिए, इधर का रास्ता बहुत खराब है।
2: पर काफी हद तक सड़कें अच्छी हो गई हैं अब।
3: जिमी, यही है ना बैरिया सुरजनपुर गांव? जरा बताती हुए चलो, रमेश को रास्ता पता नहीं है।
1: हाँ किरण दी, मैं बताते हुए ही चल रही हूँ, इसीलिए तो मैं ड्राइवर भैया के बिल्कुल बगल वाले सीट पे बैठी हूँ। भैया इधर से दाहिनी मोड़ लीजिए, और वो देखिए भैया सामने वाला जो दो मकान है पीले रंग का, आगे छप्पर छाया हुआ है, बस वही है नानी का घर।
2: वो जो चारपाई पर बैठी है वही है क्या तुम्हारी नानी, वो जो बूढ़ी सी है?
1: हाँ हाँ समता दी, वही है हमारी नानी जी। चलिए सब लोग उनको राम राम बोलते हैं।
4: राम राम नानी जी।
3: कैसी हैं आप नानी जी, क्या हाल चाल है? नानी जी, भैया और भाभी सभी ठीक है ना? कहाँ हैं सब लोग?
5: सबका राम राम बहनी, जियो नी के रहाओ, कहाओ बहनी जिम्मी, काओ हाल है?
3: तुहरे मम्मी पापा केर का हाल है बहनी?
5: आज नानी कहाँ याद कैली हो बच्चा हमार? ये सब तुहार के हो सखी सहेलर हो? आओ आओ सभी जने बैठो, आओ बैठो।
1: हाँ हाँ नानी, ये सभी हमरे साथे काम करती, सखी सहेली समझो नानी।
2: जिमी, तुम्हारी भाभी आ रही है क्या? वो देखो सामने, और शायद भैया भी साथ में हैं।
0: लगता है नानी अपने बहू और बेटे से बहुत प्यार करती हैं।
5: नानी, ज्यादा लाड प्यार ना करो अपने बेटे का, नहीं तो बिगड़ जाएंगे भैया।

0: अरे बच्चा यक्कई जने है ये, तब मोहाइत है इनका, अब का करी बहनी, यक्कट हमार बिटीवा बाटे।
1: किरण दी, हमारा मन कह रहा है कि नवरात्रि चल रही है तो हम लोग इधर से ही देवी पाटन मंदिर के दर्शन करते हुए चले।
2: हाँ दी, हम लोग दर्शन करके ही चलेंगे, चाहे जितनी देर हो जाए। नानी जी आप भी चलिए और भैया भाभी आप भी चलिए, गाड़ी तो हमारे पास है ही, बहुत मजा आएगा।
0: अब ये दुल्हन कहाँ जाई है दादा, घाम बहुत है और तनी ये पैदल चले, मैं कमजोर ही बच्चा हमार, डरात ही कि घमाम चली तो करिया ना हो जाई।
3: अरे नाही अम्मा, ये बात ना है, हम कहाँ करिया हन, हमसे ज्यादा तो तहारी बिटिया करिया ही
0: है। दुल्हन खबरदार, जो हमरे बिटिया के यहाँ करिया का है तो

0: अरे नानी जी, अब बहू और बेटी में कोई फर्क वर्क नहीं करता है और न करना चाहिए। आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू बनेगी। बहू को बेटी की तरह ही रखिए और प्यार करिए।
1: हाँ नानी जी, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी जी को खुश रखने के लिए ही घर में लक्ष्मी जी आती हैं। अब दिवाली आ रही है, लक्ष्मी जी आने ही वाली हैं।
2: अरे हमारी नानी जी बहुत अच्छी हैं। देखो कितनी सुंदर हैं और बहू को बहुत प्यार करती हैं। अरे इतनी पढ़ी लिखी बहू मिली है आपको, तो आपको किस बात की चिंता है, क्यों नानी?
3: अरे बहनी, हम तो इनका बहुत मोहाइले, लेकिन ये जब देखो तब यह कहत ही कि तोहार लड़कवा हमारे साथे बहुत मनमानी करत है, हमार कौनो कदर नाई की हिस। आप बताओ का करी।

0: अरे भाई, झगड़ा लड़ाई कहाँ सुनी, सब बंद करिए और चलिए हमें दर्शन करा तुलसीपुर पाटन देवी मैया का।
1: चलिए नानी जी, मामी जी, दादी, आप सब लोग तैयार हो जाइए, हम लोग मंदिर चलते हैं, मैया के दर्शन करेंगे।
0: चलो चलो, मैंने ही कहा था मंदिर चलने के लिए, चलो सब लोग मंदिर चलते हैं।
2: आओ आओ सब लोग, चलो गाड़ी में बैठो।
0: अरे भैया संभाल के जरा, आराम से चलिए। नानी जी आप आराम से बैठी है ना?
2: हाँ हाँ बच्चा बैठी हैं, नीक यक बैठी हैं दादा।
1: चलो चलो सब आराम से उतरना, नीचे मंदिर आ गया, देखो नवरात्र चल रहा है तो कितनी भीड़ है। अरे राम रे,
0: आराम से उतरो, भीड़ बहुत है।
2: आओ चलो एक माता जी का गीत गाकर हम लोग अपनी अर्जी लगा देते हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

0: साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा, क्योंकि बज चुके हैं 12। आज दिन है शनिवार और शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त RJ आयुषी लेके आपको अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी। जी हाँ, स्वास्थ्य संगनी, जहाँ होती है आपकी सेहत की बात। भैया देखिए, आजकल ना मौसम थोड़ा सा रंगीन हो गया है, रंगीन और रंग बदलता भी रहता है। वो इसलिए देखिए, अभी धूप है, अभी बारिश हो जाएगी, अभी बादल हैं, अभी कुछ, और बारिश कभी तो एकदम झमझमा के होगी और कभी कभी ऐसी होगी कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि बारिश हो रही है या फिर सिर्फ भगवान बूंद बूंद गिरा रहे हैं। लेकिन भाई ये जो बारिश है ना, ये जितनी ये देखने में सुहानी लगती है, अच्छी लगती है, उतनी ही ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन भैया ज़िंदगी का आनंद भी तो लेना है। अब इसीलिए मैं आज का विषय लेकर आई हूँ, यानी कि मॉनसून स्पेशल एक टॉपिक है जिससे आप बारिश का फ़ायदा भी उठा पाएंगे और साथ ही साथ इन्फेक्शन से भी बच पाएंगे। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज भाई मैं अकेली नहीं हूँ। आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट सृष्टि। हेलो सृष्टि।
2: हेलो मैम,
1: कैसी हो?
2: मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए।
1: मैं बहुत ठीक हूँ। और भाई बारिश देख के तुम्हें तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है?
2: बारिश देख के तो बहुत अच्छा ही लगता है सबको ही।
1: जी, बारिश देख के, और बारिश देख के हर किसी के मन में यही ख्याल आता है कि भैया गर्मा गर्म चाय मिल जाए। हाँ,
2: हो ही जाए,
1: चाय पकौड़े हो जाए। लेकिन भैया ये जो चाय पकौड़े है ना, इसको तो हम एंजॉय कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम हेल्थ की बात करने वाले हैं। तुम्हें पता है आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं?
2: नहीं मैम, क्या है आज का टॉपिक?
1: अरे आज का टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, कल रात मेरे हाथ में अचानक से खुजली शुरू हो गई थी। सुबह मैंने देखा तो एक गोल गोल रेड पैच था। पता है वो क्या था?
2: अरे, और ये तो सबके साथ हो रहा है। किसी को फुट में इचिंग, किसी को अंडर आर्म्स में रैशेस। मॉनसून अपने साथ रोमांस, चाय पकौड़े के साथ अनइनवाइटेड गेस्ट भी लाता है, स्किन प्रॉब्लम्स।
1: जी हाँ, और यही स्किन प्रॉब्लम मुझे हो गई, जिसे हम दाद भी कहते हैं। अब देखिए, दाद खाज खुजली ये सब तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जो दाद खाज खुजली होती है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान करती है। उठने बैठने में, अपने रोजमर्रा के काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। तो आज स्वास्थ्य संगनी में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मॉनसून में स्किन की सुरक्षा पर। कौन से इन्फेक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं?
2: मेरा सवाल ये है मैम कि मॉनसून में ये स्किन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है?
1: भाई देखो, ये बात बिल्कुल सिंपल सी है सृष्टि। देखो, मॉनसून में हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो हम सभी जानते हैं। ह्यूमिडिटी 70-80% तक चली जाती है। इससे हमारी जो स्किन का जो स्वेट है वो प्रॉपरली इवेपोरेट नहीं हो पाता और वो स्वेट स्किन पर जमा रह जाता है।
2: मतलब जहाँ मॉइस्चर है, वार्मथ है, वहाँ बैक्टीरिया फंगस का ग्रो करने का परफेक्ट मौका मिल जाता है।
1: एग्जैक्टली, और स्पेशली स्किन फोल्ड में, जैसे कि अंडरआर्म्स हो गए, हमारी थाइज एरिया हो गए, जहाँ मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, यानी मॉइस्चर रुक जाता है। बिल्कुल वैसे ही घर की दीवारों में भी मॉनसून में सीलन आ जाती है।
2: और दूसरी वजह?
1: अरे वही जो कॉमन प्रॉब्लम है यार, गीले कपड़े, गीले जूते। बारिश में देखो, भीगने के बाद हम लंबे टाइम तक गीले कपड़े पहने रहते हैं, जूते पहने रहते हैं, जिससे मॉइस्चर स्किन के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है। और तीसरी वजह भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो है कंटामिनेटेड वाटर। सड़कों पर तुमने अधिकतर देखा होगा, जब भी अपने घर से आती होगी तो भाई सड़कों पे कोने कोने में और कहीं कहीं तो सड़क के बीच में ही गड्ढा है और वहां पे ही पानी जमा हो रखा है। ड्रेन्स जो है, सीवेज जो है, वो बाहर निकले, सब मिक्स हो रखा है, हर जगह बस पानी ही पानी है। और पानी पानी में फैलते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस होते हैं।
2: फिर तो मैम सनलाइट भी कम मिलती है मॉनसून में, इसका भी कोई असर होता है क्या?
1: बिल्कुल। देखो सृष्टि, सनलाइट नेचुरली स्किन को ड्राई रखती है और बैक्टीरिया फंगस को किल करती है। उसकी कमी से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वीक कर देता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब हमारे घर के कोई अनाज है, कोई चीज है जिसमें फंगस लग गए हों, तो हमारी मम्मी क्या कहती है कि जाओ बेटे से धूप में रखे आओ, है ना?
2: यस मैम, ये तो मैंने देखा है। पर कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता था।
1: तो आज तुम्हें पता चल गया कि क्या होता है। देखो हमारी दादी नानी के हर काम में ना कहीं साइंस छुपी होती है।
2: तो ह्यूमिडिटी, वेट क्लोथ्स, कंटामिनेटेड वाटर, कम सनलाइट, वीक ह्यूमिडिटी सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं।
1: जी हाँ, वो भी स्किन प्रॉब्लम के लिए ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है
2: मैम। लेकिन एक फैक्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मॉनसून में स्किन पेशेंट 30-40% तक बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही सृष्टि। देखो और एक और चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। देखो भारत जैसे ट्रॉपिकल देश में जहाँ ह्यूमिडिटी ऑलरेडी साल भर हाई रहती है, मॉनसून के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये सिर्फ एक दो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश में मिलियंस लोगों की प्रॉब्लम है और लोग इससे डील भी करते हैं हर साल।
2: मैम ये सिर्फ एडल्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है ना, बच्चे भी काफी अफेक्टेड होते हैं।
1: अरे बच्चों की क्या बात करते भैया, देखिए मौसम जो ये बारिश का है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि भाई बच्चे जब तक नाव नहीं बना लेंगे, बारिश के पानी में दो बार छपाक नहीं मार लेंगे, तब तक उनका बारिश जाता नहीं है। और जो भी तुमने बात कही वो तो बिल्कुल सही है। देखो बच्चे स्पेशली वल्नरेबल होते हैं क्योंकि वो बारिश में खेलना पसंद करते हैं, उनकी स्किन अभी भी डेवलपिंग होती है जो अडल्ट्स की कंपैरिजन में ज्यादा सेंसिटिव होती होगी। स्कूल्स, डे केयर सेंटर जैसे क्राउडेड प्लेसेस में क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से इन्फेक्शन एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक बहुत ही ज्यादा तेज फैल जाता है।
2: और वर्किंग प्रोफेशनल्स का भी तो बुरा हाल होता है, डेली कम्यूट, वेट सूज, पूरे दिन ऑफिस में बैठना।
1: ये तो शायद तुमने मेरी ही कहानी बता दी। देखो बिल्कुल भाई ऐसा ही होता है, और एल्डरली लोगों की स्किन नेचुरली थोड़ी सी थिन और लेस रिजिलियंट होती है, जिसमें वो भी इन्फेक्शंस से ज्यादा प्रोन होते हैं। देखो हम ये जानते हैं कि बच्चे हों चाहे बड़े हों, अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो स्किन प्रॉब्लम सभी को हो सकती है, लेकिन बच्चों की स्किन क्योंकि सेंसिटिव ज्यादा होती है इसीलिए उनमें ज्यादा हाई चांसेस होते हैं।
2: तो मैम ये तो क्लियर हो गया कि क्यों ये सीजन इतना चैलेंजिंग होता है हमारी स्किन के लिए। चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक इन्फेक्शन की। सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन, जिनमें रिंग वॉर्म, एथलीट फुट और कैंडिडाइसिस शामिल है, लेकिन ये सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: हाँ भाई मुझे भी लगता है कि ब्रेक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन है ये लोग तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। और लिसनर्स आप भी समझ रहे होंगे कि कितना बारिश का मौसम जितना सुहाना लगता है उतना ही हमें दांत, खाज, खुजली, दाने, फोड़े, फुंसी इन सब से भी मिला देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज का शो सुनने के बाद ना आप स्किन प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपने इस शो को बहुत ही ध्यान से सुना, अपनाया और अपनी जिंदगी में लागू किया ना, तो मेरी गारंटी यह है कि अगर आपने साफ सफाई के साथ इन सारी बातों को माना तो आपको इस बारिश के सीजन में स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो भाई आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, अरे वही भाई बने रहना हमारे साथ आज के शो स्वास्थ्य संगिनी में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं मॉनसून स्पेशल यानी कि मॉनसून में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स की। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं अपना शो स्वास्थ्य संगनी।
1: जी हाँ भाई, स्वास्थ्य संगनी आ चुका है ब्रेक के बाद लेके आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
0: तो चलिए शुरू करते हैं रिंगवर्म जो आपको हुआ था मैम।
1: अरे हाँ यार, रिंगवर्म ने तो बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जो रिंगवर्म होता है वो डर्मेटोफिटिस फंगस होते हैं। जी हाँ, देखिए नाम में वॉर्म लगता है ना, लेकिन कोई कीड़ा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये गोल गोल इची पैचेस होते हैं, रेडनेस आ जाती है, रेड पैचेस बन जाते हैं। जो इसका कोना होता है वो थोड़ा सा ड्राई रहता है, खुजली होती है। ये अक्सर आपके अंडर आर्म्स में होता है, थाई एरियाज में होता है, और वो एरियाज होते हैं जहाँ पे स्किन थोड़ी सी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहती हो, यानी कि थोड़े से जॉइंट्स हो वहाँ स्किन आपकी मुड़ती है। ये हाईली कंटेजियस होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या फिर टावल, कॉम्ब या फिर ऐसी चीजें जो आप शेयर करते हैं, इनसे भी फैल सकता है। और सबसे स्केरी बात पता है क्या है लिसनर्स? भाई देखिए, ये पेट्स के थ्रू भी फैल सकता है। अब इससे आप समझ चुके होंगे। अरे चलो थोड़ा और आसान भाषा में बता देते हैं भैया, ये रिंग वर्म वही होता है यानी कि दाद।
0: ओहो, लेकिन मैम इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या अब हम पेट भी नहीं पाल सकते घर पे?
1: नहीं नहीं, पाल सकते हैं, बिल्कुल पाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी और सफाई के साथ। देखो माइल्ड केसेस में एंटीफंगल क्रीम जैसे क्लोट्रिमेजोल, लेकिन 2 से 4 वीक्स तक रेगुलर लगानी पड़ती है वो, चाहे सिम्टम्स पहले से इम्प्रूव हो जाए या फिर वो पूरी तरीके से ठीक होने लग जाए। आपको ये क्रीम 4 हफ्ते तक तो लगानी ही लगानी है, वरना इन्फेक्शन वापस आ जाता है। तो ये एक छोटी सी क्रीम होती है जो आप अभी से मंगा के रख ले, और अगर आपको लगता है कि भैया दाद होने वाला है या हो रहा है या हो गया है, तो आपको ये क्रीम जरूर मंगा के लगानी है।
0: मैम मैंने सुना है कि एथलीट फुट भी कुछ होता है जो कि ऑफिस जाने वाले लोगों को ज्यादा होता है, उनकी बड़ी प्रॉब्लम है ये।
1: तो आज के तुम सारे ऑफिस वालों के पीछे ही पड़ी हो? चल अच्छा चलो ठीक है भाई, जो तुम्हारी कंफ्यूजन है वो तो कई लोगों की कंफ्यूजन है। एथलीट फुट, जी हाँ, देखो इसमें टोस के बीच यानी जो हमारे पैर की उंगलियां होती हैं उसके बीच में आपको इचिंग होने लग जाएगी, खुजली होगी, बर्निंग, ऐसा लगेगा कि जलन हो रही है, स्किन आपकी वहां से पील होने लग जाएगी यानी कि निकलने लग जाएगी। जब हम गीले जूते पहनते हैं या गीले सॉक्स पहनते हैं और लंबे टाइम तक उसको पहने रहते हैं, और फीट का जो मॉइस्चर होता है वो इससे इवेपोरेट नहीं हो पाता, और फंगस बहुत ही तेजी से ग्रो होने लग जाता है। आपने देखा होगा, और जैसा कि अभी तुमने भी कहा, और कई लोग ये कहते हैं कि ये ऑफिस जाने वालों को बहुत ज्यादा होता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि देखो जब कोई ऑफिस जाता है बारिश में, तो उनके जूते में अगर पानी घुस गया, क्योंकि गली में नुक्कड़ पे पानी भरा हमें मिल ही जाता है, या फिर मान लो बारिश शुरू हो गई, तो उनके जूते पक्का गीले हो जाते हैं, और जब जूते गीले हो गए, आपका पैर का जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं निकल आया, तो फिर भैया आपको ये होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़े से खुले जूते पहने।
0: लेकिन मैम अब इसका सोल्यूशन क्या है?
1: देखो सोल्यूशन इसका बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है। गीले शूज सॉक्स को तुरंत बदलना। एक्स्ट्रा सॉक्स, अगर आपको शूज पहनना कंपलसरी है तो आप एक्स्ट्रा सॉक्स बैग में रख लें, और मॉनसून में स्पेशली आपको कॉटन सॉक्स का यूज करना चाहिए जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। फीट डेली वॉश करें, स्पेशली टोज के बीच में, क्योंकि भैया हम बहुत ही ज्यादा आलसी हैं भारतवासी, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये बस नहा लेते हैं और सही से अपने शरीर का कोना कोना साफ नहीं करते। लेकिन इस मॉनसून में आपको अपना शरीर का हर कोना साफ करना है, चाहे वो आपके पैर की उंगलियों के बीच का हिस्सा ही क्यों नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि खुले जूते पहनने हैं, आप कोशिश करें कि आप अगर ऐसे जूते पहने, ऐसे फुटवेयर पहने जिसमें आपका पैर खुला हो, एयर पास आउट हो सकती है, उसका आप इस्तेमाल जरूर करें।
0: और तीसरा फंगल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस।
1: ये कैंडिडा ईस्ट होते हैं जो स्किन पर ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, लेकिन मॉइस्चर वार्मथ में ये थोड़ा सा ओवरग्रो कर जाते हैं। अंडर आर्म्स, जहाँ पे आपके बॉडी में फैट ज्यादा होते हैं वहां पे स्किन पैचेस बन जाते हैं, जिनके एज पर छोटे छोटे सैटेलाइट टाइप के स्पॉट दिखने लग जाते हैं। डायबिटीज पेशेंट के लिए ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हाई शुगर ईस्ट को ग्रो करने में प्रमोट करता है।
0: अब बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। पॉलीक्यूटिस, इम्पेटिगो और बॉयल्स, ये फंगल से भी ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं, मैंने ऐसा सुना है।
1: बिल्कुल सही सुना। ये तब होते हैं जब बैक्टीरिया स्पेशली सेटाफिलोकोकस। देखो ये तब होते हैं सृष्टि जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं। फॉलिक्यूलिटिस में फॉलिकल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्मॉल पस फिल्ड हो जाता है, पस तो हम सभी जानते हैं, और दाने हमारी बॉडी पे नजर आने लग जाते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग और टाइट कपड़े से ये बहुत ज्यादा होता है। शेविंग के बाद भी ये हो सकता है क्योंकि स्मॉल कट्स बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और दोस्तों आपने काफी बार देखा होगा जब भी आपने अपनी बॉडी को शेव किया होगा तो हमारे जो बॉडी हेयर्स होते हैं उस पे पस जम जाता है, बैक्टीरिया अंदर आ जाती है और वो जो एरिया होता है जहाँ आपने शेव किया होता है वो बहुत ज्यादा खुरदुरा हो जाता है।
0: मैम ये इम्पेटिगो ये तो बच्चों में ज्यादा होते हैं ना?
1: इम्पेटिगो बच्चों में कॉमन है, रेड सोर से शुरू होता है और फिर ये फट जाता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हनी कलर्ड क्रस्ट बन जाता है, हाईली कंटेजियस होता है, स्कूल में ये बहुत तेजी से फैलने लगता है क्योंकि बच्चे क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। देखो इसीलिए कहते हैं कि जब हमें कोई बीमारी होती हो या ऐसा मौसम चल रहा हो जब बीमारी ज्यादा फैले तो अपनी चीजों को अपने तक ही सीमित रखें, ज्यादा शेयरिंग ना करें।
0: पर मैम बच्चे मानते कहाँ हैं? अगर ये किसी बच्चों को हो जाता है तो उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
1: देखो भाई पेरेंट्स की जो कैटेगरी होती है हमारे भारत में बहुत समझदार कैटेगरी होती है, इसीलिए थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम को माइल्ड केसेस में लेना चाहिए जिससे ये ठीक हो सकता है, और जब तक सोर्स हील ना हो जाए बच्चों को स्कूल बिल्कुल ना भेजें। अगर आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो दूसरे बच्चों को भी ये बीमारी फैल सकती है। अपने नेल्स और बच्चों के नेल्स दोनों को छोटा रखना है क्योंकि भैया इससे बच्चे स्क्रैच जरूर करेंगे और स्क्रैच करने से इन्फेक्शन और भी ज्यादा फैल सकता है।
0: तो मैम कहीं ना कहीं स्कूल वाले इसलिए भी हमारा नेल कट करा के रखते थे।
1: वही जो पीटी सर थे ना, पीटी सर से तुम पीटी हो कभी?
0: अरे मैम उनसे कौन बचा है यही बताइए।
1: तो भैया पीटी सर का एक बार धन्यवाद जरूर करिएगा कि सर अच्छा हुआ आप हमारे नेल्स को कट रखते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने नेल्स कट ही रखने चाहिए, नहीं तो स्क्रैच करेंगे और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है।
0: तो मैम ये जो बॉयल्स होता है वो क्या होता है?
1: अरे बॉयल्स तो सबसे पेनफुल चीज का नाम है, इसमें दर्द होता है, पस भर जाता है और जो हेयर के लम्स होते हैं, फॉलिक्यूल्स होते हैं, उसपे डीप इन्फेक्शन यानी कि बहुत गहरा इन्फेक्शन हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सृष्टि कि बॉयज को खुद से कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, इससे इन्फेक्शन और भी ज्यादा डीप हो जाता है और फैलने लग जाता है। ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकते हैं जो कि डेंजरस हो सकता है।
0: तो फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हमें बॉयज हो जाए तो?
1: देखो छोटे बॉयज के लिए हमें वार्म कंप्रेस की हेल्प लेनी चाहिए। अब ये वार्म कंप्रेस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए भैया गर्म पानी लेना है किसी भगोने में या फिर किसी पतीले में और उसमें एक कपड़े को भिगो देना है। जब कपड़ा गर्म हो जाए, पानी उसमें अच्छे से आ जाए, फिर उस कपड़े को अच्छे से निचोड़ लेना है और इन्फेक्टेड एरिया में रख देना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे आप किसी कपड़े को गर्म पानी में भिगो के और सिकाई करते हैं ना, जस्ट बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। देखो ये थोड़ा सा तो गर्म होना चाहिए क्योंकि अगर आपको पेन है तो ये आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता जा रहा है, साथ में फीवर भी हो रहा है, तो मेरी सलाह और डॉक्टर की सलाह आपसे यही है कि मेडिकल हेल्प जरूर लें। ये सबसे ज्यादा सेफ होता है बॉयज में क्योंकि अगर एक बार हो जाए और अच्छे से इलाज ना हो, पूरी तरीके से ये ठीक ना हो, तो ये बाद में भी फैल सकता है।
0: अरे मैम आपने तो बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताई हमें।
1: हाँ भाई इन्फॉर्मेशन तो यूजफुल है ही है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक इसलिए क्योंकि भैया देखो बारिश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें बारिश में एक कप चाय तो बनती है ना सृष्टि?
0: हाँ मैम
1: पियोगी?
0: चलिए
1: चलो ठीक है हम दोनों जाते हैं दोस्तों, चाय पीकर आते हैं इस छोटे से ब्रेक में। आप भी जाइए चाय बनाइए और चाय लेके बैठ जाइए क्योंकि हमारी चाय तो भैया बनी बनाई इंतजार कर रही है, लेकिन आपको तो शायद बनाना पड़ेगा। लेकर आते हैं चाय को और बात करते हैं, तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे और बात करते हैं इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे और प्रिवेंशन। क्योंकि घरेलू नुस्खे इसीलिए दोस्तों क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हम जब तक घरेलू नुस्खा नहीं आजमाएंगे हमारी कोई भी इलाज जो है वो पूरा नहीं होता। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आरजे आयुषी, साथ में मेरे हैं सृष्टि, जो कि बहुत सारे सवाल लाई हैं और आज मुझसे ऐसा लग रहा है कि सारे मॉनसून का खजाना निकलवा के ही रहेंगी। अब आप ये सभी जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कुछ मॉनसून के स्पेशल स्किन इन्फेक्शन की, क्योंकि मॉनसून अकेला नहीं आता, इन्फेक्शन को साथ लेकर आता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कुछ घरेलू नुस्खे के, यानी कि जो हमारी दादी नानी के ज़माने से चले आ रहे हैं और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
4: तो मैम चलिए हम नीम से शुरू करते हैं। मुझे याद है बचपन में मम्मी नीम के पत्ते ले आती थी।
3: अरे नीम का पत्ता, बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो नीम एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज वाला होता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। देखो नीम का पानी जो होता है, अगर हम नीम को पानी में उबाल कर उससे नहाएंगे और उसका पेस्ट जो है हम अपने इन्फेक्टेड एरिया में लगाएंगे, तो ये जितनी बीमारियां है ना जिसके बारे में अभी हमने बात की, ये और भी ज़्यादा कम हो सकती हैं। उसके बाद हल्दी, देखो हल्दी भी एंटीसेप्टिक होती है। बेसन के साथ पेस्ट बनाकर इसको लगाएं, क्योंकि ये देखो एक ट्रेडिशनल तरीका है और इफेक्टिव प्रैक्टिस भी है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो छोटे मोटे ये प्रॉब्लम है ना, ये ठीक हो सकते हैं जस्ट घरेलू नुस्खे को आजमा के।
4: मैम कहीं ना कहीं ये घरेलू नुस्खे सही हैं, क्योंकि ये सब हमने कभी ना कभी किया है अपने लाइफ में। अगर हम बात करें कोकोनट ऑयल की, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
3: देखो कोकोनट ऑयल जो है वो सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं लगता, बल्कि उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। ये इसमें कूट कूट के भरी है और ये स्किन मॉइस्चराइज भी रखती है और बिना पोर्स को ब्लॉक किए ड्राई क्रैक्ड स्किन के लिए भी ये वर्क करती है। स्पेशली फीट्स के लिए मॉनसून में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है हमें, और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। इसीलिए मॉनसून में ट्राई करें कि आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें। देखो इसी के साथ साथ तुम एक चीज़ को भूल रही हो।
4: वो क्या मैम?
3: तुलसी। अरे वही जो हमारे आंगन में है, जिसकी तुम चाय बहुत पीती हो। देखो तुलसी भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल और देखो तुलसी भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। साथ ही साथ मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर हम इसको मिला के या फिर इसको अलग अलग भी यूज कर लेते हैं, तो हमारे स्किन के कई सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं।
4: मैम ये सब तो हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, किचन में ही मिल जाती है।
3: लेकिन सृष्टि एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर भी जरूरी है ना?
4: बिल्कुल, लेकिन वो है क्या मैम? लेकिन मैम एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर भी तो जरूरी है ना?
3: बिल्कुल। देखो अगर इन्फेक्शन सीवियर हो, स्प्रेड हो रहा हो या कुछ दिनों में इम्प्रूव ना हो, तो होम रेमेडीज पर हमें बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, तुरंत ही डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब सब लोग सोचते हैं कि नहीं भैया डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की प्रॉब्लम को क्या ही करेंगे, लेकिन मैं बताऊं भैया स्किन की प्रॉब्लम डर्मेटोलॉजिस्ट ही ठीक कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब लोग ऐसी ही डिग्री लेके बैठे हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई। देखिए इनके पास आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि स्किन अगर डैमेज हो गई तो ये हमें बड़ी बीमारियों के चपेटे में भी डाल सकती है।
4: तो हमें मैम ज्यादा देर ना करते हुए डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट आप बताना चाहेंगे कुछ?
3: क्या?
4: जैसे कि प्रिवेंशन टिप्स।
3: ओ हाँ, प्रिवेंशन टिप्स, चलो मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले जो है वो आता है स्किन को ड्राई रखें, बारिश में भीगने के बाद तुरंत टॉवल से उसे पोंछ लें और स्किन को ड्राई कर लें, और अगर आपने गीले कपड़े पहन रखे हैं तो उसको आपको बिल्कुल से ड्राई करना है। और नंबर टू की अगर मैं बात करूं तो भैया वो है लूज और ब्रीदेबल कॉटन कपड़े। अगर आपने टाइट कपड़े पहन रखे हैं वो भी बारिश में, तो मैं आपको बता दूं भैया डायरेक्टली आप न्योता दे रहे हैं बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस को। इसीलिए कपड़े थोड़े ढीले पहने, कॉटन के पहने, टाइट बिल्कुल भी ना पहने, और वो पहने जिसमें आपकी स्किन ब्रीद कर पाए।
4: तो नंबर 3 मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, फुटवियर का ख्याल रखना, वाटरप्रूफ या क्विकली ड्राइंग शूज प्रेफर करें, मल्टीपल पेयर्स रखें ताकि रोटेट कर सकें।
3: और नंबर 4 मैं बताती हूँ। देखो भैया, रेगुलर आपको नहाना है, क्योंकि हम जो भारतीय होते हैं वो नहाने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते हैं। इसीलिए एक बारिश अगर हो रही है, तो अगर आप बारिश में भी बारिश के पानी में नहा कर आए हैं, तो भी आपको एक बार साफ पानी से नहाना चाहिए। उसके बाद स्किन फोल्ड को स्पेशल केयर दें, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गए, आपकी थाई एरिया हो गया, यहाँ पे आपको मेडिकेटेड पाउडर जरूर यूज करना चाहिए, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है।
4: नंबर 6, कंटेमिनेटेड वाटर अवॉइड करें, और अगर अनअवॉइडेबल हो तो बाद में क्लीन वाटर से वॉश करें। नंबर 7, पर्सनल आइटम जैसे टॉवल, कॉम, रेजर्स किसी के साथ शेयर ना करें।
3: और नंबर 8 है दोस्तों, बैलेंस्ड डाइट और हाइड्रेशन, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर प्रॉब्लम 2 या 3 दिन से ज़्यादा हो रही हो और इम्प्रूव ना हो रही हो ज़रा सी भी, और साथ ही साथ फैलती जा रही हो, या आपको फीवर पेन दे रही हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
4: और सेल्फ मेडिकेशन, स्पेशली बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड क्रीम्स अवॉइड करना चाहिए, ये इन्फेक्शन को मार्क्स या वर्सन कर सकता है।
3: बिल्कुल सही सृष्टि। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं सभी को बताना चाहती हूँ, सृष्टि तुम भी इसको ध्यान से सुनना। देखो, जिन्हें डायबिटीज होती है उन्हें मॉनसून में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सावधानी रखनी चाहिए। हाई ब्लड शुगर वाले को ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों की ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं, इसीलिए उनमें इसका खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को कैंडिडियासिस और बॉयस जैसे इन्फेक्शन का रिस्क डबल होता है।
4: मैम, तो उन्हें क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली?
3: देखो, अगर मैं बात करूँ सिर्फ उन्हीं को क्या करना चाहिए, तो भैया अगर आपको ब्लड शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो स्ट्रिक्टली उन्हें आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। अपनी स्किन फोल्ड जैसे अंडर आर्म्स हो गए, थाई एरिया हो गए, वहाँ पे स्पेशली उनको आपको ड्राई रखना है। अगर कोई भी अनयूजुअल रैशेज या इन्फेक्शन दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस इन्फेक्शन को डॉक्टर को दिखाएंगे उतनी ही जल्दी ये ठीक हो सकता है।
4: बहुत वैल्यूएबल टिप्स हैं मैम। तो दोस्तों, ये था हमारा जरूरी प्रिवेंशन टिप्स। तो चलिए चलते हैं आज के एपिसोड के आखिरी हिस्से के तरफ।
3: जी हाँ, आखिरी हिस्से के बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक। देखो जिसकी हमारी चाय तो खत्म हो चुकी है, अब चलते हैं भाई ये कप धोने को दे दें, क्योंकि सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाते हैं दोस्तों, हम लोग बस यूं जाते हैं और यूं आते हैं, और आपसे मिलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में और भी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुके हूँ वापस। मैं आपकी RJ आयुषी, मेरे साथ को होस्ट सृष्टि, लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बारिश में होने वाले कुछ स्किन प्रॉब्लम की। अभी हमने काफी सारे स्किन प्रॉब्लम्स की बात की, जो कि आपको भी होते हैं, आपके घर के बच्चों को भी होते हैं और बुजुर्गों को भी होते हैं। तो इनके बारे में हमने ये तो जान लिया कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं और कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी जरूरी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए भैया, ये मौसम बड़ा ही खूबसूरत होता है, लेकिन खूबसूरत के साथ बहुत सारी चीजें ये लेकर आता है,
4: लेकिन इस ब्यूटीफुल सीजन के साथ थोड़ी हेल्थ चैलेंजेस भी आती हैं। और हमने देखा कि स्किन प्रॉब्लम उनमें एक मेजर कंसर्न है। फंगल इन्फेक्शन जैसे रिंग वॉर्म, एथलीट फुट, कैंडिडियासिस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन जैसे फॉलिकुलिटिस, इम्पेटिगो, बॉइल्स।
3: लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये सिंपल प्रिकॉशन से ठीक हो सकता है, काफी हद तक ये सही हो जाता है और काफी लोगों को ये हेल्प भी पहुंचाता है। स्किन बस आपको ड्राई रखना है, सही तरीके से कपड़े पहनने हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है और टाइमली मेडिकल कंसल्ट लेना है। ये बेसिक स्टेप आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे इन स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए।
4: और दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी अपने को स्किन प्रॉब्लम हो रही है या जो इम्प्रूव नहीं हो रही है, प्लीज इग्नोर मत करिए। डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने में शर्म मत करिए।
3: बिल्कुल सही। और आखिर में भैया, मॉनसून की इस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए जरूरी ये भी है कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखें। एक छोटा सा एफर्ट जैसे कि गीले कपड़े को तुरंत बदलना, पैरों को ड्राई रखना, हमें इन कॉमन लेकिन अनोइंग प्रॉब्लम से बचा सकते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और मैं ये भी कहूंगी कि अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों और अपने पूरे फैमिली का इस सीजन में एक्स्ट्रा ख्याल रखें, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो, वर्किंग या प्रोफेशनल या एल्डरी, और अपना भी ख्याल रखें।
3: बिल्कुल सही दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा, सीखा होगा, जाना होगा। और जानना ही सिर्फ काफी नहीं होता, इसको अपने जिंदगी में लागू भी करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो भैया, जाते जाते मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बस मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने इन इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा खुरेदा, सही से इसका इलाज नहीं कराया, तो ये आगे चलकर स्किन कैंसर का भी रूप ले सकती हैं। इसीलिए इन्हें छोटा समझने की भूल ना करें। दिखती बड़ी आम सी बीमारी है, लेकिन ये आम सी बीमारी है नहीं, इसको ठीक करना है, हमें इसके लिए जागरूक होना है और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी को साफ और सुरक्षित वे से आगे बढ़ाना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जो कि होने वाला है आपका बुधवार। बुधवार को आपकी RJ उन्नति आएंगी लेके आपके लिए कुछ हेल्थ की टिप्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जो कि आपको जानने चाहिए, सीखने चाहिए, समझने चाहिए और उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में सुरक्षित रहिए।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान में नहीं आ पाती है। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भावस्था महिलाओं को कमजोरी, थकान या चक्कर आना, इन सभी लक्षणों के साथ तो ये सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए, कब जांच करानी चाहिए, और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। आप दोनों का स्वागत है। सेहतिया सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये एनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजे जी, सरल भाषा में कहें तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब उसे एनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की ज़रूरत भी पूरी करनी होती है। ऐसे समय में आयरन और फोलिक एसिड की ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है। अगर ये ज़रूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव का, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
1: और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारियों का इलाज नहीं करना है, बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है।
0: दुष्चक्र, वो कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद को कुपोषित और उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में यदि बच्चे भी पर्याप्त पोषण ना मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, ये बात सचमुच सोचने वाली है। यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। सेहतिया सिंह जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं।
1: अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आ जाते हैं, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज लगती है, या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा तो ये केवल थकान नहीं हो सकती है, या आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं,
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की रीना की कहानी सुनिए। दूसरी बार वो गर्भवती थी, उसे लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाती है। वहाँ खून की जाँच होती है, पता चलता है कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा और यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवाना चाहिए।
0: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच क्या है?
1: और पूरी तरह गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती है, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से या 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.0 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर एनीमिया कहा जाता है।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: अगला, IFA यानी आयरन और फोलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरत विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही, केवल गोली खाने से ही बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण है।
0: किस तरह का भोजन?
2: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता का ध्यान दें। खासकर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
0: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है।
2: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिलना चाहिए।
0: ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेहतिया सिंह जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, आखिर ये है क्या चीज?
1: सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी होने वाला एनीमिया पाया गया है और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
0: यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह।
1: बिल्कुल, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नस के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर तेज तथा निगरानी में इलाज को जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते?
1: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच के आधार पर होता है।
2: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता है जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई है कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना बिल्कुल सही नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर कराइए, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
1: और याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANSE जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ती है।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANSE की जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया तथा IVFCM की भूमिका पर। तब तक के लिए नमस्कार।
3: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी? लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
1: आरजे अंशिका।
4: लीजिए भाई, मैं इनको ले आई, कहीं से गिरते पड़ते संभलते उठाते इसको, भले मेहनत लगी पर मैं इसको ले आई हूँ। तो आरजे अंशिका आपकी आ गई हैं। कल बहुत लोगों ने मिस किया कि सहेली एक होती है तो उतना ज्यादा वाला जैसे शोरगुल होता है वो नहीं होता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब सहेलियां दो रहेंगी तभी तो कहीं पे भी जब बैठो तो जहां मिल जाओ चार यार, वो वाली बात नहीं सुनी है आपने?
1: जी मैम,
4: तो वैसा ही वाला है। तो अंशिका आ गई हैं और मैं भी आ गई हूँ आपका पसंदीदा शो लेकर के, जिसका नाम है
3: सुन सहेली
4: विद आरजे समता एंड
1: आरजे अंशिका।
4: जी बिल्कुल, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और प्यारी सी दोपहर में, यानी कि जो धूप है भाई, कल से फिर से बहुत ज्यादा वाली गर्मी आ गई है और गर्मी ने यूटर्न ले लिया है, क्योंकि ये जो गर्मी है ना, इस गर्मी में बच के रहना है। कभी फीवर है, कभी ज्यादा उलझन हो रही है, क्योंकि मैं खुद ही इन सब चीजों से ग्रस्त चल रही हूँ। क्योंकि देखो भाई, यहाँ से धूप से जाते हैं तो एसी चलाते हैं, एसी में बैठो या फिर ठंडा पानी पी लो, तो इससे क्या होता है ना कि फीवर अंदर में कहीं ना कहीं रह जा रहा है
1: जी,
4: जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो प्लीज आप सभी लोग भी अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रहें और अपना ध्यान देते रहें एंड समय समय पर योगशाला जरूर सुनते रहें, ठीक है?
1: क्योंकि कहते हैं ना, करो योग रहो निरोग।
4: करें योग रहे निरोग।
1: ओके,
4: करो योग नहीं,
1: हाँ
4: फिर से बोलो,
1: करें योग रहे निरोग।
4: ये देख लो, एक दिन अगर ये पटरी से उतर जाती है तो ये बिगड़ के आती है, हमको समझ। इसीलिए मैं इसको पटरी पे से उतरने नहीं देती हूँ, मैं तभी इसको छुट्टी नहीं देती हूँ। हाँ, जैसे ये फोन पे कह देती है ना कि मैं आज नहीं आऊंगी, तो मुझे लगता है ये गई बिगड़ी, आज तो ट्रेन पटरी से उतर ही गई है ना,
1: लेकिन ट्रेन पटरी पे वापस आ गई,
4: वापस आ जाती है। तो भैया छुट्टी उट्टी ना लिया करो, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है फिर, जैसे कल हो गई थी बहुत ज्यादा वाली। तो इसके ना आने पर सोचो, अगर तुम सोचो कि जब किसी के नहीं आने से किसी की तबीयत खराब हो जाए, इट मींस उसका रिश्ता कितना गहरा हो सकता है,
1: बहुत गहरा है।
4: इंसान काम के लिए थोड़ी कहता है कुछ,
1: बिल्कुल,
4: लेकिन लगता है ना कि हाँ भाई क्यों नहीं आई, कहाँ गिर गई, कहाँ फाट पड़ी, फिर
1: कहाँ बिना देखे ध्यान कहीं और था,
4: तो कहाँ ध्यान था, ध्यान तो मेरा कहीं और होना चाहिए, आपका ध्यान क्यों उधर उधर होता है,
1: इधर उधर, इधर
4: तुम्हारा ध्यान इधर होता होगा कि पता नहीं मैम ने
1: क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ध्यान वही था। अरे वाह, ये तो मैम ने आधे में जो आधी बात कही ना, वो आधी समझ गई। नहीं नहीं, मेरा ध्यान वही था, और इसलिए वो कहते हैं ना, नजर हटी
4: दुर्घटना
1: घटी, तो नजर हट गई तो दुर्घटना घट गई। लेकिन कोई बात नहीं, दुर्घटना घटे या जो भी घटे, हम हर दिन आपको यही मिलेंगे। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो बात दूसरी है, वरना हम आपको यही मिलेंगे, आपको
5: बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
4: जी बिल्कुल। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका शो, और शो को शुरू करने से पहले जो औपचारिकता है, आप सभी को पता है कि हम पोयम बोलते हैं। कल अंशिका जब पोयम बोल रहे थे ना, तब मैंने आपको बहुत मिस किया, क्योंकि मुझे ना रोड बिल्कुल भरी भरी
5: भरी
4: खाली रोड नहीं मिली थी मुझे। तो जब खाली रोड मिलती है ना, तो लगता है कि हाँ हम शुरू करें फिर से। तो कल मुझे रोड भी भरी भरी मिली, चेहरा भी थोड़ा सा उदास था, मन भी नहीं लग रहा था। तो इसी सारे कारणों को मिक्स करके जब हम कुछ सोच लेते हैं ज्यादा, तो ही कुछ ऐसा फिर उसका असर हो जाता है।
5: बिल्कुल।
4: खैर आइए चलिए शुरू करते हैं आज की लव सीजन को, यानी कि आज का लव सीजन हमारा ये है कि आज हम पोयम आपको बताएंगे। तो शुरू करें अंशिका।
5: बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने के लिए पहले हम रास्ता देते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे प्रोग्राम का नाम है सुन सहेली। तो जहाँ मिल बैठती हैं दो सहेलियाँ, जहाँ मिल बैठती हैं दो सहेलियाँ, वहाँ होती है बहुत सारी बात, वहाँ होती है बहुत सारी बातें, कभी होती है इधर उधर की बहुत सारी क्या,
4: बहुत सारी
5: शॉपिंग की भी बातें। और कभी हम करते हैं इनकी तो उनकी थोड़ी सी चुगली भी, थोड़ी सी मोहल्ले की बातें, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब। लेकिन इस सब के साथ हम करते हैं बहुत सारी काम की भी बात।
4: बिल्कुल।
5: तो चलिए करते हैं शुरुआत सुन सहेली की आरजे समता के साथ।
4: एग्जैक्टली। तो चले अंशिका शुरू करें बिना देर लगाए हुए, क्योंकि आज बातें कम और गाने ज्यादा होंगे। आप सभी को पता है कि सैटरडे के दिन हम बोलते कम
5: हैं, और एक दिन की हमारी आवाज आपको कम मिलती है,
4: क्योंकि हर रोज की तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि हम हर रोज अगर चाय पिए, और चाय पीने में अगर हम चाय पत्ती ना डालें, और हर दिन और एक दिन हमें चाय पत्ती वाली चाय मिल जाए, तो उसका कितना अच्छा वाला असर होता है।
5: जी मैम,
4: उदाहरण थोड़ा गलत हो गया।
5: नहीं नहीं, सही था,
4: दिमाग में कुछ और था चाय को लेकर के। और चाय का
5: वो मुझे चाय से सॉन्ग बहुत अच्छा याद आ गया। वो क्या था, मैं याद करती हूँ
4: जी।
5: हाँ, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। तो आपने
4: मम्मी को नहीं बुलाना चाह रही है चाय पे?
5: वैसे मुझे चाय, अरे बुलाना चाहेंगी, नहीं बुलाएंगी तो जाएंगी का,
4: अगर नहीं बुलाएंगी तो अंशिका मम्मी बन जाएगी मेरे।
5: बिल्कुल,
4: अंशिका बुला लेगी। ठीक है,
5: सास और दामाद का रिश्ता बहुत प्यारा होता है।
4: हो गया,
5: हो गया,
4: चलो आप शुरू करें।
5: जी,
4: प्यार का एहसास दिल को महका जाता है। प्यार का एहसास दिल को महका जाता है, दूर दूर हो कोई तो पास नजर आता है, धड़कनों की हर एक रवां रफ्तार में, बस तेरा ही एक नाम गुनगुनाया जाता है। वक्त की धूप में छांव खो जाए, वक्त की धूप में छांव सा, क्या बोल रहे हैं आज हम, क्या
5: मतलब आपके शब्द जो है वो उसका साथ नहीं दे रहे, आपकी जीवा का साथ नहीं दे रहे।
4: मतलब मैं बोल कुछ रही हूँ, सोच कुछ रही हूँ, कर कुछ रही हूँ, जा कहीं रही हूँ, सोच कहीं रही हूँ,
5: ऐसा ही होता है मैम, ऐसा ही होता है
4: जब इश्क होता है,
5: जब इश्क होता है तो ऐसा ही।
4: मुझे कोई इश्क मिश्क मुश्क नहीं हुआ है। समझ में आया, कुछ नहीं इश्क मिश्क कुछ कुछ कुछ नहीं।
5: जब इश्क का रोग लगता है तो
4: नहीं नहीं कोई रोग नहीं लगा है मुझे। चलो कम टू द पॉइंट, अपने काम पे फोकस करते हैं।
5: यस मैम।
4: वक्त की धूप में छांव सा जो लगे, वो किनारा मुकम्मल हमें जो मिले, जिंदगी के सफर में तू हम सफर बने, हर अंधेरे में उम्मीद का दीप जले, फासलों के निशा मिटाने लगे हैं हम, ओहो फासलों के निशा मिटाने लगे हैं हम, गम छुपा कर खुशी चुराने लगे हैं हम, तेरी आंखों में खुद को जो पा लिया, रब से क्या मांगे, सब कुछ पा लिया सनम, प्यार की ये कहानी रहेगी सदा, दिल से दिल का जुड़ाव रहेगा सदा, साथ तेरा मिला तो खुदा मिल गया, ये रूहानी का नाता, ये रूहानी सा नाता रहेगा सदा।
5: वाह, जबरदस्त, बहुत ही प्यारी लाइंस और बहुत ही प्यारी, मैम ने उसको फीलिंगफुल तरीके से बोला भी। तो आई होप कि जहाँ कहा गया है वो वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स में जब कोई अच्छी एनर्जी जाती है पॉजिटिव, तो उसका रिएक्शन भी आता है पॉजिटिव। तो फिलहाल तो हमने पॉजिटिव एनर्जी भेज दी है, अब हम पॉजिटिव रिएक्शन का इंतजार करेंगे। तो प्यार पे आज ये बहुत ही प्यारी सी कविता के साथ हमने शुरुआत की है भाई। और प्यार, प्यार एक ऐसा वर्ड की जिसमें आप कहते हैं ना कि ढाई अक्षर प्रेम के जिसने पढ़ लिए
4: वो पढ़े सो पंडित होए।
5: बिल्कुल। तो ढाई अक्षर जरूर हर किसी को अपनी लाइफ में पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा एहसास होता है और हर किसी को नहीं मिलता, और जिसे मिल जाता है वो इस दुनिया में बहुत बहुत बहुत ज़्यादा एक हम कहते हैं कि खुशकिस्मत होता है। तो आई होप कि आप सभी भी खुशकिस्मत हों और आप सभी को भी वो एक एहसास जरूर मिले। इसी दुआ के साथ चलिए शुरुआत करते हैं और आज बताते हैं नेक्स्ट वाला हमारा जो की टॉपिक है वो क्या है। क्या बताना है मुझे, मैं एक दिन बाद आई हूँ और मुझे ये भी नहीं याद आ रहा है मैम कि मुझे क्या बताना है। अब
4: क्या बताना है, ये क्या हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं।
5: ये आज हमारी ये स्टूडियो की वाइब लगता है कुछ
4: ठीक नहीं है, कुछ अच्छा वाला माहौल नहीं लग रहा है मुझे। आज हम लोग कुछ भूल रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ ऐसी हवा में ऐसी कोई गैस वैस छिड़की गई है ताकि हम लोग यहाँ बैठे हम सब भूल जाएं। पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब सोच कुछ रहे हैं भूल कुछ रहे हैं, हो सकता है कि ये सैटरडे का असर हो और कल संडे है। एनीवे चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के बहुत ही प्यारे से थॉट ऑफ द नहीं क्या
5: रियल फैक्ट्स
4: थॉट ऑफ द डे। क्या हो रहा है यार, मतलब
5: हो रहा है
4: मतलब
5: कोई बात नहीं,
4: रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
5: यस, तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है प्यार करो तो दिल और दिमाग दोनों खोल कर, क्योंकि जब दिल और दिमाग दोनों एक साथ होते हैं तो इंसान कभी भी अपने प्यार में धोखा नहीं खाता है या उसे ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए जब भी प्यार करें तो अपने दिल के साथ अपने दिमाग की भी थोड़ी सी सुननी चाहिए।
4: बिल्कुल।
5: अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक टाइम था जब कहा जाता था प्यार अंधा होता है, लेकिन आज आप इस 21 सेंचुरी में अगर बात करेंगे तो वाकई प्यार अंधा नहीं होता। क्योंकि देखिए, मान लिया आपने किसी से बहुत प्यार किया है, लेकिन दिमाग खुला रखने का सेंस ये होता है कि जब कोई आप पर ज़्यादा प्यार जताने लगे, आपसे ज़्यादा टची होने लगे, कोई अनजान इंसान जिससे आपको मिले हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं, तो वहाँ पर हमें हमारे दिमाग की भी सुननी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि कोई और उसका पॉइंट है, उसके मन में कुछ और चल रहा हो। क्योंकि सावधान रहना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि आप अपने दिल की सुने उतना ही अपने दिमाग की भी सुने, क्योंकि प्यार में सावधानी की जरूरत ज्यादा होती है।
4: कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
5: बिल्कुल
4: सेम थिंग वही होता है प्यार में भी, क्योंकि एक हर एक रिश्ते की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, और जब हम उस रिश्ते को किसी के साथ अगर हम शेयर करते हैं या किसी के लिए शेयर करते हैं, तो सबसे बड़ा वाला एक पॉइंट आता है कि हम उसे कितने दिनों तक और कब तक संभाल के रखते हैं या फिर कहाँ संभाल के रखते हैं। कुछ लोग संभाल के रखते हैं अपनी घर के उस संदूक में जो एक बार ताला लगा और कभी नहीं उसकी चाबी दरिया में फेंक देना। ऐसा गाना नहीं है कि चलो मैं तुम्हें बंद कर लूं और दरिया में फेंक दूं चाबी, तुझे दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूं चाबी,
5: दिल में बंद।
4: तो ये गाना यूं ही नहीं बना है, जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो एग्जैक्टली हम उन्हें दिल में बंद करके और चाबी जो है वो दरिया में ही फेंक देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस अलमारी में रखते हैं जहाँ ऑलरेडी इतना कचरा होता है, कपड़े होते हैं कि हम कभी भी निकालते हैं और वो हाथ से फिसल कर कभी ना कभी वो गिर जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी संभालते हैं, तो आई थिंक हमें उन हाथों में नहीं पड़ना है जिनकी अलमारी में ऑलरेडी इतना करकट है। हमें उन दिलों में जाना है जिसको लॉक करके उसकी चाबी को हम दरिया में फेंकते हैं।
5: वाह, क्या मतलब, मैं कहूँ कि क्या मैम ने कितनी अच्छी बात कही है। तो वही दिल अपने लिए
4: असर है ना, इसीलिए।
5: हाँ हाँ मैम, मुझे पता है असर है। तो दिल अपने लिए ऐसा ढूंढे जो ताउम्र आपके दिल में रहे और आप उसके दिल में रहे। और इसी के साथ भाई, दिल आज दिल का मामला बहुत ही अच्छा है और आज हमारे पास कुछ है जो दिल से रिलेटेड है
4: जी,
5: लेकिन वो क्या है ये अभी नहीं बताएंगे हम।
4: बता दो, अभी बता दो, उसके बाद हम फिर आज लिसनर्स को दो गाने सुनाने का वादा है।
5: ओ,
4: तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ हो गया,
5: रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ हो गया।
4: हमने तो सुना ही नहीं क्योंकि हम कहीं और थे, इसलिए मैंने सुना ही नहीं।
5: क्या हो रहा है
4: आज? हो ये रहा है कि इन वादियों में, इन हमारे स्टूडियो में प्यार का माहौल है, और प्यार में जब लोग होते हैं ना तो वो सवरने से ज्यादा बिखरने में ज्यादा वो रखते हैं, अपना
5: बिलीव
4: रखते हैं।
5: आई अंडरस्टैंड।
4: हाँ, ऐसे तुम शब्दों को संभाल के हमको बोलती रहना। तो चलते हैं भाई, और ज्यादा बकवास हो गई है, और मैंने कहा था कि आज बोलना कम है, लेकिन आइए सुना देते हैं इस प्यारे से नगमों को, उसके बाद हम आते हैं आपके अपने शो जिसका नाम है
3: सुन सहेली।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88400918123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ओ आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंप

0: द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे
4: अंशिका।
3: आप मेरा दिमाग स्थिर है।
4: तो भाई अभी हम बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे और बातें बहुत अच्छी होती हैं जब कहते हैं ना कि दिल से दिल की बातें बहुत प्यारी होती हैं और साथ ही साथ में दिल जब दिल से कुछ कहता है तो वो हमेशा सही होता है। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं और आज दिल की बातें बहुत ज्यादा है इसलिए क्योंकि हर सैटरडे को हम प्यार मोहब्बत इश्क विश्क
3: और एग्जैक्टली जब प्यार मोहब्बत इश्क की बातें भी होती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मैंने अंशिका से शेयर करी हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक रेड कार्पेट वाली डायरी बन चुकी है। अंशिका मैंने किसी इंसान से इतनी खुल के बातें नहीं करी है जितना इतना मतलब क्लोजली मैं तुमसे हो गई हूँ। मतलब ये नहीं लगता है मुझे और अंशिका भी मुझसे क्लोज हो गई है बहुत।
4: मैं भी बताती
3: और वैसे भी मुझे एडवाइस भी करती रहती है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो यही एक बॉन्डिंग जो होती है ना एंड टचवुड कि काफी लंबे समय के बाद ऐसी बॉन्डिंग बनी है एंड ईश्वर करेगी ये बनी रहे।
4: वाह वाह, देखा ये भी एक प्यार होता है।
3: कल तभी ये फाट पड़ी थी तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन मुझे पड़ी थी, मुझे आ गई थी कि ये कहाँ फाट पड़ी जा करके। फिर
4: और मुझे ये लग रहा था मतलब हाँ मैं घर पे थी और मुझे फीवर था, मैं रेस्ट कर रही थी, दर्द भी था लेकिन मेरे मन में ये भी था कि आज मैं अकेले कर रही हूँ और वो अकेले
3: इतना परेशान हो गई
4: क्या होता है वो तो मुझे मालूम ही है कि जब मैं अकेले होती तो वो फिर
3: बिल्कुल
4: क्या हो जाता है।
3: तो अभी हम बढ़ते हैं सीधे कुछ OTT सीरियल्स को लेकर के अंशिका, एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम मुझे आज अपने सॉन्ग्स पे देना है, उनको गेम्स के लिए देना है। तो गेम स्टार्ट हम करेंगे 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे शुरू करेंगे एंड उसके पहले आप सभी लोग आ जाएं एंड रेडियो गार्डन वाले फ्रिक्वेंसी वाले उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपकी अपने शो सुन सहेली में। और हम ठीक 2:30 बजे शुरू कर देंगे गेम और गेम के साथ में हम शुरू कर देंगे आपका लव राशिफल भी।
4: तो भाई इंतजार है, इंतजार करें क्योंकि इंतजार का जो फल होता है ना वो बहुत ही मीठा होता है। तो चलिए अब बताते हैं कि सबसे पहले सवाल पूछते हैं।
3: Okay.
4: अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा एक हम कह लें कि माध्यम कौन सा होता है। अगर हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारी बात सिर्फ उस इंसान तक पहुंच जाए और कोई ना जान पाए, तो क्या है वो माध्यम जो सबसे अच्छा होता है?
3: हम समझे नहीं क्या बोला आपने।
4: मेरा कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए मैं अपने दिल की बात किसी से कहना चाहती हूँ और मुझे ये भी है कि कोई और ना समझ पाए, सिर्फ वो एक इंसान समझ पाए, तो वो एक क्या माध्यम है जो हम कह भी दें वो समझ भी जाए और कोई जान भी ना।
3: देखो अगर हम किसी मतलब गैजेट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो सबसे प्यारा फोन है एंड उसके बाद में सबसे आसान तरीका होता है हमें अपने दिल की बात उन तक पहुंचाने के लिए कि यार एक मीटिंग करो, एक मिलो एंड आप इतने फीलिंगफुल से उनसे बात करो ना, आंखों से बात करो ताकि वो आपकी बातें बिना ही सुने वो आपकी फीलिंग को समझ जाए।
4: वाह मैम ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया,
3: लेकिन
4: लेकिन लेकिन ये था कि मेरा सेंस कुछ और था और वो ये था कि भाई अगर आप किसी से अपने दिल की बात करना चाहते हैं और चाहते हैं वो कोई और ना जाने तो सबसे अच्छा माध्यम होता है सॉन्ग्स। हम कोई अच्छा सा गाना गा करके अपने मन की बात अगले तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम आपके हैं कौन मूवी में वो
3: अंताक्षरी जब हो रही थी,
4: तो सलमान खान जी जो हैं वो माधुरी दीक्षित से कहते हैं कि कहो कहो, तो वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है मैं कहती हूँ, लेकिन वो ओपनली उनको ना कह करके सॉन्ग में कहती हैं और फिर उनको समझ में आ जाता है।
3: अच्छा
4: अब इतनी सारी जो है मैंने वो फैलाई है उसका एक मोटिव क्या है वो भी आपको बताते हैं।
3: जो रायता फैलाया है तो उसके लिए चावल बनाना ही पड़ेगा।
4: हाँ
3: जी,
4: तो चावल ये है कि सारे गामा हम सभी ने देखा है, बहुत इंजॉय भी किया है और म्यूजिक और सिंगिंग के मामले में बहुत ही अच्छा शो है जो कि वापसी करने वाला है।
3: ओके
4: अपने नए सीजन के साथ पूरी मस्ती के साथ आएगा और भाई आज कौन होने वाला है, तो चलिए एक नाम को हम रिवील कर देते हैं जो हमें पता है। तो आप सभी ने पवनदीप राजन की सॉन्ग्स को सुना होगा, एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छे सिंगर है वो।
3: पवनदीप ठीक हो गए,
4: हाँ।
3: उनका एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट भी हुआ था, आई थिंक वो ठीक है। और उनकी उनकी शादी की बात चल रही थी, एक बंगाली थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है,
4: अरुणिता।
3: देखा मैंने कहा ना, परनीता परनीति कुछ ऐसे ही था, अरुणिता।
4: यस,
3: तो हाँ मतलब मेरी मेमोरी भी शार्प है।
4: यस, बादाम खाती हूँ। तो मैं बता दूं कि इस शो में वो भी होने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा, बहुत सारी मस्ती होगी, बिल्कुल ना देखना भूलें और टाइम को फिक्स रखें।
3: अच्छा, हमें लगा आप कहने की बिल्कुल मत देखिएगा।
4: नहीं, ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कभी हमें भी नीड हो सकती है, तो पता तो होना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ और किस सॉन्ग के थ्रू पहुंचानी है, वरना पता लगा कि आपको रोमांटिक बात कुछ पहुंचानी थी और आप सॉन्ग गा रहे हैं दिल के अरमां आंसुओं में
3: बह गए,
4: तो ऐसा नहीं करना है ना, पता होना चाहिए
3: जी।
4: और अब नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा नाम है, क्योंकि मुझे तो शो का नाम ही इतना अच्छा लग रहा है ना कि मेरा मन कर रहा है मैं इसे जरूर देखूं। तो इसका नाम है तू ही रे मेरे दिल में, तू ही है मेरे दिल में। बहुत ही प्यारा ये शो है, जो कि अभी जल्द ही रोमांटिक ड्रामा है जो लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। तो आप इसको कहाँ देख सकते हैं, आप इसे हॉटस्टार ऐप पे देख सकते हैं, तो देखना बिल्कुल ना भूलें और अपने वीकेंड को शानदार ज़रूर बनाएं। अब आ जाते हैं कि एक और शो है जो कि बहुत ही प्यारा है, जिसका नाम है कैसी तेरी दिल लगी।
3: कैसी तेरी दिल लगी
4: बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा। हम कहते हैं ना जब दो से तीन तो बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल में एंगल क्या है वो आप जब देखेंगे तब पता चलेगा।
3: ओके,
4: तो इसे जरूर देखिएगा और एंजॉय करिएगा। तो चलिए भाई, हम हमेशा कहते हैं ना, अरे यार भूल चूक माफ, तो वैसे ही कुछ आज एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज का भी नाम है, जो कि है भूल चूक माफ। ये बहुत ही अच्छी है और इसमें ये दिखाया गया है कि शादी से पहले क्या होता है और शादी के बाद क्या होता है। इट मीन्स कि शादी के पहले कैसा प्यार होता है, शादी के बाद कैसा प्यार होता है। भाई आपने हमेशा सुना होगा कि शादी के बाद जो पति होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि चेंजिंग कितनी होती है, क्या होती है, लेकिन प्यार तो आई थिंक वही रहता है। तो देखना ना भूलें और अपने वीकेंड को शानदार इन सभी शोज के साथ ज़रूर बनाइए, क्योंकि वीकेंड शानदार मतलब पूरा पूरा वीक शानदार। एक दिन जो आप बिताते हो ना सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे शाम से ही हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि हमें संडे को क्या करना है। लेकिन मैं अपनी अगर आपको पर्सनल बताऊं तो मुझे संडे को कहीं जाना, कुछ करना, कुछ भी पसंद नहीं होता है। संडे को सिर्फ एक चीज़ पसंद होती है,
3: मूवी।
4: हाँ, और सुबह लेट से उठ।
3: मुझे बताया है इसने कि मैं 12 बजे से मूवी देखना बैठती हूँ, तो ये शाम के 7-8 बजे तक केवल मूवी देखती हैं, और साथ में इनको भर भर के थाली मिलती रहती है वहाँ समय समय पर इनकी माता जी। मतलब संडे को घर में रहने के बावजूद ये खाना नहीं बनाती हैं, कोई काम नहीं करती हैं। इंसान उस दिन काम करे, बड़ी हो। अब तुम कहोगी कि बात शुरू हो गया इनका ज्ञान बांटना।
4: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
3: ठीक है, तो आप
4: वो क्या है ना, वीक के मतलब बाकी दिन जो है।
3: अच्छा, तो बाकी दिन तो तुम कौन सा खाना बनाती हो?
4: नहीं, मैं करती हूँ ऐसा।
3: दिन में खाना कौन सा बनाती हो?
4: नहीं, दिन में
3: बना के आती हूँ।
4: बना के आती,
3: ठीक है। लेकिन संडे को लगता है ना कि हाँ इंसान थोड़ा सा
4: ऐसा नहीं है
3: घर को करे। हाँ, बुरा लगेगा क्योंकि काम नहीं करते।
4: नहीं,
3: तो बुरा
4: नहीं,
3: लगेगा।
4: ऐसा नहीं है,
3: नहीं, हम समझ रहे हैं।
4: जब मेरा मूड होता है तो मैं भी करती हूँ।
3: तो ये मूड के हिसाब से काम करती हूँ।
4: मम्मी मुझे कहती है कि अरे बेटा एक दिन तो संडे मिला है तो तुम रेस्ट करो।
3: काश ऐसी मदर सबको दे, है ना। तो मतलब मुझे तो लगता है, मुझे तो ये सुनने को मिलता है, एक संडे मिलता है उसमें भी तुमने ये सफाई नहीं करी, ये नहीं किया, वार्डरोब नहीं खोला, टाइल्स गंदे पड़े हैं, किचन गंदा पड़ा है, मुझे तो ये सुनने को मिलता है उल्टा। अब उसमें वो घर की सफाई करूं, खुद की सफाई करूं, संडे मिलता है
4: ये
3: भी होता है। मैं क्या कहते हैं, मूवीज देखूं। मतलब मूवीज तो मेरा काफी टाइम से मैंने नहीं देखी है मूवीज, ये जानू तो।
4: कोई बात नहीं, अब आप देखिएगा और साथ में देखिएगा।
3: तुम्हारे साथ में ना?
4: हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे साथ में
3: चले।
4: हाँ,
3: एक सॉन्ग सुना दे।
4: बिल्कुल।
3: तो अभी मेरे अभी जहन में एक गाना आया था बहुत प्यारा सा, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं छवि। तो ये गाना मेरे जहन में आया था, और सभी लिसनर्स भी को पता है कि
4: बहुत प्यारा।
3: कल सब लोगों ने बोला था कि मैम, हमारे साथ कल किरण मैम भी थी, और सभी काफी लिसनर्स ने बोला कि मैम की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली मैं बहुत पुराने सॉन्ग्स को जो मस्ती वाले होते हैं वो प्ले करती हूँ, तो अच्छा लगा। और अनोखी लिख कह रही है कि मैम देख रही, मैम बहुत अच्छा सीरियल है, किसी कैसी तेरी दिल लगी, ये देख रही हैं।
4: अनोखी जी, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सॉन्ग सुनते हैं जो कि बहुत प्यारा है, जो कि मैम ने अभी लाइन बोली थी वो मैं थोड़ी सी भूल गई हूँ, क्या थी मैम वो?
3: तुझे दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूं चाबी
4: चाबी हाँ
3: ठीक है तो
4: चलिए दिल में बंद करते हैं और चाबी दरिया में फेंकते हैं और फिर इस सॉन्ग के उस पार आते हैं।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
6: RJ अंशिका।
5: तो फटाफट अंशिका शुरू करते हैं आज का लव राशि फल, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक वर्ड दे दें जो कि हमारे चैट बॉक्स में और हमारा जो इन आपका गेम है वो हम शुरू कर देते हैं। ठीक है,
6: तो आज चलिए आपको पहला वर्ड देते हैं, क्योंकि आज हम प्यार की जब बात करते हैं ना तो मन में आता है वादा। तो आज मैं पहला जो आपको शब्द दे रही हूँ वो है व। आपका पहला शब्द है व। आपको व से सॉन्ग लिखने हैं और व से मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं, तो फटाफट लिखिए क्योंकि प्यार जो होता है ना
5: मतलब व देना है।
6: यस मैम।
5: ओके, व। तो भाई पहला वर्ड है व, और व से आप लोग फटाफट गाने लिखें, क्योंकि ना बहुत सारे गाने व से हैं, मतलब वादा से हैं या हाँ। फिर मतलब लेकिन ना कोई भी दुख भरे गाने मत
6: नहीं, नहीं दुख भरे नहीं,
5: सैटरडे अच्छे खुशी वाले। हाँ, सैटरडे है और फन मस्ती वाला दिन होता है, उस दिन प्लीज प्लीज प्लीज आप लोग रोनू धोनू वाले नहीं, कुछ प्यार मोहब्बत वाले।
6: अच्छा सा मूड है।
5: अच्छा सा मूड है और मूड को और अच्छे से ही हम हाँ। आगे ले करके जाते हैं। जी, तो चले मेष राशि वालों के लिए, मैंने इसीलिए बोल दिया
6: जी,
5: था
6: जी, जी,
5: कि चले मेष राशि वालों के लिए आज का जो वो है।
6: जी मैम। तो देखिए, अभी मैम ने बोला था ना कि अगर आप लेट करेंगे तो आपके सॉन्ग जो है वो टाइम निकल जाएगा, तो उसपे मैं एक लाइन बोलती हूँ कि सॉन्ग भेजिएगा फटाफट, वरना आपका टाइम निकल जाएगा सट सट सट
5: नहीं okay? वरना आपका टाइम निकल जाएगा झटाझट।
6: वाह,
5: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं
6: सर।
5: हाँ, मेष राशि वालों के लिए लव आज का राशिफल क्या बताने वाला है, थोड़ा सा करो इंतजार, क्योंकि इंतजार में है मजा। तो आज आपकी लव लाइफ में रोमांस की होने वाली है बहार, जो कि है बेशुमार। तो प्यार में, रिश्तों में प्यार, अपनापन और खुशियां बढ़ेंगी, इतनी बढ़ेंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आज पार्टनर के साथ आज यादगार और रोमांटिक पल बिताने की पूरी पूरी कोशिश करेगा आपका समय आज।
6: वाह,
5: ठीक है,
6: ये तो बहुत ही अच्छा।
5: तो मेष राशि वालों, हो जाइए आपकी आज बल्ले बल्ले, आप खुश हो जाएं। नेक्स्ट राशि हमारी आती है वृष राशि वालों के लिए है कि आज का दिन रिश्तों, मिथुन राशि वालों के लिए है कि विवाह योग्य लोगों को मनचाहा जीवन साथी मिलने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में किए गए प्रयास सफल होंगे, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, आज प्यार के मामले में किस्मत आपका साथ देगी, आप साथी के लिए उपहार भी लेकर आ सकते हैं।
6: वाह,
5: हम तो जा सकते हैं।
6: बिल्कुल जा सकते हैं,
5: ठीक है, मतलब हम तो लेके जा सकते हैं।
6: बिल्कुल,
5: पाने की उम्मीद पता नहीं है कि नहीं है।
6: नहीं, नहीं, पा भी सकते हैं, मतलब वो होता है ना गिव एंड टेक, गिव एंड टेक थ्योरी, तो वो चल सकते
5: हैं। एंड फोर्थ राशि हमारी आती है कर्क राशि वालों के लिए है आज का दिन की आज धन लाभ के साथ साथ रिश्तों में भी मजबूती आएगी, पार्टनर के साथ विश्वास और भावात्मक जुड़ाव पहले से कहीं अधिक गहरा होगा, इसके अलावा पुरानी बातों को लेकर चल रही गलतफहमियां भी दूर होती आपको नजर आएंगी। कुंभ नहीं है,
6: कुंभ नहीं है, वो लास्ट है। यस मैम, कर,
5: ठीक है। तो अब हम लोग देखना चाहेंगे कि हमारे व से किसने किसने लिखा है। तो सबलू जी ने सबसे पहला लिखा है वादा ना तोड़ वादा ना तोड़, और आशु जी ने भी यही गाना लिखा है वादा ना तोड़। तो सबलू जी का गाना ले लेते हैं, ठीक है
6: जी। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं सबलू जी के सॉन्ग के साथ, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है वादा ना तोड़। बिल्कुल प्यार में कभी वादा नहीं तोड़ना चाहिए,
5: और जो तोड़ देते हैं उन्हें तोड़ देना चाहिए।
6: जो तोड़ देते हैं फिर उन्हें ऐसा तोड़ो कि फिर वो जुड़ ही ना सके।
5: तो उसे ईश्वर तोड़ते हैं, इंसानों में बस की बात थोड़ी नहीं होती, उसे ईश्वर तोड़ते हैं फिर।
6: बिल्कुल मैम,
5: ठीक है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, और चैट बॉक्स में हम आपको एक वर्ड और देते हुए जाएंगे ताकि दो गाने आपके लिए, गाने ज्यादा बातें कम। तो आइए चैट बॉक्स में आपकी होनी चाहिए नजरें।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
6: आरजे अंशिका।
5: तो चलिए फटाफट बाकी चार राशियों के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद बचेंगी केवल चार राशियां। तो जल्दी जल्दी से, तब तक के लिए मैं आपको वर्ड देती हूँ आपके चैट बॉक्स में। वर्ड इज स, ठीक है, स वर्ड।
6: तो चलिए अब आपको बताते हैं हम राशि के बारे में। सबसे पहले आते हैं सिंह राशि वालों की तरफ। तो सिंह राशि वालों के लिए आज का राशिफल है कि आपका दिन जो है वो बहुत ही बेहतर बीतने वाला है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि अगर आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा तो वो आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। और सोच समझकर अपने पार्टनर से बात करें, उसकी बात सुने और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और आपसी सामंजस्य बिठाएं अपने रिश्ते में। ये था सिंह राशि वालों के लिए। अब चलते हैं कन्या राशि वालों की तरफ। भाई कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, और वो इसलिए है क्योंकि कन्या राशि में आज के दिन आप अगर जैसे इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी के आने का, तो आज वो आ सकता है, आपको मिल सकता है, और उससे आपको अच्छी सी गिफ्ट भी मिलने वाली है, ऐसा लिखा हुआ है कन्या राशि वालों के लिए। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि आज का दिन उनके लिए लकी भी होने वाला है, तो फटाफट से उसे ढूंढें जिसे आप ढूंढना चाहते हैं, और अगर ढूंढेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे, और मुझे लगता है मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि जब आप उनसे मिलें, उनसे बातें करें, तो उस समय आपको थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट में चीज़ें खराब हो जाती है। इसलिए मिलें, बात करें, समझें और फिर ही आगे कोई फैसला लें, लेकिन सोच समझ कर।
5: एग्जैक्टली। नेक्स्ट राशि हमारी आती है कन्या राशि वालों के लिए
6: जी, तुला राशि वालों।
5: ओके, तुला,
6: यही होता है तुला राशि वालों के
5: इश्क होता है,
6: यही होता है
5: जो मंजूर है खुदा होता है।
6: बिल्कुल,
5: चलें जल्दी करें क्योंकि गाना बाद में गाएंगे, टाइम हमारा जा रहा है।
6: तो तुला राशि वालों के लिए आज का राशिफल है कि उन्हें आज के दिन उनके रिश्ते में रोमांस बना रहेगा, प्यार बनी रहेगी, और साथ ही साथ में वो कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं और थोड़ा सा मी टाइम भी बिता सकते हैं।
5: ओके।
6: दोनों एक साथ
5: जी। तो अंशिका, मैं सोच रहा हूँ एक राशि और है आपकी जो है वृश्चिक राशि।
6: जी मैम,
5: आप जल्दी से बताएं एंड बाकी चार राशियों को भी हम बताने के बाद में, अभी उसके बाद जल्दी जल्दी से हम लोग गेम को कंटिन्यू करेंगे। एंड जिनके भी सॉन्ग्स रह गए ना, फटाफट भेजें, क्योंकि अब हम केवल केवल एक पैराग्राफ सॉन्ग सुना करके आपको नेक्स्ट को भी मौका देंगे।
6: बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का राशिफल जो है वो थोड़ा सा ये है कि आपको अपने रिश्ते में मजबूती लानी है। बहुत समय से आपके रिश्ते में कुछ गलतफहमियां चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आपको उन सभी को सॉर्टेड करना है और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाना है, और अपने रिश्ते की जो हीलिंग पावर है उसे मिलकर आप दोनों ही सही कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें और इस रिश्ते को बिखरने ना दें।
5: ओके,
6: ध्यान रखें
5: जी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो धनु राशि वालों के लिए आज का बहुत ही अच्छा वाला लव राशिफल है। धनु राशि वालों के लिए सभी का साथ मिलने वाला है आज आपको। एंड आज आप अपने प्रिय के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। साथ बिताया गया समय रिश्ते को और मजबूत बनाता है। हर समय दिल की बातों को खुलकर कहने का मौका मिला है आज आपको।
6: अरे
5: मकर राशि वालों के लिए कि आज आप अपने दिल की बात बिना किसी झिझक के व्यक्त कर पाएंगे। आपके सितारे बता रहे हैं कि परिणाम पक्ष में परिणाम पक्ष में आ सकता है। आपकी ईमानदारी पार्टनर का दिल जीत लेगी। एंड कुंभ राशि वालों के लिए आ गया कुंभ, वेरी गुड। प्रेम जीवन में मिलने वाले नए अवसरों को समझदारी से अपनाएं। परिवार से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के लिए यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
6: वाह, जबरदस्त
5: जी, थैंक यू।
6: तो राशि भी तो फिर
5: किसकी है। मीन राशि वालों के लिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा क्योंकि विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आने के पता नहीं क्यों प्रबल योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कोई अपना आपके जीवन में प्रेम के रंग भर सकता है।
6: वाह,
5: हो गया। अब हम लोग चलेंगे सीधे सॉन्ग्स की ओर, जो कि अभी सॉन्ग्स अभी भेजा है मुझे धर्मेश जी ने, तो आई थिंक हम जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं अंशिका
6: जी मैम,
5: और उसके बाद में हम चैट बॉक्स में आएंगे एंड जल्दी से आपको देंगे नेक्स्ट वर्ड।

कमल नयन जी आपने क्या लिखा है, नाना करते हाय में मर गई। हाय राम, क्या लिख दिया आपने, लेकिन आपके फीलिंग्स मैंने समझ लिया है तो आपका गाना हम जला दे रहे हैं। बट ये नहीं था, नाना करते हाय में प्यार कर गई और मर गई नहीं था उसमें, क्योंकि मरने वाला सीन नहीं था उसमें कुछ भी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड हम आपको देते हैं चैट बॉक्स में, वो है द, ठीक है, द वर्ड।

यस एग्जैक्टली आपके गेम शो को हम करते हैं यहाँ पर एंड और आपकी नेक्स्ट आरजे आपको पता ही है कि कॉलेजन गोंडा की आज होने वाला है लाइव, तो कॉलेजन गोंडा के लिए हमें अब अंशिका को हमें बुलाऊंगी और कल है संडे, सुपर से सुपर वाला संडे, तो हम मिलेंगे आपसे मंडे, हम दोनों आरजेस यानी अभी तो आपकी आरजे अंशिका आएंगी साथ में और आपके साथ करने वाली है मस्ती क्योंकि आज है लाइव शो। तो हमें दे इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

राखी से डरती हूँ, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग अभी अभी हमारे बीच में है। और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ में भाई हो गया है शुरू वो शो जिसमें कि हम करते हैं कॉल पे बात, आप बताते हैं अपने सॉन्ग्स को और हम उस सॉन्ग को प्ले करते हैं। सो कैसे हैं आप सभी, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है कॉलर ट्यून गोंडा, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई आज भी हम सिलसिला शुरू करेंगे सॉन्ग्स का, और आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सॉन्ग्स को हम सुनाएंगे भी। तो चलिए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारी पहली फरमाइश क्या है। तो आज है आपका भाई बहुत ही प्यारा सा शो जो कि आज लाइव भी होता है, लाइव भी हम कॉलर्स को लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले सॉन्ग की तरफ, जो कि पहला सॉन्ग है समरीन जी का, और समरीन जी को सुनना है गाना जो तू मेरा हमदर्द है। तो आइए चलिए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग बस यू गए और यू आए। आप सुनिए और इन्जॉय करिए, स्टे ट्यून्ड।

कि है सावन का महीना बादल छाए, जो कि सॉन्ग की डिमांड की है रेनू जी ने। तो आइए चलते हैं इस प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉलेज।

हमारे पास कॉल आ गई हमारे एक बहुत ही अच्छे कॉलर की, तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो जी सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी दीपांशी जी, कौन सा सॉन्ग सुनेंगी? थैंक यू सो मच दीपांशी जी। तो भाई बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग दीपांशी जी ने दिया है, तुझे ना देखूं तो चैन, और डेडिकेट भी किया है तो मुझे। थैंक यू सो मच दीपांशी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो लिसनर्स, ये थी हमारे साथ दीपांशी जी, जिन्होंने कि अभी बताया कि भाई बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, तो जरूर हम दीपांशी जी के सॉन्ग को सुनेंगे। तो चलिए फिलहाल एंजॉय करते हैं रेनू जी के सॉन्ग को। बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोल्ड।

जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, बेहद ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि डिमांड की है अनु जी ने। तो आइए चलते हैं अनु जी के सॉन्ग की तरफ, और अनु जी के सॉन्ग के बाद हम सुनेंगे देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को, और उसके बाद भी हम सुनेंगे इरशाद जी के सॉन्ग को। तो बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

अभी अभी आपने सुना बेहद ही ब्यूटीफुल सॉन्ग इस शाने करम का क्या कहना, जो कि इरशाद जी ने इसकी फरमाइश की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली फरमाइश की तरफ, जो कि है निशा जी की, और निशा जी को सुनना है सॉन्ग पहली दफ़ा यूं। तो आइए चलिए सुनते हैं सॉन्ग को, और इसके बाद में हम सुनेंगे कमल नयन जी के सॉन्ग को, और कमल नयन जी के सॉन्ग के बाद बारी होगी दीपांशी जी के सॉन्ग की। सुनिए इन सॉन्ग्स को और बने रहिए अपने फेवरेट शो कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

दोस्ती दोस्ती रहे सलामत दोस्ती, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इस सॉन्ग को फरमाइश की है कमल नयन जी ने, और उन्होंने डेडिकेट किया है धर्मेश जी और अनुज ठाकुर जी को। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। और अगर आप भी अपने फ्रेंड्स को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी सॉन्ग की फरमाइश करना चाहते हैं, तो आपको कॉल करना है 6393316429 पे। कॉल करिए और अपने सॉन्ग को फटाफट से हमें भेजिए, हम जरूर से प्ले करेंगे। बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

0: बिल्कुल कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी दीपांशी जी ने। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, जो कि है तेरी आंखें झुकी झुकी। और ये हमारे एक नहीं बल्कि दो दो लिसनर की फरमाइश है। पहले लिसनर हैं सुनील जी और दूसरे हैं मुमताज जी, जो कि दोनों को ही सॉन्ग सुनना था तेरी आंखें झुकी झुकी। तो आइए चलते हैं सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉलर ट्यून गुड़ा में, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून।
1: अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द हैप्पी कपल, उनके दोस्त इंद्रजीत सक्सेना।

रब जो चाहे वही तो होना है, बेहद ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि ये डिमांड की है राकेश जी ने। और राकेश जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग। तो आइए सीधे चलते हैं, सुनते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को, आदमी खिलौना।

हम खुश हुए और आपके आने से घर में कितनी रौनक है, बेहद ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि था बबीता जी का। तो आइए अब चलते हैं क्योंकि बाय बोलने का वक्त आ गया है। तो आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ पानी पीते रहिए। अब आपसे मिलूंगी मंडे को आपके अपने वाले शो सुन सहेली में, तब तक के लिए बाय बाय।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-89-14416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now you're listening ज्ञानस्तर 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधूली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्तर 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो हर रोज एक ऐसे मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं जिनके बारे में हमको जानने को मिलता है। यूं तो वे एक पर्सनैलिटी होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई ऐसे पहलू होते हैं जो शायद हमको नहीं पता होता है, लेकिन इस टॉक शो के जरिए हम जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो शायद वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे साथ शेयर करते हैं।

0: आपके बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे ही करते हैं कि हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, अपने माता पिता के बारे में और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में।
1: अदनान जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियोज़ में इन्वाइट किया, और कुछ अपने बारे में और कुछ उस प्रोग्राम के बारे में जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ उस पर बातचीत करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, तो सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरे विषय में बात करने की बात है, तो मैं बताऊँ कि मेरा जन्म लखनऊ जनपद में हुआ था। मेरे पिताजी वहाँ पर सेवा में थे, वो भी शिक्षक थे, और मेरा जन्म लखनऊ के ही एक गांव में हुआ था। और बचपन से मैं, चूँकि मैं अकेला पुत्र था अपने परिवार में, तो काफ़ी एक आप कह सकते हैं लोनली चाइल्ड मैं था, और अकेले ही मैं रहता था ज़्यादातर अपने घर में, और गुमसुम रहता था बचपन में। तो ऐसे में मेरा साथी बना रेडियो मेरे घर में।
0: क्या बात है,
1: ये एक संयोग है और ये सुखद संयोग है कि आज मैं आपके साथ रेडियो पर हूँ, और रेडियो बचपन से ही मेरा साथी रहा है। एक अकेले बच्चे के लिए जिसकी अकेले परवरिश हो रही हो घर में, तो रेडियो मेरा एक बहुत अच्छा साथी बना था, और बचपन से ही रेडियो मेरा प्रिय रहा है। और मैं अपना समय बहुत मैंने रेडियो पर गुजारा, और रेडियो ने ना सिर्फ मेरी जानकारी में इजाफा किया बल्कि मेरी पर्सनालिटी को बढ़ाने में और मेरी सोच को विस्तृत करने में रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है। रेडियो से ही मुझे पता चला कि हमारे आसपास जो समस्याएं हैं, जो लोग हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और कैसे लोग उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, और मैं कैसे उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ। तो देश की समस्याओं के लिए, अपने समाज की समस्याओं के लिए और अपने आसपास की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में रेडियो का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही सरकारी स्कूल में हुई थी, उसके बाद सौभाग्य से मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया रायबरेली में। वहाँ पर मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की, और उसके पश्चात फिर मैंने, चूँकि मेरा रुझान बचपन से ही डॉक्टर बनने का था और लोगों के स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने के लिए मेरी जिज्ञासा थी, तो मैंने अपनी मेडिकल की तैयारी शुरू की डॉक्टर बनने के लिए, और मेरा चयन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए हुआ BAMS में, और मैंने झांसी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से अपना BAMS पूर्ण किया। तत्पश्चात फिर मैंने कई तरह की सर्विसेज की जो कि अपने हमारे जो पारंपरिक ज्ञान के पद्धति है उनसे जुड़े हुए सर्विसेज हैं, उनसे वहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद 2018 में मैं जनपद गोंडा में आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा।
0: ओके, ये तो आपने यहाँ तक का बताया सफ़र, अब अपने माता पिताजी के बारे में बताइए।
1: जी बिल्कुल अदनान जी, मेरे पिताजी जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक शिक्षक थे, और वहाँ से और मेरी माताजी गृहिणी थी, साधारण महिला, और मेरी परवरिश ग्रामीण परिवेश में की, और मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा यही शिक्षा दी कि अपने जो आसपास के लोग हैं जिनके लिए आप कुछ कर सकते हो, चाहे किसी भी माध्यम से कर सकते हो, तो उनके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो मेरे व्यक्तित्व के विकास में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है।
0: ओके, तो आपने कहा कि पिताजी का योगदान आपके व्यक्तित्व के विकास में है, कहीं ना कहीं उनका जो कहना था वो आप आज भी उस पर अमल कर रहे हैं और वो आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट होता है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने जिक्र किया था कि आप सिंगल चाइल्ड थे अपने माता पिता के
1: जी,
0: और जाहिर सी बात है कि एक बहन की कमी तो हमेशा कम से कम खली ही होगी
1: जी,
0: कि आपकी भी कोई बहन हो, राखी पे आपको राखी बांधे और त्योहारों में घर को सजाए, आप भी किसी को गिफ्ट दे पाए, तोहफे, किसी से लड़ पाए, किसी के साथ खेल पाए। लेकिन आपने बताया कि रेडियो ने साथ दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक एक उम्र ऐसी होती है जब बच्चे शायद खेलना ही प्रेफर करते हैं, तो उस समय

0: जी आप 6, 7 साल, 8 साल की उम्र में उस वक्त क्या आपके कैसे दोस्त आपने बनाए थे, कहाँ खेलते थे आप और किन किन खेलों में आपकी रुचि थी?
1: जी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि मेरे कहने का अर्थ ये था कि मेरी एक बड़ी बहन भी है।
0: ओके।
1: हाँ, और मैं अकेला पुत्र था, मेरी एक बड़ी बहन है और मेरी और उनकी उम्र में लगभग 8 से 10 साल का अंतर था।
0: तब भी काफ़ी हो गया।
1: जी हाँ। तो इसलिए मैं लोनली फील करता था कि चूंकि मेरी हम उम्र जो मेरे भाई बहन नहीं थे और मेरी दोस्ती भी जो है ज़्यादा बच्चों से बचपन में नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मेरे आसपास के बच्चे मुझसे काफ़ी उम्र में बड़े थे, तो इसलिए जो है रेडियो मेरा सहारा बना था जैसे मैंने आपसे कहा। और फिर धीरे धीरे जब मैं नवोदय विद्यालय में गया तो वहाँ पर एकदम अलग ही परिवेश था। वहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हुए थे, कुछ शहरों से आए हुए थे, कुछ ग्रामीण परिवेश के थे, कुछ अत्यंत गरीब थे, कुछ ठीक ठाक फैमिली से थे। तो अलग अलग सामाजिक परिवेश के बच्चों से वहाँ मिलने का मुझे अवसर मिला और उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। तो वहाँ पर मेरी दोस्तियाँ कई सारे बच्चों से हुई जिन्होंने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला और एक तरह से मेरे विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बचपन में जैसे जब मैं विद्यालय में था, आप जानते होंगे नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल स्कूल है
0: जी,
1: वहाँ पर बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं, तो 24 घंटे मुझे वहाँ अपने बच्चों के साथ ही रहने का अवसर मिलता था। जैसे बचपन में तो मुझे बिल्कुल ही अलग थलग था मैं सबसे, अपने आसपास के बच्चों से भी, लेकिन वहाँ पर एक 24 घंटे मुझे बच्चों के ही बीच में रहना था, तो ये एकदम से चेंज हुआ मेरी लाइफ में। और इसने नवोदय विद्यालय में जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने बहुत बड़ी छाप छोड़ी है मेरी ज़िंदगी में। वहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे, फिर उनके परिवारों की परिस्थितियाँ, 24 घंटे चूंकि साथ में रहना होता था इसलिए वो अपने परिवार की कहानियाँ भी बताते थे, अपनी समस्याओं के बारे में बताते थे। और फिर उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो बहुत गरीब थे और मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा थी कि मैं एक ठीक ठाक मध्यम वर्ग परिवार से था, तो जो कुछ भी मुझसे मदद हो सकती थी उनकी, चाहे किताबों के संबंध में हो या पढ़ाई के संबंध में हो, तो मैं उनकी मदद किया करता था और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत मुझे खुशी मिलती थी। और उस समय की जो दोस्तियाँ मेरी बनी हैं वो अभी भी कायम है, उनसे अभी भी मेरी बातचीत होती है और जब भी हम लोग बातचीत करते हैं अपने पहले की ज़िंदगी के बारे में, अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है और एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है, एक नई प्रेरणा मुझे मिलती है आगे काम करने के लिए।
0: जी, तो आपने कहा कि भाई जो नवोदय विद्यालय में आपका साथ था उसकी छाप आज भी है और वो दोस्ती इतनी गाढ़ी थी, कहीं ना कहीं वो आज भी बरकरार है, आज भी आप लोग एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं, मिलते जुलते हैं, पूछते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। अब चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे थोड़ा सा सेपरेट रहते हैं या जो थोड़ा सा चीज़ों में अपनी सोच में खोए हुए होते हैं वो या तो बहुत अच्छे पोएट होते हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं, तो इस मामले में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने भी लिखना कभी शुरू किया था, कुछ कविताएं लिखते थे या थॉट्स लिखते थे या गज़ल लिखते थे, कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसी आदत? क्योंकि अगर आप खेल ज़्यादा नहीं रहे तो कोई ना कोई क्रिएटिव दूसरा काम ज़रूर कर रहे होंगे आप, उसके बारे में बताएं।
1: जी हाँ अदनान जी, बिल्कुल आपने सही बिंदु पकड़ा है कि जो बच्चे अलग रहते हैं वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। तो जब मैं नवोदय विद्यालय में था तो वहाँ पर स्पोर्ट्स में हालांकि भाग लिया करता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, मेरी ज़्यादा जो रुचि थी वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में थी, तो जैसे कि डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना और जो प्रदर्शनी वगैरह है होती हैं उसमें भाग। तो जैसे मेरे विद्यालय में एक छोटी सी मैगज़ीन भी निकला करती थी तो उसमें छोटी छोटी जो है मुक्तक टाइप के वो भी मैं लिखा करता था और छोटी छोटी कहानियाँ भी मैंने लिखी थी बचपन में ही। और हमारे यहाँ रीजनल लेवल पर और क्लस्टर लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिशन्स आयोजित होते हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जो नवोदय विद्यालय के छात्र हैं वो अपने प्रदर्शनियाँ ला करके वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। तो मुझे भी ऐसे अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है और अनेक कॉम्पटिशन्स में और डिबेट कॉम्पटिशन्स में मुझे प्रथम द्वितीय पुरस्कार से मुझे नवाजा गया है, मुझे मिला है। तो इन चीज़ों को मैं अब बहुत मिस करता हूँ, वो चीज़ें जो नवोदय विद्यालय दी हैं। अब आपसे बात करते हुए तो मुझे लग रहा है कि मैं उसी समय में खो गया हूँ।
0: मुझे ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन करने वाला तो महज एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है कि आप ये बताएं, लेकिन आप जो है ना उस दौर में चले जाते हैं, उस वक्त में चले जाते हैं, उसको वापस फिर से जीने लग जाते हैं जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कोई आपका उस वक्त आइडियल भी रहा होगा, अब वो चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र का जोड़ ले या कोई साइंटिस्ट रहा होगा या कोई एक्टर रहा होगा या कोई लिरिसिस्ट या कोई शायर या कोई कवि, कौन था?
1: नवोदय विद्यालय में मेरे जितने शिक्षक थे वो सब मेरे आइडियल थे, क्योंकि शिक्षा उनके लिए केवल एक प्रोफेशन नहीं है, वो 24 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं और ऐसा कोई भी अवसर वो छोड़ते नहीं हैं कि जबकि वो अपने बच्चों को कुछ नया ना सिखा सकें या उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो उसको बांट ना सकें। तो उस चीज़ को मैं आज भी बहुत याद करता हूँ कि जैसे चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, आप खाना खाने जा रहे हैं या खाना खा के वापस आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शाम को टहल रहे हैं, शिक्षक से आप कभी भी अपनी बात कह सकते थे और कभी भी कोई भी जिज्ञासा हो तो उनके सामने रख सकते थे। तो मैं सबसे ज़्यादा अपने शिक्षकों को आइडियल मानता हूँ, जो नवोदय विद्यालय में हमारे शिक्षक थे, और उन्हीं के रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं तो ना केवल आप उसको केवल व्यावसायिक रूप में ना लें कि ये हमारी अर्निंग का सोर्स है और इसी के लिए हमें काम करना है, बल्कि आप व्यक्तिगत रूप से उसमें इन्वॉल्व होकर जब आप काम करते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो किसी भी क्षेत्र में आप हों, तो उसका रिजल्ट अलग ही आता है और उसका मज़ा भी अलग आता है। तो शिक्षकों को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जो भी मेरे शिक्षक नवोदय विद्यालय में थे, जिनसे भी उस दौरान 5-6 वर्षों में मेरा संपर्क रहा है, तो मैं आज भी याद करता हूँ और वो मेरे आइडियल हैं।
0: कोई एक शिक्षक की कोई एक ऐसी बात साझा करिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको उन शिक्षक की ये चीज़, ये आदत बड़ी अच्छी लगती थी और आज कहीं ना कहीं उसको आपने अपनी लाइफ में भी उतार लिया है, कोई ऐसी बात अगर हो तो।
1: जी हाँ, मेरे साइंस के शिक्षक थे मिस्टर अनुराग अवस्थी। तो चूंकि मैं नवोदय विद्यालय में गया था और गुमसुम रहता था, ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था, अपनी समस्याएँ भी नहीं कह पाता था, तो मेरे उनके सब्जेक्ट में, विज्ञान के सब्जेक्ट में शुरुआत में बहुत कम मार्क्स आते थे, वो जब भी टेस्ट लेते थे तो मैं सबसे पीछे रहता था। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे पूछा कि क्या समस्या है। तो चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से गया था, हिंदी मीडियम से गया था, वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा होती थी, तो मुझे हालांकि अपने सब्जेक्ट की नॉलेज थी लेकिन कि माध्यम बदल गया था तो मुझे परेशानी होती थी उसमें प्रश्नों के उत्तर देने में, प्रश्नों को समझने में, उसका उत्तर देने में। तो उन्होंने कहा ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो उन्होंने जो साइंस का सब्जेक्ट था उसके जो पारिभाषिक शब्द थे उसको उन्होंने मेरे लिए पूरा हिंदी से, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया जो भी पारिभाषिक शब्द थे, और उन्होंने मुझे लगभग 2-3 घंटे अपने पास बिठा करके और एक एक चीज़ मुझे समझाई कि इनको इस चीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और मुझे नोट डाउन करवाया हर एक चैप्टर का। तो वो चीज़ मेरे दिल को छू गई आज भी, कि इतना उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, हालांकि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, वो मुझे जानते नहीं थे, मैं नया गया था, लेकिन उन्होंने एक समस्या को समझा, एक स्टूडेंट के समझ लीजिए उन्होंने विकास का रास्ता खोल दिया वहीं से। अगर जी मैं वहां पर रुक जाता या उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होता तो एक ब्राइट स्टूडेंट आगे और ब्राइटर होने से रुक गया होता।
0: सही बात है और बहुत ही अहम बात आपने बताई कि एक टीचर जो होता है वो बच्चों के लिए आइडियल होता है, मॉडल होता है, और कहीं ना कहीं उसकी छाप बच्चों पे रहती है। और छोटी सी भी कोई चीज आपका फ्यूचर बना सकती है, छोटी सी भी टीचर की गलती आपका फ्यूचर डुबा सकती है, दोनों ही होता है। इसलिए कहते हैं कि सच में शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माता होता है, फ्यूचर होता है। अभी चूंकि वक्त हो चला है छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, लेकिन जाने से पहले जैसा कि अभी हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि हमारे साथ में डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम के हैं आयुष्मान भारत योजना के। चूंकि आयुष्मान भारत योजना एक बहुत बड़ी सेंट्रल की योजना है, उस पर हमें चर्चा करना है, लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
5: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी जो बातचीत हो रही है, आज हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी जी, जो कि आयुष्मान भारत योजना के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। तो एक बार फिर से हम आपका वेलकम करते हैं और सबसे पहले तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपका गोंडा आना कैसे हुआ।
6: जी अदनान जी, इस यहाँ गोंडा आने से पहले काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत एक ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली में
5: जी।
6: वहाँ पर मैं रिसर्च एसोसिएट के पद पर था और वहाँ मेरा कार्य था जो हमारी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति है उससे संबंधित जो ज्ञान है उसको मिस अप्रोप्रिएशन से रोकना, यानी कि जो लोग गलत पेटेंट ले लेते हैं हमारी नॉलेज के ऊपर, उस गलत पेटेंट को अपने जो डेटाबेस है हमारा पारंपरिक ज्ञान का, उसके माध्यम से उसको रोकना। जैसे कि आपको अगर याद होगा, सन 2000 के आसपास अमेरिका की एक कंपनी ने नीम और बासमती का पेटेंट ले लिया था और उस पेटेंट को हटाने के लिए, उस पर अपना दावा स्थापित करने के लिए भारत सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हमारा एक डेटाबेस होना चाहिए जिसमें हमारी जो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है उसकी सारी सूचनाएं एक डिजिटल माध्यम में अंकित हों, और अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे ज्ञान की पद्धति पर अपना दावा स्थापित करती है तो उसको हम रोक सकें, क्योंकि हमारी जो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है उस पर हमारा अधिकार है और उसका कहीं भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत। तो मैंने वहाँ पर लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया। उसके बाद फिर 2018 में जब हमें आयुष्मान भारत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने सोचा कि अब मैं बाहर रह करके बहुत मैंने कार्य कर लिया, अब अपने जनपद में अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो यही सोच करके मैंने आयुष्मान भारत योजना को ज्वाइन किया अपने जनपद गोंडा में, और इस तरह से 2018 में मेरा आगमन हुआ गोंडा में।
5: 2018 में आपने आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ अपनी ज्वाइनिंग ली
6: जी।
5: ठीक है, अभी चूंकि बार बार हम नाम ले रहे हैं आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, तो पहले तो हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताएं कि ये आयुष्मान भारत योजना है क्या।
6: जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि ये लोगों की जीवन अवधि को बढ़ाने का काम करती है। आयुष्मान का आशीर्वाद हमारे यहाँ परंपरागत रूप से बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग दिया करते हैं, आयुष्मान भव। तो उन्हीं के आशीर्वाद को मूर्त रूप देने के लिए हमारी सरकार ने इस योजना का प्रारंभ किया। जैसा कि आप यहाँ काफ़ी समय आपको हो गया है जनपद गोंडा में कार्य करते हुए, तो आप जानते ही होंगे कि हमारा जो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी अत्यंत गरीबी की परिस्थिति में जीवन यापन करते हैं। उनके लिए अपने दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी बहुत मुश्किल होता है, और अगर ऐसे परिवार में कोई व्यक्ति कभी बीमार हो जाता है तो समझ लीजिए उस परिवार के ऊपर एक तरह से मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ता है। सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा, तो इसके लिए कभी उस घर की स्त्रियों के गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, कभी भूमि गिरवी रखनी पड़ती है, कभी अन्य तरीकों से किसी से कर्ज लेना पड़ता है, किसी से पैसा लेना पड़ता है, दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं अगर किसी गरीब परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, और इस तरह की परिस्थितियां हमारे देश में बहुत दिनों से चली आ रही थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में भी ये चिंता थी, और इसी को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। आयुष्मान भारत योजना अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सहायता योजना है जो किसी भी सरकार के द्वारा संचालित होती है। इस योजना अंतर्गत जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको बिना कोई पैसा खर्च किए बिल्कुल निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है, जो सुविधा बड़े बड़े विकसित देशों में मिलती है लोगों को। कुछ उसी तरीके की सुविधा हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी को देने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ हुआ है, और लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होते हैं। तो इस संख्या को अगर हम देखें तो ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सहायता योजना है, और जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो उद्देश्य है उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। कदम क्या कहूँ कि ये समझ लीजिए बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि भारत में दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, तो अगर भारत स्वस्थ होगा तो दुनिया स्वस्थ होगी, भारत अगर विकसित होगा तो दुनिया विकसित होगी, और भारत अगर आगे बढ़ेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गंभीर बीमारियों की स्थिति में अगर वो चिकित्सालय में भर्ती होते हैं, उनका ऑपरेशन होता है या दवाएं उनको दी जाती हैं, तो उस कंडीशन में उनको एक भी पैसा अपनी तरफ से नहीं खर्च करना है, ना तो दवाइयों के लिए और ना ही भर्ती होने के लिए, ना कोई बेड चार्जेस हैं, ना शल्य क्रिया के लिए कोई पैसा देना है, किसी भी तरह का उनका अपनी जेब से कोई भी खर्च नहीं करना है, पूरा खर्च सरकार वहन करती है। तो ये संक्षेप में आयुष्मान भारत योजना है।
5: जी, आपने बताया कि ये स्वास्थ्य सहायता योजना है और अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, तो अभी इसके लाभार्थियों की आपने संख्या भी बताई, हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लाभार्थी कौन बन सकते हैं, यानी बेनिफिशरीज होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं।
6: जी हाँ अदनान जी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक भारत की बहुत बड़ी आबादी इसके अंतर्गत शामिल की गई है, तो हमारे जनपद गोंडा में लगभग 282,857 परिवार ऐसे हैं जिनको इस योजना में शामिल किया गया है। इसमें 2011 में जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना हुई थी उसके आधार पर लाभार्थियों का चयन हुआ है। इसके अतिरिक्त उसमें जो लोग छूट गए थे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की कि जो लोग उसमें छूट गए हैं, सन 2018 में ऐसे 5,176 अन्य परिवारों को इसमें शामिल किया गया, और उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं जिनके पास लाल राशन कार्ड है, वो सारे इस योजना के पात्र हैं। और इसके अतिरिक्त भवन एवं संनिर्माण कल्याण बोर्ड में पंजीकृत जो श्रमिक हैं वो सभी इस योजना के पात्र हैं। तो इस तरह से गोंडा जनपद की भी एक बहुत बड़ी आबादी इस योजना से आच्छादित हो जाती है।
5: ठीक है, ये आपने बताया कि किन लोगों के लिए ये योजना है। मान लीजिए इस योजना का कोई लाभार्थी है और इस योजना का वो लाभ लेना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या कोई कार्ड इशू होता है या कोई फॉर्म मिलता है, कैसे होता है?
6: जी हाँ अदनान जी, लाभार्थियों की पहचान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से प्रेषित किए थे। वो सारे पत्र लाभार्थियों को भेजे गए थे जो भी इस योजना में शामिल हैं, और उस पत्र के आधार पर लाभार्थी अपना एक कार्ड बनवाता है जिसको हम कहते हैं आयुष्मान कार्ड। अगर वो पत्र नहीं भी है लाभार्थी के पास तो भी अगर सूची में उसका नाम है तो राशन कार्ड और आधार कार्ड की सहायता से वो अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है। और सिर्फ यही एक कार्ड ले जा करके वो जो चिकित्सालय हैं जो इस योजना में जुड़े हुए हैं वहाँ पर वो ये कार्ड ले जा करके आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ उठा सकता है।
5: आपने लाभ की बात की, आपने कहा कार्ड दिखा के उसका लाभ उठा सकता है, लेकिन इसका कोई क्राइटेरिया होगा कि कितने रुपए तक का लाभ उठा सकता है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
6: जी अदनान जी, आयुष्मान भारत योजना में जो चिन्हित परिवार है उस परिवार के सभी सदस्यों को कुल मिला करके उस परिवार को पूरे वर्ष में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता दी जाती है। यानी कि उस परिवार में चाहे 2 सदस्य हों, 4 हों या 10 हों, और जो भी उनकी आयु हो, चाहे छोटा सा बच्चा हो, नवजात शिशु हो या वृद्ध हो, वो सारे इस योजना में आच्छादित हैं और कुल मिला करके एक साल में 5 लाख रुपए तक की अपनी चिकित्सा वो किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क करा सकते हैं इस आयुष्मान कार्ड की सहायता से।
5: हर साल 5 लाख रुपए तक का एक फैमिली के लिए?
6: जी हाँ।
5: ओके, आपने कहा सूचीबद्ध अस्पतालों में, इसका मतलब कुछ चुनिंदा अस्पताल में करा सकते हैं। गोंडा की अगर हम बात करें कहाँ हो सकता है?
6: जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, CHC कहते हैं, वो और उससे ऊपर ने भी अस्पताल हैं, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल, और इसके अतिरिक्त जो भी दूसरे भी जनपदों में जो अस्पताल हैं सरकारी और प्रदेशों में अस्पताल हैं वो सारे इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि हमारे एम्स हैं या SGPGI है या लखनऊ में लोहिया है, ये सारे जो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं इस योजना में सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नामचीन प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट चिकित्सालय हैं, वो भी इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं। जैसे कि हमारे जनपद में सतीश चंद्र पांडे मेमोरियल हॉस्पिटल है, RN पांडे मेमोरियल हॉस्पिटल है, गायत्री हॉस्पिटल है, आशा देव हॉस्पिटल है, इसके अतिरिक्त अवध हॉस्पिटल है और सनराइज हॉस्पिटल है। तो कुल ऐसे मिला करके 19 सरकारी और 16 प्राइवेट अस्पताल इस योजना के अंतर्गत, कुल 35 चिकित्सालय इस योजना के अंतर्गत हमारे जनपद में सूचीबद्ध हैं। तो हमारे जो लाभार्थी हैं न केवल हमारे जनपद में इन अस्पतालों में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं बल्कि दूसरे जनपदों में भी जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं और दूसरे प्रदेशों में भी, पूरे भारत देश में जितने भी सूचीबद्ध अस्पताल हैं वहाँ पर सिर्फ अपना आयुष्मान कार्ड दिखा करके अपना इलाज करवा सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
5: ओके, तो आपने बताया जितने भी सूचीबद्ध अस्पताल हैं वो चाहे गोंडा के 35 हों या फिर कहीं बाहर किसी दूसरे प्रदेश में भी, क्योंकि सेंट्रल की आपने पहले मेंशन किया था ये योजना है तो पूरे भारत में ये मान्य है, कहीं पर भी आप करा सकते हैं। 5 लाख रुपए तक एक फैमिली पे मिलता है। अभी मान लीजिए कि किसी को बड़ा ऑपरेशन कराना है और उसमें लगभग 5 लाख के ऊपर जा रहा है बिल, उस सिचुएशन में क्या होता है, क्या करना होता है? मान लीजिए उस क्राइटेरिया को पार कर रहा है, 5 लाख रुपए पूरे हो चुके हैं और कुछ रुपए ज़्यादा लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या रूल होता है गवर्नमेंट की तरफ से?
6: इस योजना में 5 लाख रुपए तक की ही राशि की सीमा है और 5 लाख से अगर अतिरिक्त रुपया लगता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य निधि के लिए लाभार्थी अप्लाई करता है, उसकी वहाँ से सहायता की जाती है। आयुष्मान भारत योजना में जो धनराशि खर्च करने की सीमा है वो 5 लाख रुपए है एक परिवार के लिए, एक वर्ष के लिए।
5: आपने कहा इसकी जो सीमा है वो तय है
6: जी,
5: मुख्यमंत्री आरोग्य निधि की आपने बात की
6: जी,
5: इसके लिए क्या आयुष्मान भारत योजना के जो लाभार्थी हैं वही एलिजिबल होते हैं या और भी लोग होते हैं?
6: नहीं, मुख्यमंत्री आरोग्य निधि के लिए जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से वो अप्लाई कर सकते हैं।
5: ओके, अभी चूंकि इतनी बड़ी योजना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में रन कर रही है, तो आपकी एक कमेटी होगी, कौन कौन है उस कमेटी में, उसके बारे में बताएं।
6: आयुष्मान भारत योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें तीन लोग हैं, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट DIU। इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर होता है, और दूसरा जिला सूचना अधिकारी, जो कि एक IT प्रोफेशनल होता है, और एक जिला शिकायत निवारण प्रबंधक। तो ये तीन लोगों से DIU बनती है, और ये DIU मिल करके आयुष्मान भारत योजना को पूरे जिले में संचालित करती है।
5: जिसमें आपका जो काम है, आपका जो पद है, वो कोऑर्डिनेटर है, यानी आप ऑल ओवर चीज़ें मैनेज करते हैं, देखते हैं।
6: जी,
5: एक कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होता है?
6: देखिए, एक कोऑर्डिनेटर की सबसे अच्छी विशेषता ये होनी चाहिए कि उसको जो योजना से जुड़े हुए लोग हैं, तो उससे लाभ पाने वाले लाभार्थी हैं, उस योजना को लाभार्थी तक पहुंचाने वाला जो चैनल है, उसमें विभिन्न स्तर पर जो लोग कार्यरत हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, और जो इस योजना को जो प्रदेश में और देश में जो इस योजना को देखते हैं, चालित करते हैं, उनके बीच में पुल बनाने का कार्य डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का होता है। किसी भी स्तर पर कोई समस्या आ रही है, किसी लाभार्थी को योजना के विषय में जानकारी देनी है, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, या उसको अपने जिले में किन किन अस्पतालों में सुविधा प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इसकी जानकारी नहीं है, या अन्य किसी भी तरह की समस्या है, योजना के संचालन में जो कुछ भी बाधाएं आती हैं, उनको दूर करने का कार्य डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का होता है।
5: क्या बात है, तो बहुत अहम आपका पद है और आप उस पद पर आसीन हैं, बखूबी उसको निभा भी रहे हैं, और ये शायद बहुत जिम्मेदारी का भी काम है। न जाने कितने ऐसे परिवार जिनको सच में बहुत सख्त ज़रूरत होती है, उनका कहीं ना कहीं बहुत भला होता है इस योजना के द्वारा। अभी चूंकि एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, तो अपने हम श्रोताओं से कहेंगे कि हमारी बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी जी से। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है, आपका अपना होस्ट एंड दोस्त RJ अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे बीच में मौजूद है आज के खास मेहमान डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी जी, जो की आयुष्मान भारत योजना डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। तो आपसे हम पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा 2018 से इस योजना में आप यहाँ जुड़े हुए हैं और 2018 से गोंडा में भी चल रही है, तो अगर हम खाली गोंडा की बात करें तो अब तक के लाभार्थियों पर लगभग या लमसम कह सकते हैं कितना रुपए खर्च हुआ है?
3: जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बताया है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी इलाज करवाना है लाभार्थी को, वो चाहे कम से कम लागत वाला हो या अधिक से अधिक लागत वाला हो, इसका पूरा खर्च सरकार वहन करती है। तो इसमें जैसे कि बहुत से अरे हमारे जो ऐसे इलाज हैं जिसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, जैसे कि कूल्हे का प्रत्यारोपण है या कंधे का प्रत्यारोपण है या कुहनी का प्रत्यारोपण है, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं आमतौर पर किसी भी निजी चिकित्सालय में इलाज कराने पर, तो वो सब भी इसमें बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। और इस तरह से हमारे जनपद में, मुझे बताते हुए आपको बहुत ही हर्ष हो रहा है अदनान जी, कि हमारे जनपद में लगभग 39,000 लाभार्थियों ने अब तक इस योजना का लाभ उठाया है, अपनी चिकित्सा निःशुल्क कराई है और उनके ऊपर सरकार ने लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राशि है और हमारा जनपद गोंडा आप सबके प्रयास से लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने में जो शीर्ष के जनपद हैं हमारे स्टेट में, हमारे प्रदेश में, उन शीर्ष के जनपदों में हमारा जनपद गोंडा शामिल है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। योजना को धीरे धीरे पूरे जनपद में जितने भी हमारे लाभार्थी हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी जानकारी के अभाव में निःशुल्क इलाज से वंचित ना रहे।
2: ठीक है, तो आपने बताया कि एक तो ये ऊँचे पायदान पर एक है गोंडा हमारा पूरे प्रदेश में, मतलब एक अच्छा अमाउंट खर्च कर चुका है, खर्च कर रहा है लगातार। आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो जाहिर सी बात है कुछ प्रोग्राम होते होंगे, तो अपने कैंपेन्स प्रोग्राम में बताइए कि अब तक के कौन कौन से कैंपेन्स प्रोग्राम में आपने इन्वॉल्व हुए और अभी इस वक्त इसको, इसके प्रचार प्रसार के लिए, इसका के लिए क्या कर रहे हैं आप?
3: अदनान जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनवाना आवश्यक है। तो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमारे जनपद में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदया और आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया के नेतृत्व में एक महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सहायकों और आरोग्य मित्रों की सहायता से कैंप लगा करके प्रत्येक लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जा रहा है। तो इस कैंपेन में अब तक हम लोग लगभग 4.25 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं और ये कैंपेन लगातार चल रहा है। इसमें और अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड कम से कम समय में दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें ये अपेक्षा है सभी जितने हमारे आपके लिसनर्स हैं, आपके श्रोतागणों से सभी से अनुरोध है कि अगर आपके आसपास कोई आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं या आप स्वयं आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं, तो इसकी सूचना आपको अपने ग्राम पंचायत से मिल सकती है, अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मिल सकती है, किसी भी आप सरकारी अस्पताल में जा कर के अपनी पात्रता की जांच करा सकते हैं कि आप आयुष्मान भारत योजना के पात्र हैं या नहीं हैं, आपका नाम सूची में है अथवा नहीं है, या आप अपने इष्ट मित्रों का भी पता कर सकते हैं। और आपके अपने ग्राम पंचायत में ही ग्राम पंचायत सहायकों की सहायता से आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। तो आपके सभी सम्मानित श्रोतागणों से यह अनुरोध है कि अपने आसपास के जितने भी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी ऐसे छूटे हुए हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो आपके एक प्रयास से उनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है और वो एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा बन सकते हैं। और ईश्वर न करे अगर उनके घर में कोई बीमार पड़ता है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और निःशुल्क अपना इलाज करवा सकते हैं।
2: यानी आपके कहने का मतलब है कि देखिए, शहरों में तो सच में तेज़ी से लोगों को पता चल जाता है, बहुत सारे होर्डिंग्स या लोगों के ऐसे कई माध्यम होते हैं जिसके ज़रिए वो जान जाते हैं, लेकिन गांव में दिक्कत आती है। लेकिन गांव में आपने बताया कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर ग्राम पंचायत है, वहाँ पर भी इसकी पूरी जानकारी उनको मिल जाएगी। अब बात आती है कि मान लीजिए बहुत सारे बेनिफिशरीज़ हैं तो उनको उनका पूरा डेटा अपलोड नहीं था, उसमें प्रॉब्लम आई, या उनका क्राइटेरिया पूरा हो गया, वो सोच रहे हैं पैसे अब क्यों नहीं मिल रहे हैं, या किसी का नाम छूट गया है, या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो क्या आपने शिकायत निस्तारण का भी कोई इसमें कोई तरीका होता है, कोई लोग होते हैं जो इसको देखते हैं, और अगर होता है तो किस टाइप की ज़्यादातर आप देखते हैं शिकायतें आती हैं, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं?
3: अदनान जी, जैसा कि किसी भी योजना के संचालन में होता है, समस्याएं आती हैं ग्राउंड लेवल पर, तो आयुष्मान भारत योजना के भी संचालन में कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ शिकायतें आती हैं, तो इनको निस्तारित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, 14555 1455 पर डायल करके कोई भी लाभार्थी या कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी शिकायत को भी रजिस्टर करा सकता है, और अगर योजना के बारे में उसे कोई जानकारी भी प्राप्त करनी है तो वो भी प्राप्त कर सकता है। इस हेल्पलाइन के अतिरिक्त हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जितने भी जिला स्तरीय अस्पताल हैं, वहाँ पर आरोग्य मित्रों की तैनाती की गई है जो कि इस योजना का संचालन करते हैं। आरोग्य मित्र वो व्यक्ति होता है जो सूचीबद्ध अस्पताल में ज़्यादातर जो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसके आसपास ही उसके बैठने की व्यवस्था है, और उसका कार्य यह है कि आयुष्मान भारत योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपना इलाज कराने के लिए अगर कोई लाभार्थी उस अस्पताल में आता है तो वो व्यक्ति उसकी पूरी सहायता करता है। जैसे कि अगर उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उसका आयुष्मान कार्ड बनाना, और उसकी जो भी बीमारी है तो उसकी पहचान करके संबंधित चिकित्सक के पास उसको ले जाना और चिकित्सक के माध्यम से उसका पूरा इलाज करवाना, और जो भी उसकी शिकायत है या जो भी उसको परेशानी है उसमें उसकी मदद करना, ये आरोग्य मित्र का काम है। तो आरोग्य मित्र से अपनी शिकायत कर सकता है, या फिर अगर वहाँ से उसकी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है तो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, जैसा कि हमने आपको बताया था, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट DIU वो रहती है, उससे अपनी समस्या को बता करके समाधान कराया जा सकता है। तो हम लोग जो है हमेशा तत्पर हैं इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और अगर इसमें कोई शिकायत आती है तो उसका बिल्कुल समय रहते हैं उसका निस्तारण किया जाता है।
4: सुबह जल्दी उठ कर,
2: यानी आपने बोला है कि आप हर तरह से तैनात हैं इस मामले को लेके, सारी टीम आपकी लगी रहती है और कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में ये सरकार के भी है और आप लोगों के भी होता है कि जिस तरह से अगर कोई शिकायत आ भी रही है तो उसका त्वरित निस्तारण कर दिया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने कहा कि कैंपेन्स भी आप लोग चलाते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं कैंपेन्स चलाने के जरिए कि लोकल लेवल पे वहाँ पे नुक्कड़ नाटक हो गया या लोगों से काउंसलर्स हो जाते हैं या जो लोकल की बॉडी होती है वो जाते हैं घर घर जाके उसके बारे में बताते हैं या लोग खुद आके पता करते हैं तो वहाँ पे सेंटर्स पे उनको जानकारी मिल जाती है। तो ये भी आप रेडियो में आए हैं, ये भी एक तरीका है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो इसी के नाते हम चाहेंगे, क्योंकि आप एक कोऑर्डिनेटर हैं इस योजना के, तो लोगों के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे इस योजना से ले?
3: अदनान जी, रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी पहुंच जन जन तक है, वो चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, खेती करने वाला हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक हो, आपको हर जगह FM बजता हुआ मिल जाएगा। और जब से आपका चैनल जनपद गोंडा में लॉन्च हुआ है, मैं तो जिस भी ऑटो में बैठता हूँ मुझे FM पर यही चैनल सुनाई पड़ता है। तो आपका चैनल और आपका रेडियो एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है किसी भी सूचना को कम समय में जन जन तक पहुँचाने के लिए। तो मैं, मेरा यही संदेश है कि आपका जो चैनल है इसमें आप अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को इनवाइट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और व्यावसायिक रूप से भी, जो जिस क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित बातें करते हैं। और ये एक अवसर प्रदान करता है हमारे जैसे लिसनर्स को और सीखने वालों को कि वो लोगों को सुने, उनकी ज़िंदगी से और उनके कार्य क्षेत्र से उनकी बातें सुने और उससे प्रेरणा ले और कुछ नया करने का अपने अंदर जज्बा पैदा करे। तो आपका चैनल इस क्षेत्र में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है और मैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में भी इसका कैनवस और आगे बढ़े और जितने फूल आपके गुलदस्ते में हैं कार्यक्रमों के रूप में, ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और इसमें और नए नए जो नए नए क्षेत्रों से आप लोग इनवाइट करेंगे लोगों को, नए नए कार्यक्रम ऐसे बनाएंगे जो कि जन कल्याण से संबंधित हों और जो हमारे जनपद गोंडा के विकास में सहायक हों। यहाँ के लोगों के दिलों की बातों को आप सुनते हैं और दिलों की बातों को आप दिलों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: यानी हम दिलवाले हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। और बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, लोगों चीज़ों को पहुंचाना है। और कहीं ना कहीं ये गोंडा वासियों का प्यार है। बाकी जो ऐप के थ्रू बाहर लोग सुन रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों तक से, इवन इंडिया से बाहर भी कई लोग सुन रहे हैं इस ऐप के थ्रू, तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं तो उससे लोगों को बहुत सारी जानकारी हुई है। और देखिए, आज भी आयुष्मान भारत को लेके लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रही होंगी या डाउट्स रहे होंगे, उसको आपने क्लियर किया। तो आज हमारे बीच में मौजूद थे डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी जी, जो कि आयुष्मान भारत योजना के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कई पहलुओं के बारे में हमने जानकारी हासिल की। आयुष्मान भारत योजना क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसका शिकायत का निस्तारण कैसे होता है, कैंपेन्स के बारे में, कितना अमाउंट आपको मिलता है, किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन इसके दायरे में आते हैं, ये सारी ही चीज़ों पे बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने बेहद ही सरलता के साथ उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपसे हमारी फिर से मुलाकात हो किसी नए मुद्दों को लेकर।
3: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने श्रोताओं से भी कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, जिनसे जुड़ी हुई बातों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, उनसे जुड़े हुए किस्सों को जानेंगे। इसीलिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं PNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपेन द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर।

देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन

0: कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द वारस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आधा सौ जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और डेफिनेटली आप सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन वीडियो आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शोगुंडा मैसेज मसाला में, आपकी अपनी सब्सटीट्यूट आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, जरा गौर से कान लगा करके सुनिएगा, सुनिए, जरा ध्यान से, जरा गौर से कानों को सटा के, आंखों को बंद करके, एकदम कंसंट्रेट करके सुनिए। शाम ढल रही है और मौसम में एक अलग ही खुमार है, आहा। और हम सबके शहरों में जो ये हवाएं बह रही हैं, इन फिजाओं में खुल रहा बहुत ढेर सारा प्यार है, जज्बात है और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के मजेदार तड़के हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गोंडा मैसेज मसाला और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल। बात प्यार और इस हसीन शाम की हो तो जहन में एक शेर उतर आता है दोस्तों, कहना है कि शाम की तन्हाई में कोई बात तो ऐसी हो, शाम की तन्हाई में कोई बात तो ऐसी हो, हर धड़कन में महसूस हो वो मुलाकात ऐसी हो। बस इसी मुलाकात की और भी ज्यादा सस्पेंस को बनाए रखिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं, नेवर। जी हाँ दोस्तों, बस इसी मुलाकात को और भी ज्यादा हसीन बनाने के लिए आज की इस शाम के सफर में आपका और मेरा साथ देने के लिए हर सैटरडे नाइट स्पेशल में जो आते हैं, दिलों के मामलों का हर मर्ज दूर करने जो आते हैं, जो हमारे बहुत ही ज्यादा खास मेहमान हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे डॉक्टर लव बस कुछ ही पलों में एंट्री होने वाली है, दिलों के डॉक्टर की, हमारे डॉक्टर लव की, जिनके पास में है हर मर्ज की दवा, किडनी की, लीवर की, इंटेस्टाइन की, हार्ट की, सबसे ज्यादा न्यूरो की, और फिर इसके बाद में अगर कोई आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह साइकोपैथ है तो ऑब्वियसली उनके पास में है हर मर्ज की दवा, हमारे डॉक्टर लव। तब तक कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी तो इस शाम के पिटारे में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके चेहरे पे लाएगा बहुत ही प्यारी सी मुस्कान, बहुत ही प्यारी सी शर्म और हया। और इसके साथ में अगर कोई गुस्सा लाना चाहता है तो वो आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के कॉन्टेक्ट में तो डेफिनेटली रहेगा। सो एंजॉय कर लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा इश्क प्यार मोहब्बत वाला नगमा और बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे आपके हम सबके अपने डॉक्टर लव का। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वैसे हाले दिल तुमको बताता, दिल अगर ये बोल पाता तो हाले दिल सुनने के लिए कोई हो चाहे ना हो, हमारे डॉक्टर लव हर सैटरडे नाइट स्पेशल हमारे गोंडा मैसेज मसाला के प्रोग्राम में सुनने आते हैं हम सबका हाले दिल। तो हाले दिल अगर याद नहीं रह जाता है आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह तो कॉपी और पेन लेके नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है। हाले दिल सुनने वाला आजकल कोई नहीं है, सुनाने वाले बहुत है। तो सुनने और सुनाने का यही स्टेज है, यही मंच है। तो नाउ वेलकम इन योर शो गोंडा मैसेज मसाला, स्टे ट्यून्ड। लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में आपके अपने डॉक्टर लव।

0: पूछे बिना नहीं रह सकती। मोहब्बत या जरूरत,
1: आदत और कुछ नहीं।
0: कम से कम आज के दिन तो झूठ बोल देते।
1: प्रिया एक इंसान की आदत भी हो जाना एक सच है।
0: अगर वो इंसान एक अच्छी आदत हो

0: जब इस फोटोग्राफर ने मुझे छुआ तो तुमने मुंह क्यों फेर लिया? जलन?
1: शायद क्या फिर आखिर तो आदमी होना।

0: बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो गुंडा मैसेज मसाला में, आपके अपने आरजे सिंपल नॉन सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी शाम का ये सफर एकदम बढ़िया बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैंने आपकी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल ने आप लोगों से प्रॉमिस वादा किया था कि इस शाम के रंग को और भी ज्यादा गहरा करने और आपके दिल के हर सवाल का जवाब देने के लिए कोई आ रहा है। जी हाँ, बस घड़ी की सुइयां उसी हसीन लम्हे की तरफ इशारा कर रही हैं। आखिर प्यार और इस खुशनुमा शाम की बात हो तो दिल की गहराइयों से एक शेर खुद ब खुद उमड़ उमड़ के उछल उछल के कूद कूद के जुबा पर आ जाता है। सो कहना है कि तेरी चाहत में ये शाम कुछ ऐसी ढल रही है, तेरी चाहत में ये शाम कुछ ऐसी ढल रही है, हर हवा के झोंके में बस तेरी ही खुशबू मिल रही है। और ये कहना सिर्फ और सिर्फ मेरे लिसनर्स के लिए था और हमारे स्टूडियो के आज खास गेस्ट डॉक्टर लव के लिए था। और इसी खुशबू और प्यार भरे एहसास को और परवान चढ़ाने के लिए अब मंच पर अपनी धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं वो शख्स जिनका इंतजार आप सबको रहता है। जी हाँ, आपके और हमारे चहेते डॉक्टर लव बस जुड़ने वाले हैं हमारे साथ इस सफर में। तो कान लगाकर सुनिए और अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि डॉक्टर लव डॉक्टर लव डॉक्टर लव बस आ ही रहे हैं। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: सपना
1: क्या
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27।
2: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास?
3: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
2: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास?
3: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
2: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
3: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
1: सो जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई और फाइनली आ गई। सो वेलकम इन योर शो डॉक्टर लव विद योर लिसनर्स एंड विद योर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। हाउ आर यू?
4: जी हाँ, एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद।
1: ओहो, हमारे एक लिसनर का कहना है, पहले मैं अपनी तारीफ ही आपको सुनाना चाहूंगी। मैं आज आपकी कंपाउंडर चेंज हुई है ना, अभी इंटर्नशिप वाली कंपाउंडर है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आपकी इस इंटर्नशिप वाली कंपाउंडर की चाहने वाले कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तारीफें कितनी ज्यादा आ रही है, राई के पहाड़ पे कितना ज्यादा चढ़ाया जा रहा है। क्या आप सुनने के लिए तैयार है?
4: जी हाँ, हम हमेशा तैयार ही रहते हैं।
1: तो हमारे लिसनर हैं, हमारे कस्टमर हैं, जिनका नाम है शिवम तिवारी, और इनका कहना है स्वागत है आरजे सिंपल जी।
4: जी,
1: आपकी आवाज में जैसे मिठास घुली हो, हर बात में जैसे कोई खास बात मिली हो, आप आए तो महफिल में रौनक छा गई और आपकी आवाज ने दिल की धड़कन बढ़ा दी।
4: क्या बात है, मतलब
1: यूं ही अपनी आवाज से महफिल सजाते रहिए, गौर करिएगा डॉक्टर लव।
4: जी जी, हम एकदम गौर किए हुए।
1: यूं ही अपनी आवाज से दिल की धड़कन बढ़ाते रहिए और महफिल सजाते रहिए, हम श्रोताओं के दिल में जगह बनाते रहिए। आरजे सिंपल जी, आपका दिल से स्वागत है, आपका आना ही हमारे लिए सबसे खास बात है। तो डॉक्टर लव के लिए आपने कुछ नहीं लिखा, विच मीन्स आपको मेरा था बेसब्री से इंतजार। क्यों डॉक्टर लव?
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपकी तारीफ बनती है।
1: वैसे आपकी खिदमत में भी बहुत सारे लोग आए हैं, सायरा बानो, धर्मेंद्र मोहन जी आवाज विकास गोंडा से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, और शिवम तिवारी, नायला अंसारी, सुरेश कुमार जी चौक से, निबल रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, कैलाश नाथ मोतिहारी बिहार से, सबलू सावंत बोरीवली मुंबई से, और मेरे मालवे नगर से राजेश सिंह जी चांदनी, निशा पटेल नगर गोंडा से। ये इतने सारे कस्टमर तो मैं अपने साथ में अपनी झोली में पैक करके लेके आई हूँ, लेकिन आप आते आते एक मिठाई भी नहीं ला सके।
4: नहीं, मिठाई लाए, बाहर रखी है, आप शो खत्म कीजिए, जाइए खाइए।
1: कौन सी वाली है?
4: वही वाली जो आपको बहुत पसंद है।
1: कैसे पता आपको कि कौन सी वाली मेरी वाली है?
4: ये बताइए, मतलब इतने वर्ष हो गए आपको हमारे क्लिनिक पे काम करते हुए।
1: अरे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, अफवाह मत फैलाइए, कोई नौकरी भी नहीं देगा मुझे।
4: नहीं नहीं, तो मतलब आप निश्चिंत रहिए, तो आपकी पसंद का है, पता है मुझे।
1: कौन सी वाली?
4: बस वही वाली।
1: मुझे तो मतलब मिठास तो मिठास होती है,
4: हाँ?
1: काजू कतली में भी वही होती है,
4: हाँ?
1: और नॉर्मल वो जो खोए वाली ब्राउन कलर की चॉकलेट फ्लेवर वाली जो आती है, क्या कहते हैं उसको, पेड़ा,
4: पेड़ा,
1: वो भी उसमें भी मिठास होती है ना,
4: हाँ?
1: तो मिठास तो सब में होती है, मिठाई तो सब होती है, कोई सस्ती होती है, कोई महंगी होती है। आपको क्या लगता है कि मुझे कौन सी पसंद है? एक दो के ही नाम बता दीजिए, मैं जान जाऊंगी कि आपको कितना, किस हद तक आपकी कंपाउंडर का टेस्ट पता है।
4: अच्छा, तो आप ये बताइए, दुनिया में सबसे मीठा क्या है?
1: सबसे मीठा प्यार है।
4: नहीं,
1: मेरे लिए तो प्यार है, मेरे सब दुनिया में मेरे लिए सबसे मीठा प्यार है, और दुनिया में सबसे कड़वा भी अगर कोई चीज है मेरे लिए तो वो प्यार ही है।
4: अच्छा
1: जी हाँ, बस डिपेंड करता है कि कहाँ कड़वा आना चाहिए, कहाँ मिठास आता है, कहाँ कड़वाहट आती है।
4: इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिठास प्रशंसा में,
1: प्रशंसा में।
4: आपकी कोई तारीफ करे उससे ज्यादा मिठास आपको कहीं मिलती है?
1: नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कोई, जैसे मैं हमेशा से ना घी दूध मक्खन घी इन्हीं सब के बीच में रही हूँ ना, तो जब कोई प्रशंसा करने लगता है तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मैं इसी के बीच में रही हूँ, ऑलरेडी इतना घी मक्खन मक्खन ओवर हो चुका है ना। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि कोई और मक्खन लगा रहा है, तो प्रशंसा मुझे मक्खन लगने लगा है अब, पता नहीं क्यों। अगर कोई मुझे प्यार करता है, किसी के दिल से अगर प्रशंसा निकलती है तो वो मेरे सामने नहीं निकलेगी, मेरे पीठ पीछे निकलेगी।
4: भेली लेकर आए?
1: ओ आई लव भेली। भेली खाने से वेट गेन होता है, भेली खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, भेली खाने से इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, और ये नेचुरल शुगर के लिए, इनटेक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा फायदे हैं भेली के। सो बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आपको पता है कि मेरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसीलिए आप भेली लेके आए।
4: भेली लेकर आए।
1: वैसे मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद वो वाले लड्डू हैं जो 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल में मिलते थे।
4: तो बस इंतजार कीजिए, बस 15 अगस्त आने ही वाला है।
1: हाँ, नहीं मिलता है,
4: मिलेगा बिल्कुल मिलेगा।
1: अच्छा जी, तो चलिए आज ये श्योरिटी हो गई। आज डॉक्टर लव में आने का एक फायदा तो हो गया मेरा, कि मेरा 15 अगस्त को एक वो 15 अगस्त वाला गोल्डन कलर का, आई मीन ऑरेंज कलर का, आई मीन रेड कलर का, किसी भी कलर का, वो मोती चूर कहते हैं ना उसको, मोती चूर का लड्डू फिक्स हो गया। आधा किलो मोती चूर का लड्डू 15 अगस्त को मुझे डॉक्टर लव देने वाले।
4: बिल्कुल देने वाले।
1: फिलहाल आप लोग को डॉक्टर लव से क्या क्या चाहिए, आप लोगों की डॉक्टर लव से क्या क्या शिकायतें हैं, आप लोग को डॉक्टर लव के लिए क्या क्या सजेशन है आप लोग के पास में, आप लोग चाहे तो कॉल करके मुझे बता सकते हैं। और हमारे एक कस्टमर का कॉल आ भी चुका है। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी आज की सब्स्टिट्यूट कंपाउंडर आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल। नमस्कार।
5: हाँ प्यारे, हाँ मैं आपके मरीज।
1: आए है मरीज इश्क है हम, कर दे दवा, हाथ रख दे दिल पे जरा।
5: जी जी जी
1: जी। तो आपके डॉक्टर लव है, आप अपने डॉक्टर लव से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चिकनी चुपनी
5: तो पहले कंपाउंडर का नाम तो लिखा है, मतलब कंपाउंडर मैडम।
1: हाँ जी, नमा बताइए जी।
5: और सीरियल नंबर कौन सा, कितने देर बाद नंबर आएगा?
1: देखिए सबसे पहले आप ही ने कहा, हमारे यहाँ एकदम पार्शियलिटी नहीं होती है, हम बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो पहले आएगा ट्रीटमेंट उसका ही पहले होगा। तो आप अपना नाम बताइए, सीरियल नंबर पे आप पहले हैं, आए हैं, पहले इलाज आप ही का होगा। डोंट यू वरी, यू नो ना,
5: हम बादल है।
1: बादल है
4: तो बदस जाइए।
1: हाँ, हमारे डॉक्टर लव पर
5: बस सावन में बसेंगे ना, हम सावन में आए थे।
1: अच्छा,
4: मतलब आप सावन वाले बादल हैं।
5: जी,
4: मतलब सावन के पहले आप नहीं बसेंगे?
5: नहीं।
4: अच्छा, मतलब आप जिद्दी आए हुए हैं?
5: हम बिल्कुल एकदम
4: एकदम जिद्दी आए हैं।
5: और सावन के मिड में आए थे तो हम, तो इसलिए जो है हम सावन के मिड में ही बरसना शुरू करते हैं।
1: हम तो सावन के अंत में आए थे, कोई मजाक की बात नहीं है, सावन बीतने वाला था तब हम आए थे।
5: तो हम सावन के शुरुआत में आए थे।
1: अच्छा, तो हम दोनों हाथ मिला लेते हैं।

0: हाँ बिल्कुल, तो आप रक्षाबंधन के दिन आई होंगी ना?
1: हम रक्षाबंधन के 3 दिन पहले आए थे।
0: अच्छा, रक्षाबंधन के 3 दिन पहले आई थी?
1: जी हाँ।
0: तो हम शुक्ल पक्ष की प्रथमा को आए थे।
1: अब इतना तो मुझे, द्वादशी तिथि है मेरी, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, कुंडली लेके बैठना पड़ेगा।
0: कुंडली आजकल तो जेंजी का जमाना है, सब तो गूगल पे है, कुंडली कौन यूज करता है, आप भी जेंजी हैं।
1: हाँ तो AI वाला कुंडली है अभी फोन में, तब भी चेक करना पड़ेगा ना थोड़ा सा।
0: आजकल तो जेंजी है तो आपको जो गुड़ और मीठा की बात कहते हैं वो तो कोई खाता नहीं, उनको तो चॉकलेट चाहिए।
1: ओहो, कहाँ, किसने बोला कि जेंजीज को ये सब चाहिए? बस यही तो नहीं पता आप लोग को, आजकल के जेंजीज ना है जो, वो आप लोग से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, उनको पता है कि उनके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, उनके हेल्थ के लिए क्या नहीं अच्छा है। वो बिना रिपोर्ट के ही बता देंगे कि उनका हीमोग्लोबिन कम है कि उनका हीमोग्लोबिन ज्यादा है, वो बिना रिपोर्ट के ही बता देंगे कि उनके अंदर किस विटामिन की कमी है, किस विटामिन की ज्यादा मात्रा है, उनको इन सब
0: आर्टिकल
1: अपने ऊपर खुद ही है कि उनको ना किसी बुक में लिखे रहने की जरूरत है, ना किसी और से एक्सपीरियंस साझा करवाने की जरूरत है, दे आर इन फॉर देमसेल्व्स, यू नो डॉक्टर लव।
2: ये इतनी लंबी डिस्कशन में हम कहाँ खो गए,
1: अब ये बताइए
0: लोग मरीजों कंपाउंडर में बाउंस हो गए।
2: हाँ भाई, आप ही दो लोग निपट लीजिए, पहले तो हम बाद में निपटेंगे।
1: यही होता है जब कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस्ड कंपाउंडर आ जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: हाँ बिल्कुल होता है।
0: तो डॉक्टर लोग जो है वो मिलेनिया से पहले वाले हैं ना।
2: हाँ।
0: और अब जेंजी का इलाज करने के लिए मिलेनिया से पहले वाले डॉक्टर कहाँ चलेंगे, अब तो नीट प्रोटेस्ट चल रहा है, जेंजी का इलाज जेंजी करेगा।
1: अरे आप ये जो प्रोटेस्ट आज जंतर मंतर पे या फिर पूरे देश में देख रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों प्रोटेस्ट डेली जेंजीज अपने घर में करते हैं, कभी कमरे में बंद होके, कभी फोन ऑफ करके, कभी मम्मा पापा से बहस करके, कभी भूख हड़ताल करके। तो जेंजीज का ये रोज का काम है, आप इनको नहीं हैंडल कर सकते।
0: तो वही तो बड़ा, तभी तो बिहारी वाले जेंजीज कह रहे हैं ना कि टीयर गैस लाए हैं।
1: हाँ, तो आप ये बताइए कि हम जंतर मंतर जाने वाले हैं कि हम हर मरीज की दवा करने वाले, वहाँ के मरीज की दवा तो वहाँ धुरंधर पहुँच चुके हैं करने के लिए, और अगर जो थोड़ी बहुत कसक होगी वो कुछ पहुँच के भी पूरा कर देंगे, जरूरत पड़ने पे सब काम चलता है।
0: जेंजीज जो है डॉक्टर लोग के पास जरूर आए, हमने तो यही कहा है, हम लोग तो मिलेनियल हो गए।
2: नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा है, जो हमारी डिग्री है वो 3026 तक मान्य है, मतलब 3026 तक जो भी रोग आएगा, या जेंजी फेंजी केंजी अल्फा बीटा गामा जो कुछ भी आ जाएगा, उन सब की जो है वो जानकारी है हमको, तो ऐसे कोई दिक्कत।
0: आपके लिए फिर वही गाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था,
1: आज भी है और कल भी,
2: कल भी रहेगा। तो ये पढ़ाई जो है वो लंबे टाइम की है, ऑक्सफोर्ड की। तो
1: अगर मैं कुछ PhD की टिप्पणी करना चाहूँ, हाँ आपके पास तो 3026 तक का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप जैसे ही धुरंधर से जिन्होंने इस माटी पे जेंजीज को जन्म दिया है,
2: जन्म दिया,
1: आपसे कहाँ हो पाएंगे बताइए।
2: नहीं हो पाएंगे, हमारी वजह से पता नहीं कितने घर बसे,
1: और हमारी वजह से पता नहीं कितने घर टूटेंगे, लेकिन सही सलामती टूटेंगे और अपनी अच्छे के लिए टूटेंगे।
0: तो डॉक्टर लव का जो देश की जनसंख्या में कितना योगदान है?
1: तो देवे की नहीं है।
2: अब देखिए योगदान कितना है ये तो हम आपको क्या बताएं, लेकिन ये समझिए कि बहुत कुछ हमने अपने देश के लिए किया है।
0: कई प्रेम तो इसीलिए ना, योगदान कितना है वहीं से तो प्रेम झलकेगा। हाँ,
2: तो बस वहाँ से झलक रहा है, अगर आप भी झलकाना चाहते हैं तो बताइए।
0: हमारा हम तो वीना मैम तो भी कहे थे, अब आप सिंपल मैम मिल गई हैं, तो हम तो कह रहे थे हमारे लिए भी कोई प्रेमिका ढूंढिए ना, हम तो अभी वहीं अटके हैं।
1: जी प्रेमिका ढूंढने के लिए काहे को किसी से एहसान लेने का, काहे को किसी का एहसान देने का, सीधा सा बंदा मैट्रिमोनियल ऐप पे जाइए या फिर डेटिंग ऐप पे जाइए, अपने सुविधा अनुसार, अपने CV के अनुसार, अपने रेज्यूमे के अनुसार, अपने बायोडेटा के हिसाब से अपने प्रेमिका चूज करिए, कितना सिंपल है ना।
0: अपराध का शिकार हो जाएगी।
1: अरे देखिए, जहाँ असली है वहाँ सब जगह नकली है, अब जैसे हम यहाँ देख लीजिए डॉक्टर लव के साथ मैं बैठी हूँ, तो असली के साथ नकली हमेशा बैठा रहता है, क्यों डॉक्टर
2: रहता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम आपको कुछ टेक्निक बताएंगे और उस टेक्निक को आप फॉलो कीजिएगा, फिर डेट ऐप पर जाइए,
0: अनुभव बोलता है तो हम यही अनुरोध करेंगे कि ज्ञान असली की टीम के पास अनुभव ज्यादा है और डॉक्टर लोग के कंपाउंडर और डॉक्टर लोग के जो भी सर्जन जो भी जो जो लोग टीम में है
2: जी,
0: वो लोग अगर इस एक्सपीरियंस का जो है हमारे तरफ फोकस करें तो हो सकता है कल्याण हो जाए।
2: बिल्कुल कल्याण हो जाएगा और आपका कल्याण और आपका विवाह, आपके जीवन में अब सुख के दिन बीतने वाले हैं, दुख के दिन आने वाले हैं, अर्थात आपकी शादी होने वाली है।
0: अच्छा वो गाना है ना, मेरी शादी करवाओ
2: जी,
0: एक गाना है मेरी शादी करवाओ।
2: हाँ तो बस आपका विवाह जो है वो अत्यंत शीघ्र संपन्न कराया जाएगा।
0: आज डॉक्टर लो वही गाना बजाने वाला
2: जी, मेरी शादी
1: जी बिल्कुल। और बादल जी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं अभी अपने डॉक्टर लव से यही अनुरोध करूंगी इस शो के बाद में कि कृपया करके आप हमारे जितने भी ऐसे सिंगल परिंदे ऐसे अकेले फड़फड़ा रहे हैं उनको,
0: जितने मिलेनियल हैं मैम, जितने मिलेनियल हैं
1: काहे हम, ये जो जेंजीज है वो सिंगल नहीं है क्या, कि उनको मिंगल होने की जरूरत नहीं है, वो सिंगल ठीक है।
0: अभी अभी जेंजीज स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो अभी मिंगल नहीं होंगे, लेकिन मिलेनियल जो सिंगल है उनके लिए ज्यादा चैलेंज है डॉक्टर लव।
1: ठीक है उनके लिए, अगर डॉक्टर लव पे आप लोग को इतना ज्यादा विश्वास है ये देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लव यू डॉक्टर लव
2: जी।
1: तो डॉक्टर लव एक काम करेंगे, ये घोषणा करने वाले हैं ये नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सैटरडे को कि यही ज्ञान स्थली में वो एक सामूहिक मिलेनियल का विवाह करवाने वाले हैं। जिन जिन को विवाह करना है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चाहे वो हमारे बड़े दद्दा भैया लोग हैं चाहे वो हमारी बड़ी दीदी बहनी लोग हैं, आप सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है कि सैटरडे अगले सैटरडे को आप जरूर डॉक्टर लव को सुनिएगा और ये जरूर एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि आप लोग को इन पे पूरा विश्वास है, वो जिसका हाथ पकड़ाएंगे आप उसका हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया बादल जी कॉल करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे लिसनर्स हमारे पास में हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास में, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास में जो डॉक्टर लव के पास में ढेर सारी बातें लेके आए हैं। धर्मेंद्र मोहन है आवास विकास से, उनका कहना है कि डॉक्टर लव नाम सुनते हैं लेकिन क्लिनिक पता नहीं कहाँ है, तो बताइए आपका क्लिनिक आप एड्रेस भी दे दीजिए।
2: हाँ एकदम एकदम एकदम पाणे तालाब के बीचों बीच में,
1: पाणे तालाब के ये कहाँ है,
2: ये पाणे तालाब ये रवि चिल्ड्रन स्कूल के पास।
1: ओ इसको पाणे तालाब कहा जाता है।
2: हाँ
1: देखिए अब यही देख लीजिए मेरा जनरल अवेयरनेस, बताओ मैं इस अपने अपने शहर के बारे में नहीं जानती। फिलहाल तो पाड़े तालाब के बीचों बीच में है हमारे डॉक्टर लव का सेंटर क्लिनिक, आप वहाँ भी पहुँच के फिजिकली उनको अपना हाथ पैर दिल दिमाग सब कुछ दिखा सकते हैं। और धर्मेंद्र मोहन जी का कहना है आवास विकास गोंडा से कि उनके हिसाब से सबसे मीठा होता है ज्ञान। ज्ञान से मीठा, मेरे लिए तो मीठा प्यार था, आपके लिए मीठा प्रशंसा है, उनके लिए ज्ञान है। तो हाँ। इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे डॉक्टर लव?
2: नहीं, जब ज्ञान आ जाता है तो वैराग्य हो जाता है, तो हमको लगता है ज्ञान थोड़ा गड़बड़ करेगा।
1: ज्ञान वैराग्य करता है
2: और क्या, अब आपको ज्ञान हो जाए
1: करता है, मेरे हिसाब से ज्ञान मौन करता है, वैराग्य तो कुछ और करता है।
2: अच्छा
1: भोलेनाथ जी के वैराग्य थे ना, तो उनको तो ज्ञान तो उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिया था। तो ज्ञान कहाँ, कहीं से कुछ हमारे शास्त्रों से कुछ लिंक ही नहीं हो रहा डॉक्टर लव?
2: नहीं तो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं आप, शास्त्रों से लिंक करा रही।
1: तो फिलहाल हमारे पास में एक पेशेंट और आ चुके हैं। मेरे पास ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिसका जवाब शायद ना कोई आज तक दे पाया है ना दे सकेगा।
3: हेलो
1: सो नमस्कार आपका, आपका क्या नाम है, आप सुन रही हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम का गोंडा मैसेज मसाला विद डॉक्टर लव।
3: हेलो
1: जी सिंपल, हेलो नमस्कार,
3: हेलो
1: जी
3: नमस्ते मैम
1: जी, आपका नाम?
3: जी मैं पहचान गई होंगी आप, निशा।
1: ओहो निशा फ्रॉम पटेल नगर गोंडा, स्वागत है आपका।
3: जी डॉक्टर लव आए हैं?
2: जी बिल्कुल आए, नमस्कार।
3: सलाम अलैकुम सर।
2: जी नमस्कार।
1: वालेकुम
3: अस्सलाम। जी सर एक प्रॉब्लम है।
2: जी
3: सर हम किसी के पास कॉल लगाते हैं तो कॉल नहीं लगता है सर।
2: वो देखिए आप कभी भी फोन पर, मैंने आपको पिछली बार बताया था, कॉल लगाने से पहले अपने फोन को विम बार से अच्छी तरीके से धो लें। और इसके
3: धोई थी तो?
2: हाँ धोया आपने?
3: जी एक बार धोया थी, काम ही नहीं किया।
2: ये नहीं काम किया, आप एक काम कीजिए कम से कम 4 घंटे के लिए मोबाइल को पानी में भिगो दीजिए सर्फ एक्सल के साथ।
3: सर तो खराब खराब हो जाएगी, हम कहाँ लाएंगे सर?
2: नहीं आप निश्चिंत रहिए, खराब नहीं होगा। चार घंटे सर्फेक्सल में अपने मोबाइल को भिगो दीजिए, ठीक चार घंटे के पश्चात शुरू हो जाएगा। आपको कल लगे
3: सर, एक प्रॉब्लम किसके फोन में है? सिंपल मैम के फोन में, उनका फोन में नेटवर्क नहीं रहती है सिंपल मैम के फोन में।
2: देखिए सिंपल मैम इज नॉट सो सिंपल,
3: उनके फोन में नेटवर्क नहीं रहती है सर।
2: हाँ तो
3: आप फोन में प्रॉब्लम है।
2: अरे तो आप चाहती हैं कि हम सिंपल जी का फोन सही कर दें अपने कंपाउंडर साहब का?
3: जी सर।
2: ठीक है तो फिर हम इनका फोन अभी सर्फेक्सल में डाले दे रहे हैं। ठीक है
3: जी सर।
2: बस अब आप निश्चिंत रहिए, आज के बाद इनका फोन लगेगा। अभी हम इसको सर्फेक्सल
3: फोन लगाते हैं तो आप फोन करेंगे फोन चला जाएगा सर? फोन करेंगे तो फोन पकड़ लेगा?
2: पकड़ लेगा, बस अभी सर्फेक्सल में भिगोने जा रहे हैं। ठीक
1: तो
3: करेंगे तो पकड़
1: लेगा। हाँ। जी। तो बहुत कॉल करने के लिए निशा जी। तो ये थी पटेल नगर गोंडा से निशा जी। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर लगा, थोड़ा चले क्या?
2: हाँ चले।
1: कहाँ?
2: मेरी शादी करवा।
1: आपकी शादी करवाए?
2: नहीं अच्छा। बादल जी ने कहा।
1: ओ हाँ बादल जी को तो गान, वैसे बादल जी तो रोज गाना सुनते हैं डॉक्टर लव, आप तो कभी कभी आते हैं। हाँ। तो अब ये बताइए कि अब बादल जी तो गए फोन करके। हाँ। तो आए थोड़ा सा बरस के गरज के, थोड़ा सा हम लोग को नृत्य करवा के एंटरटेनमेंट करवा के चले गए।
2: चले गए
1: तो अब उनके पसंद का संगीत सुनना है कि आपको अपने पसंद का संगीत?
2: नहीं भाई भाई, हमारे लिए जो है पेशेंट महत्वपूर्ण है।
1: ओ माय गॉड, अच्छा पेशेंट सर्वोपरि है ना? तो कौन सा गाना आपने कहा पेशेंट?
2: लाल चुनरिया वाली कोई घर में मिला,
1: ये गाना सुनना?
2: यही गाना है।
1: ओ अच्छा।
2: हाँ मौसम इस समय यही है।
1: लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ। ओ माय गॉड। तो एंजॉय करते हैं बादल जी के और हमारे डॉक्टर लव की फरमाइश पर ये पसंदीदा नगमा हमारे अपने गोंडा मिसिंग मसाला में आज सैटरडे नाइट स्पेशल डॉक्टर लव में। और लेती हूँ छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आई मीन यही वाला छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं फिर जिस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में और करेंगे ऐसी खट्टी मीठी कड़वी बातें, इश्क प्यार मोहब्बत शादी इन सब पर। स्टे ट्यून्ड।
4: पहले सौ एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।

0: दर्द दिल और दर्द जिगर जमाने को दिखाना होता है कि छुपाना होता है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। कभी कभी लड़कों से कहा जाता है कि अरे तुम मर्द हो, रोते हो, रोगे दुनिया हंसेगी तुम पे। लड़कियों से कहा जाता है अरे लड़की हो के आंसू बहाती हो। लड़कों से कहा जाता है लड़कियों की तरह आंसू बहाते हो। तो क्या करना चाहिए, दर्द छुपाना चाहिए कि दर्द दिखाना चाहिए, पता नहीं। चलिए डॉक्टर लव से ही पूछ लेते हैं। फिलहाल आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी सब्स्टिट्यूट कंपाउंडर आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आपके हमारे हम सबके चहेते डॉक्टर लव के साथ में। तो डॉक्टर लव बताइएगा जरा, मेरी कंफ्यूजन को प्लीज क्लियर करिएगा कि दर्द को छुपाना चाहिए कि दर्द को दिखाना चाहिए।
1: दर्द को नहीं, हमारे हिसाब से हमसे दर्द बताना चाहिए, बाकी किसी से नहीं बताइए, क्योंकि हम दर्द का इलाज कर देंगे।
0: क्यों, ऐसा कौन सा इलाज आप, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं अक्सर आती हूँ ना, जिस दिन जब भी यहाँ टर्न होता है कि मैं आपकी कंपाउंडर हूँ, है ना,
1: हाँ?
0: तो उस दिन मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता है कि आखिर कौन सा बूटी दे देते हैं आप लोगों को कि अगले हफ्ते फिर आ जाते हैं। मैं, मुझे एक आपका एक भी इलाज ट्रस्टेड नहीं लगता है, ना सर्टिफाइड लगता है।
1: हमारे सारे इलाज ट्रस्टेड और सर्टिफाइड है, आप कभी आजमा के देखिए।
0: अच्छा जी, चलिए आजमाते हैं। फिलहाल देखते हैं, हमारे पास में एक लिसनर का कॉल आ चुका है। फिलहाल मींस लिसनर नहीं, हमारे पेशेंट का कॉल आ चुका है। सो नमस्कार, आपका क्या नाम है?
2: हेलो सिंपल बहन जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, कितने प्यार से बोलते हो आप लोग, यही तो दिल ले लेते हो।
2: अरे आपकी मधुर आवाज जो है, क्या बताएं, बहुत अच्छी लगती है।
0: ओहो डॉक्टर लव देख रहे हैं
1: जी, बिल्कुल
0: हाथ से जा रही है आपके।
1: नहीं कुर्सी नहीं जा रही भाई, कंपाउंडर की कुर्सी जा रही है, डॉक्टर की कुर्सी तो वही रहेगी।
0: ओहो अच्छा, तो चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्टर लव से।
2: जान पाए हैं मैं दीदी? नहीं जान पाए
0: जी, नहीं।
2: मेरा नाम है विजय पाल यादव।
0: ओह विजय पाल यादव जी फ्रॉम ललहुआ लखीमपुर खीरी। आपको पता है आपका एड्रेस मुझे इतना अच्छा लगता है आपके नाम के साथ में, आपका एड्रेस देखिए कितने प्यार से मैं बोलती हूँ ना, विजय पाल यादव जी फ्रॉम ललहुआ लखीमपुर खीरी।
2: आप लोगों प्यार है दीदी ना सब।
0: हाँ तो चलिए,
1: हाँ तो प्यार करना हमने सिखाया है इन लोगों को।
2: अरे डॉक्टर साहब हमको बहुत तेज जुकाम हो गया है।
1: आपको बहुत तेज जुकाम हो गया है?
2: हाँ।
1: अच्छा कैसे पता चला कि तेज हुआ है, धीमे नहीं?
2: अरे जुकाम जब से हुआ है, बरसात में भीग रहे हैं, हमने कहा हो सकता है जुकाम थोड़ा कम पड़ जाए।
1: हाँ, हाँ।
2: लेकिन वो और बढ़ रहा है, तो आप कोई दवाई बताइए हमको।
1: ये बहुत साधारण है, आपके यहाँ गाँव में कहीं बर्फ की सिल्ली मिल सकती है?
2: जी
1: बर्फ की सिल्ली।
2: हाँ बर्फ की सिल्ली मिल जाएगी।
1: आप एक काम कीजिए, तत्काल बर्फ की सिल्ली को अपने घर पर लाइए और उस पर 6 घंटे लगातार लेटे रहिए।
2: 6 घंटे?
1: हाँ 6 घंटे आपको लेटना है बर्फ की सिल्ली पर। ईश्वर ने चाहा तो न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा।
2: ये समझ लो बरसात में लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी
1: जी।
2: बरसात तापने के लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी।
1: नहीं क्यों, मतलब आपको सिल्ली लानी है बर्फ की, तो मतलब उसमें ऐसी कोई बात नहीं, एकदम आप ठीक हो जाएंगे।
2: अच्छा ठीक है, देखो अभी हम कोशिश करते हैं, मांगते हैं कहीं।
1: हाँ बर्फ बहुत, हमेशा जो है वो ठंडा पानी पीना है, थम्सअप पीना है, सुबह उठ करके एकदम से आपको चिल्ड वाटर पीना है।
2: इस समय हम यही करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, बरसात में भीगते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं।
1: हाँ?
2: लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है जुकाम।
1: कम नहीं हो रहा है क्योंकि आप बर्फ की सिल्ली पर लेट नहीं पा रहे हैं, और जब बर्फ की सिल्ली पर लेटिएगा तो पेट के बल लेटिएगा,
0: और रात में सोते समय ना वो सर को गीला कर लीजिएगा।
1: हाँ
2: अच्छा दीदी वाह,
1: ये एक तरीका और है।
2: कंपाउंडर साहब तो आपसे आगे हैं।
1: हाँ एकदम।
0: अरे अभी मैं किस किस चीज की कौन कौन सी दवा बता रही हूँ, अभी डॉक्टर लव को भी नहीं पता।
1: ये नहीं पता है?
2: नहीं पता है
1: और क्या। देखिए हम इसे सीख करके बताइए।
0: देखिए गुरु गुरुए रहत है और चेला शक्कर की, कोनो कहावत थी, मैंने अपने पापा के मुंह से सुना था और ये एकदम क्लियर है।
1: नहीं देखिए
2: नहीं,
1: अब मैं आपको एक बात बताऊं विजय पाल जी।
2: डॉक्टर साहब
1: जो है, हम बिल्ली को हम लोग मौसी कहते हैं। तो उसने शेर को शिकार करना सिखाया, ये पता होगा आपको। तो एक दिन क्या हुआ कि भूख लग गई जो है वो शेर को, तो जब शेर को भूख लगी तो उसको कुछ और नहीं मिला, तो उसने सोचा बिल्ली को ही खा लिया जाए। तो बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, तो शेर पर चढ़ना शेर को नहीं आता था। तो उसने बिल्ली से कहा कि ये बताइए, आपने सब हुनर मुझको सिखाए थे, ये क्यों नहीं सिखाया था? तो उन्होंने बताया कि अगर ये सिखा दिए होते तो आज तो हम खत्म हो गए होते। तो जो गुरु होता है वो आखिरी दांव अपने पास बचा कर रखता है कि जिस दिन ये मेरे ऊपर झपटेंगे उस दिन हम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे।
0: जी हाँ, बस मैं तो, भी वही कहने जा रही हाँ, थी। तो, कौन सा है ब्रह्मास्त्र?
1: वही है ब्रह्मास्त्र जो है, हम वो बता देंगे। तो बताइए हमको पे, कौन पूछे?
0: अब जिसने विजय पाल यादव जी, जिसने आज सिंपल नॉट सो सिंपल पर विश्वास न किया, किसी पर भी विश्वास करना ना लानत हो।
2: नहीं, विश्वास आप पर है, हमें बहुत ये डॉक्टर साहब परिवार को ही मिलते हैं।
0: ये डॉक्टर कंपाउंडर हूँ, इनको मुझ पे विश्वास करना चाहिए।
1: विश्वास
0: यहाँ मुझसे एक मेरा दुश्मन भी मिलेगा ना, दुश्मनों से भी मैं दुश्मनी करती हूँ, तो इतने कायदे से करती हूँ कि वो दुश्मन से भी आप जब मिलोगे तो वो यही जरूर कहेगा कि हाँ इतनी बात तो है कि इस लड़की से जो कहा गया वो किया, इस लड़की ने विश्वासघात नहीं किया, दुश्मनी भले की।
1: नहीं नहीं, तो हमने खाली एक जो है वो अपने पास जो है वो ब्रह्मास्त्र बचाया हुआ है, बाकी सब हुनर तो दे दिया है आपको।
0: अच्छा जी, अभी देखिए हमारे पास भी कुछ आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल से भी ज्यादा समझदार लोग हैं यहाँ चैट बॉक्स में। एक का कहना है कि बिल्ली मौसी होती है कि चाची होती है, कोई ये कंफर्म करके बताओ।
1: देखिए बहुत अच्छी बात है ये, विजय पाल जी भी सुन रहे हैं भाई?
2: जी हम सुन रहे हैं डॉक्टर साहब।
1: आप बताइए, आपकी जो पत्नी है वो शेरनी है कि नहीं?
2: अरे शेरनी से वैसे डर लगता है, शेरनी तो सबकी पत्नियां होती
1: हैं। हाँ, तो ये बताइए, जब शेरनी पत्नी हो गई और बिल्ली आपके पत्नी की बहन है, तो फिर बिल्ली को क्या कहा जाएगा? मौसी ही तो कहा जाएगा।
0: देखिए ना, हम कोई यूपीएससी का पेपर देने बैठे हैं, ना एसएससी का पेपर देने बैठे हैं, ना कोई।
1: हाँ, तो बिल्ली को मौसी कहा जाता है भाई, क्योंकि पत्नी शेरनी होती है।
0: अब देखिए रिश्ते में कौन किसका क्या लगता है ये देखने बैठेंगे तो जिंदगी भर हम यही देखते रह जाएंगे। सीधे डायरेक्ट मुद्दे पे आया करिए, घुमाया मत करिए।
1: हाँ, बिना घुमाए देखिए, हर चीज दुनिया की घूम रही है, धरती घूम रही है, सूरज घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत घूमना तो पड़ेगा ही।
0: अच्छा हाँ। तो देखिए हम इंसान हैं, हम ऐसे तो घूम सकते नहीं, हमें घूमने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए होता।
1: हाँ, तो सब्स्टिट्यूट है, जैसे आप हमको देखकर घूम रही हैं, हम आपको देखकर घूम रहे हैं।
0: अब आप मुझे देख के घूम रहे हो वो अलग बात है, लेकिन हम तो किसी और को देख के घूमते हैं।
1: ये देखिए यही है, मतलब खाएंगी हमारा और गाएंगी किसी और,
2: गाएंगी दूसरे का।
1: अब बताइए, हाँ ये अब ये क्या है, विश्वासघात नहीं है? तो इसीलिए ब्रह्मास्त्र बचा के रखा हुआ है मैंने।
0: अच्छा,
1: देखिए सिद्ध कर दिया इन्होंने।
0: हमारे पास में एक लिसनर है, उनका कहना है, इम्तियाज अहमद नाम है उनका, गोंडा से ही। उनका कहना है, सर जी सुना है कि जो इंसान पतेली में, भगोना जो भी कहा जाता हो, इन सब में जो इंसान खाना खाता है, उसकी शादी में बारिश होती है।
2: एक हाँ, डॉक्टर साहब खाना मत।
1: नहीं नहीं,
0: ये तो हजार कर चुके हैं, अब क्या ही करेंगे, सूखा ना पड़ जाए।
1: हाँ नहीं, बिल्कुल जो है पतीली में खाना चाहिए, ताकि आपकी शादी में पानी बरसे और भीड़ भाड़ हो जाए, लोग कम खाएं।
2: हाँ,
1: तुरंत लोग
2: बचत हो जाएगी, खाने की बचत होगी।
0: हाँ, वैसे मैंने ये मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि एक मेरी बहन की दोस्त थी, उसकी शादी थी। अब भाई उसकी शादी ऐसे सीजन में थी जब बहुत कम शायद बारिश होती हो, लेकिन उसके शादी के दिन सुबह से लेके पूरे 24 घंटे जो बारिश हुई कि सारा सिस्टम अलग करना पड़ा, सब कुछ देखना पड़ा, और एट लास्ट उसके मम्मी ने आके उसको डांटा ये कहकर कि मैं मना करती थी कि भगोने में खाना मत खाओ, लो
1: ये
2: खा लिया।
1: यही हम सिंपल कोई मना करते हैं कि मत खाओ, लेकिन ये रोज रात में भगोने में ही
0: खाते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना दोस्तों, जब ऐसा होता है कि खाना का वो जो खाना होता है मुझे, वो आइटम सिर्फ मुझे ही खाना है और बर्तन बड़ा है, तो मैं सोचती हूँ कि कटोरी वटोरी लेके खा लूँ लाओ, फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि आखिर मैं इतना सोच क्यों रही हूँ, मुझे तो शादी भी नहीं करनी है, तो पानी बरसे चाहे ना बरसे, मैं भगोने में खाऊं, मैं कढ़ाई में खाऊं, क्या मतलब बनता है, तो फिर मैं खाने लग
1: जाऊँ। किसी जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को क्यों आप तबाह करें?
0: अच्छी है ना भाई, अपनी ही तबाह करके रखी है मैंने। सच में बेचारा जो मेरे पास आएगा, भगवान वो कहते हैं ना डॉक्टर लव और विजयपाल जी अभी सुनेगा सब सुनेगा, कहते हैं कि जोड़ी ऊपर वाला बना के भेजता है, कोई ना कोई मेरे लिए भी मुंडा बैठा होगा कहीं ना कहीं कोने में बेचारा, पता नहीं क्या ही कर रहा होगा, है ना, तो उस बेचारे को क्या सोच के भगवान ने बनाया होगा, उसको आखिर कौन कौन सी स्ट्रेंथ दी होगी, कौन कौन सी वीकनेस दी होगी, आखिर वो मुझको कैसे झेलेगा, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। मुझे जो चीज आज जान से ज्यादा प्यारी है कल वो मुझे जहर लगने लगती है, अब बताओ ऐसे में कोई इंसान मुझे कैसे झेल सकता है, प्राण प्रिय चीज मेरे लिए जहर हो जाती है कभी कभी।
1: देखिए फिर आपकी किसी
0: एडवेंचर चाहिए होता है हमें आजकल के लोगों को, तो देखिए इसी एडवेंचर के साथ में हमारे साथ में किसी और ने ज्वाइन किया है। नमस्कार, आपका क्या नाम है? हेलो, इतनी प्यार से बोलो तो।
2: गुड इवनिंग
0: जी। गुड इवनिंग, नमस्कार, आपका क्या नाम है?
2: हमारा नाम श्री देवी।
0: अच्छा देवी सर जी।
2: राम राम राधे राधे। और हाल चाल भैया?
1: जी जी एकदम हाल चाल बहुत शानदार।
2: नमस्कार नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: गुरु जी, आज कौन सा टॉपिक है
1: जी?
2: आज कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं यहाँ पर?
1: सामूहिक विवाह।
2: सामूहिक विवाह? जी सर।
1: तो क्या आपको भी करना है?
2: हमारा कौन करेगा?
1: रजिस्ट्रेशन शुल्क आप जमा कीजिए, सिंपल कंडक्टर साहब के पास, कंपाउंडर साहब के पास।
2: क्या क्या जमा करना पड़ेगा सर?
1: आधार कार्ड, बैंक पासबुक।
2: हाँ ये हो गया बैंक पासबुक।
1: अपनी एक फोटो।
2: हाँ फोटो।
1: और 21,000 रुपए नगद।
2: 21,000 रुपए नगद
1: इतना आपको देना पड़ेगा।
0: एक सेकेंड मैं यहाँ थोड़ा चेंजेस करना चाहूंगी। 21,000 के लिए आपको 51,000 रुपए देने।
1: अच्छा मतलब 30,000
2: आप देना पड़ेगा।
0: 21 टोटल का, 21 मेरा, और जो बचेगा जो बिचौलिया होते हैं उनको भी तो कुछ देना होता है ना, ऐसे थोड़ा चलता है।
1: मतलब ये अपने
2: जो और उसके बाद में कहाँ पर देना पड़ेगा, कैसे ऑनलाइन देना पड़ेगा, नगद कैसे आना पड़ेगा?
0: दे सकते हैं आप, चाहे RTGS कर सकते हैं आप, चाहे NFT कर सकते हैं आप, चाहे कैश दे सकते हैं आप, चाहे चेक दे, आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, बस पैसा मिलना चाहिए।
2: तो हम वहाँ नगद ला कर देंगे ऑनलाइन
1: जी। बिल्कुल आप कैश ला कर दीजिए, सबसे अच्छी बात है।
2: और हमारा पर्सनली नंबर नोट कर लीजिए, अगर नहीं देंगे तो फोन करके बात कर लीजिएगा
1: जी भाई। इनका नंबर नोट कर लिया जाए, अगर ये फोन न दे तो उनको तुरंत
2: नंबर
1: है आपका नंबर है मेरे पास, निश्चिंत चाहिए आप।
0: डॉक्टर लोग क्यों रोते हैं, क्या पता उन्होंने किसी से फिक्स करके रखा हो
2: आप
1: नंबर मत दीजिए, मेरे पास आपका नंबर है और इसी नंबर पर हम आपको व्हाट्सएप पर जो है वो UPI स्कैनर भेज रहे हैं और आप 51,000 रुपए नगद तत्काल प्रभाव से भेज।
2: वही ला कर देंगे
1: बिल्कुल।
2: और हमारे पास तो बड़ी मोबाइल है नहीं, ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे, छोटी मोबाइल चला रहे हैं।
0: अरे यही तो आपको पता नहीं है जिन, वैसे आपको पता है क्या आपका नाम
1: क्या,
0: कि हम छोटे वाले कीपैड फोन से भी UPI पेमेंट कर सकते हैं
1: जी।
0: जी हाँ जी, जाइए किसी से मिलिए, बात करिए, आजकल के जो कीपैड फोन आते हैं आप उससे भी फटाक से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको बड़े फोन की जरूरत नहीं है पेमेंट करने के लिए।
3: ये बात है।
0: हाँ
1: जी
3: तो बहुत आसान हो गया काम।
0: बहुत ही आसान, खाली नंबर डालना है। जैसे आप नंबर
3: डालेंगे हमारे पास 14 पत्नियाँ ही वो क्या करेंगी।
0: कितनी पत्नी है आपके पास?
3: 14।
1: हाँ तो 14 है तो एक कॉल करेंगे ना आप, 15 हो जाएंगी।
0: अरे एक ही काम करिए, 101 केस करिए। डॉक्टर नहीं रुकेंगे तब तक आपको भी नहीं रुकने को बोलेंगे।
1: हाँ।
0: चलते रहेंगे, आप भी चलते रहे। वाह, ऐसे तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है देवी प्रसाद जी।
1: हाँ। और आपकी पत्नी में और मैंने अपनी पत्नी में कभी कोई अंतर नहीं समझा। हाँ देव प्रसाद, हम आपकी 13 पत्नियों को अपनी पत्नी समझते हैं।
0: 14 पत्नी है
1: उनकी। हाँ वो 13-14 हो
0: गए। ज्यादा सुंदर है वो, आपको कुछ नहीं।
1: हाँ ये
0: बात
1: तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी पत्नी हमारी पत्नी में कोई अंतर नहीं।
0: हमारी किस्म का
3: क्या? ये बात सही है, हम बता रहे हैं ऊपर के साहब के नीचे नीचे का हम।
1: जी जी बिल्कुल
3: यही रहेगा।
1: बहुत बहुत अच्छी बात है।
0: सर हमने बहुत सारे लिस्नर से बात की, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है डॉक्टर लव
1: जी।
0: कि जैसे आपके ऊट पटांग आंसर रहते हैं, सजेशन रहते हैं, वैसे ही लोगों के ऊट पटांग क्वेश्चन भी रहते हैं।
1: ये नहीं रहते हैं, ये आपके समझ में ज़रा देर से आएगा,
0: है ना। लेकिन मुझे एक चीज अभी जो समझ में आ रहा है वो इतना आ रहा है कि ये ऊट पटांग क्या होता है।
1: जब ऊट पटांग हो जाता है,
0: पटांग क्या होता है?
1: हम बात करते हैं।
0: अभी हमारे पास में एक कस्टमर का कॉल आया दोस्तों, चुपके से कान में बता रही हूँ। उस कस्टमर से पूछेंगे पहले, फिर इसका सॉल्यूशन हम डॉक्टर लव से लेंगे। हेलो नमस्कार, आपका नाम? गुड इवनिंग, आपका क्या नाम है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
4: सृष्टि बोल
0: रहे हैं। सृष्टि, सृष्टि मुझे आपसे एक चीज पूछना था। मैं डॉक्टर लव से आपकी बात कराऊंगी और आपने हर मर्ज की दवा ले लेना। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऊट पटांग का अर्थ क्या होता है? ऊट पटांग का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कर सकते हो आप? नहीं आता कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछ लेंगे। फिलहाल चलते हैं डॉक्टर लव की तरफ। डॉक्टर लव आपके पास में एक पेशेंट।
1: जी हाँ, ऊट पटांग का मतलब होता है जब आप ऊट पर टांग रख देते हैं तब वो ऊट पटांग हो जाता है।
0: अच्छा यार, हमारे गोंडा में कितनी बार हमको ऊँट देखने को मिलता है कि हम ऊँट पर।
1: नहीं, हमने ये नहीं कहा है कि आप असली ऊँट पर ही पांव रखिए,
0: लेकिन
1: खिलौना खरीद लीजिए।
0: ऊँट नकली ऊँट का खिलौना भी अपने गोंडा में नहीं मिलता,
1: मिलता है आपको जितना चाहिए उतना हम दिलाएं। हमारी क्लिनिक पे है। फिलहाल हम अब सृष्टि से बात कर ले। हेलो जी, ये सुता गायब हो गए।
0: अब सृष्टि है, अब सृष्टि तो स्वतः गायब ही होगी।
1: हाँ सृष्टि स्वतः गायब होगी।
0: देखा कितनी अच्छी अच्छी बातें निकल के आती है ना एक शब्द से दूसरे शब्द पे। फिलहाल डॉक्टर लव क्या लगता है, जैसे मेरी जुबान चलती है और जैसे मेरा दिमाग चलता है और जैसे मेरे मुखारविंद से शब्द निकलते हैं, क्या कभी मुझे भी कोई जीवन साथी मिलेगा?
1: हाँ बिल्कुल मिलेगा।
0: कब मिलेगा?
1: मतलब अभी रजिस्ट्रेशन शुरू है। आप भी अपना आधार, पैन, बैंक पासबुक और 21,000 रुपए नकद।
0: पैसा वैसा नहीं देने का, दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ मैं।
1: दहेज प्रथा नहीं, रजिस्ट्रेशन फी है।
0: कौनो फी है, लेकिन है कुल मिला के दहेज ही।
1: नहीं दहेज,
0: मैं भी चाहती हूँ ना डॉक्टर लव की कोई मेरी जिंदगी में आए और फिर इसके बाद में मैं उसको रोमांटिक रोमांटिक शायरियाँ सुनाऊँ।
1: हाँ, जिसके पश्चात वो पछताए।
0: नहीं
1: कहाँ,
0: अरे शायरी सुन तो लीजिए कि चांदनी रात हो और तेरा साथ हो।
1: आहा क्या बात है।
0: चांदनी रात हो और तेरा साथ हो, हर बात में बस तेरा जिक्र खास हो।
1: खास हो,
0: न जाने कौन सा नशा है तेरी आंखों में। आहा, वैसे मुझे लोगों में उनकी आंखें ही बहुत अच्छी लगती हैं, सबसे अच्छी लगती हैं। और सच में हाँ, शायद शायद शायद मुझे लोगों की आंखों से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। तो ना जाने कौन सा नशा है तेरी इन आँखों में कि होश भी आ जाए तो मदहोशी ही छाई रहती है।
1: क्या बात है,
0: तो कोई आएगा उसको मैं इतनी प्यारी प्यारी लाइंस सुनाऊंगी तब तो पिघलेगा ना। कि
1: पिघलेगा, बिल्कुल पिघलेगा।
0: नहीं पिघलेगा, आपकी बात देखो यहाँ, ये जो सबसे ज्यादा दुनिया में मैंने आज तक मैं पहले एक ऐसे पुरुष है ये डॉक्टर लव जिनसे मिली हूँ जो इतना फ्लर्ट करते हैं। आज तक मैं मेरी किसी भी ऐसे पुरुष से मुलाकात नहीं हुई है जो इनसे कंपेयर कर सके, इनसे कंपीट कर सके फ्लर्ट।
1: नहीं,
0: अब जब ये नहीं थोड़ा सा पिघल रहे हैं तो दुनिया क्या ही पिघलेगी। बहुत
1: एकदम पिघल जाएंगे हम, कहीं आइसक्रीम भी पिघल जाएंगे।
0: अरे दिल वही तो, आइसक्रीम पिघल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, ज्वाला मुखी पिघल जाएगा, लेकिन ये दिल, कंबकत दिल किसी का आपके कंपाउंडर के लिए पिघलता ही नहीं।
1: चलिए फिर दिल आपका पिघला देते हैं। आपके लिए किसी का दिल पिघला देते हैं।
0: मेरे लिए किसी का दिल पिघलाएंगे तब तो बेचारे का पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऐसे नहीं करते ना, ऐसा करेंगे मेरा दिल उसके लिए पिघला दे। हेलो, नमस्कार रईस जी, क्या हाल चाल है?
5: नमस्कार,
0: कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद जब भी आपको सुनने को मिलता है, आपके आवाज सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है।
5: नमस्कार गुरु जी।
1: जी नमस्कार।
5: अरे भैया ऊँट पटांग क्या हो रहा है ये सब?
1: ये ऊँट पर टांग हम लोग रख रहे हैं।
5: अरे इस तरह से पढ़ाया जाएगा तो फिर मामला और गड़बड़ हो जाएगा।
1: गड़बड़ नहीं होगा, मामला सही होगा। क्योंकि जब आप ऊँट पर अपनी टांग रखेंगे तो आप उसके लिए आपको अपनी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, तो आप वर्जिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ऊँट पर टांग रखना इतना आसान काम होगा नहीं।
0: रही जी इसीलिए मनु सर के टांग इतने लंबे हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं।
5: ओके
1: जी
5: जी, मानवेंद्र जी।
1: जी जी, ये मानवेंद्र जी कौन है हमको नहीं पता, मैं डॉक्टर लव।
5: ओके आई एम सॉरी डॉक्टर लव जी।
1: जी जी,
5: वाकई आपकी टांग लंबी है।
1: नहीं, हमारी टांग, हमने कही, हम जब तक ऊँट पर टांग, हम ऊँट से ही चलते हैं।
5: अच्छा,
1: हमी को देख करके ऊँट पटांग शब्द बनाया गया था।
5: ऐसा है?
1: हाँ, क्योंकि हम बिना जो है वो उछल करके ऊँट पर टांग शब्द देते थे।
5: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, मतलब आपको भी कोशिश करनी चाहिए।
5: अरे नहीं भैया, कहीं गिरे तो हाथ भर टूट जाएगा।
1: नहीं तो पहले उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए हमसे।
5: हाँ, ये हो सकता है।
1: आप आइए, हम आपको ट्रेनिंग करते हैं कि ऊँट पर टांग कैसे रखनी है।
5: बहुत अच्छी बात है
1: जी। और आपको कोई समस्या?
5: समस्या तो कोई नहीं है साहब, बस आप लोगों से बात करनी थी।
1: अच्छा अच्छा, ये बात है, लेकिन आप ऊँट पर टांग रखना चाहते हैं?
5: नहीं, ऊँट पसंद है जानवर मुझे, लेकिन इतना ऊंचाई पे कौन बैठेगा साहब।
1: अच्छा, कोई बात नहीं, हम आपके लिए जानवर को छोटा कर देंगे।
0: अच्छा अच्छा, छोटी गाय नहीं आती है, एकदम छोटी छोटी रहती है पपीज की तरह। काश ऐसा होता कि ऐसे पपीज की तरह ऊँट भी आ जाती, तब तो मजा आ जाता ना।
1: हम ऊँट का
5: बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल,
1: पहले आपको ऊँट के बच्चे पर पैर रखवाएंगे, फिर थोड़ा सा वो ऊँचा होगा, थोड़ा सा वो ऊँचा होगा, बस प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप बड़े वाले ऊँट पर अपनी टांग रख देंगे।
5: जी जी जी,
1: और तब आप ऊँट पर टांग।
5: जी
1: साहब। जी सर।
5: और सिंपल जी, आप ठीक ठाक हो?
0: जी हाँ, आप लोग की दुआओं का असर है। आपकी आज सिंपल बहुत खुश है और बहुत ठीक ठाक है, बहुत सुकून
5: है। 31 दिसंबर की रात को हम पहचान ही नहीं पाए थे आपको।
0: 31 दिसंबर की रात को
5: जब कार्यक्रम था ना,
0: कहीं नहीं पहचान पाए थे।
5: बिल्कुल नहीं पहचान पाया था, जब मैं फर्स्ट टाइम आके बैठा हूँ पीछे, पहचान नहीं पाया था आपको। जब आप आई थी वापस तब पहचान पाया था आपको।
0: बताइए, इतनी जल्दी भूल जाएंगे तब तो, जब
5: नहीं,
0: आप लोग मना भी कर देंगे कि ये कोई
5: नहीं, उस दिन सिंपल जी आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, मैं पहचानी, मतलब कोई बाहर का गेस्ट आया हुआ है।
0: ओह माय गॉड, ऐसी बात है क्या? ओह थैंक यू।
5: बिल्कुल 100, यही तो बताने के लिए आपको फोन किया था।
0: पहचानी,
5: मैं मैं पहचान ही नहीं पाया जब आपने आगे बोला नमस्ते के रईस जी, तो मैं पहचान के आप हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाया था आपको।
0: देखा मतलब खूबसूरती की तारीफ दूर दूर हो रही है।
1: मतलब इसके पहले मैंने इनको जो ड्राफ्ट पिलाया, जो क्रीम लगाई, आप जान लीजिए कि मतलब पपीता का हो, गन्ने का हो, केले का, सबका रस निकाल करके तब मिला है मुंह पर।
0: हाँ अपनी पत्नी के लिए कर ले
1: जी जी।
5: अभी अभी सिंपल जी बोल रही थी ना अपने मतलब जीवन साथी के बारे में कि कौन है जो मुझको झेलेगा, कुछ नसीब होगा जो झेलेगा, इतनी अच्छी लड़की है।
1: हाँ सही बात है,
5: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि सिंपल जी मुझसे नाराज है, ऐसा मुझे लग रहा है।
1: नहीं नहीं नहीं सिंपल जी कभी
0: सिंपल नाराज, अगर सिंपल नाराज हो जाएगी उस दिन सिंपल का नाम बदल के नाराज हो जाएगा, सिंपल कभी नहीं नाराज होगी, वो भी अपनों से
1: कभी नहीं नाराज हो ही नहीं सकती।
0: मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी, हमारे एक लिसनर ने अभी जस्ट भेजा है सिर्फ आपके लिए, किसी को उनसे मिलकर इश्क हुआ, किसी को उनके अदाओं से इश्क हुआ, किसी को उनसे मिलकर इश्क हुआ, किसी को उनकी अदाओं से इश्क हुआ, ना देखा ना मिले हमें एक दूसरे को, मुझे तो उनके लफ्जों से इश्क हुआ।
5: बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब, बहुत खूब
0: विचार की तरफ से, और मैंने तुरंत कॉपी करके पेस्ट कर दिया आपके ऊपर। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया
5: शुक्रिया शुक्रिया।
0: बहुत सारे हमारे पास में लिसनर्स आए, उनकी बातें हमने सुनी, बहुत सारे कस्टमर्स आए हमारे डॉक्टर लव की, इन्होंने भी हर मर्ज की दवा दे दी है। अब डॉक्टर लव को मैं कुछ मिनट देना चाहूंगी, कुछ सेकंड देना चाहूंगी, चंद पल देना चाहूंगी, चंद क्षण देना चाहूंगी अपने कस्टमर्स, अपने लिसनर्स से वार्तालाप करने के लिए, चंद शब्द कहने के लिए, चंद प्यारे शब्द कहने के लिए, और फिर इसके बाद में आप तो देख ही रही हैं कि घड़ी की सुइयां क्या कह रही हैं। इजाजत लेने का वक्त आ ही चुका है, तो पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर लव से। कैसा लगा आपको आज हमारे कस्टमर्स से मिलके, हमारे लिसनर्स से मिलके, इनसे बातें करके?
1: मतलब जितने हमारे पेशेंट हैं सब बहुत प्यारे पेशेंट हैं।
0: कंपाउंडर को नहीं बोलेंगे?
1: कंपाउंडर, अरे आप देखिए, अब यही मैंने कहा था, सबसे ज्यादा मिठास प्रशंसा में होती है। देखिए वो नहीं रही, देखिए तुरंत आपने कह दिया, ये देखा ना,
0: देखिए जिसके लिए जो प्रिय होता है वो वही बोलता है। अब मैं आपसे पूछूं, आपके लिए कौन सा रिश्ता सबसे ज्यादा प्रिय है? सही सही दिल पे हाथ रख के बताइएगा।
1: हमारे लिए मोहब्बत वाला रिश्ता।
0: देखा देखा, बदल दिए ना, तुरंत घुमा दिए। एक स्पेसिफिक रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, एक स्पेसिफिक रिश्ता। जितने भी रिश्ते अभी तक आपके जीवन में हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे आपको रखना हो तो आप किसको रखेंगे?
1: हम अपनी माँ को रखेंगे।
0: देखा, कोई होगा वो अपनी बेटी को रखेगा, कोई होगा वो अपने पिता को रखेगा, कोई होगा अपने पति को रखेगा, कोई होगा अपनी पत्नी को रखेगा, है ना? तो डिपेंड करता है ना कि हमें किस रिश्ते को हम सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो वही डिपेंड करता है कि किस चीज में हम सबसे ज्यादा मिठास ढूंढ रहे हैं। वैसे आजकल इस घोर कलयुग में डॉक्टर लव, मैं आपको सिखाने वाली कोई नहीं होती हूँ, मैं आप लोग को बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ, लेकिन इस घोर कलयुग में अगर सबसे ज्यादा कमी किसी भी चीज की है तो वो प्यार की ही कमी है ना। तो वो मिठास अगर हम भरते जाएंगे ना, तो फिर ये घोर कलयुग कब सतयुग में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा।
1: हाँ सही बात है, ये तो बात, मोहब्बत
0: मोहब्बत अच्छे अच्छों को पिघला देती है। वही पुलिस जो जंतर मंतर पे लाठियां चार्ज कर रहे थे, ये नहीं देख रहे थे मेल है फीमेल है, 18 का है, 28 का है, 68 का है, वही रो रहे थे खड़े होके, वही खड़े होके रो रहे थे कि हमें अपनी ड्यूटी की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, वही खड़े होके पानी पिला रहे हैं, वही खड़े होके खाना दे रहे हैं। तो ये प्रेम ही तो है ना, अगर यही मर गया होता, इंसानियत ही मर गई होती, मोहब्बत ही मर गया होता, तो फिर लाठी चार्ज क्या था, ये वाटर कैनन क्या था सर, ये तो सच में बॉम्ब ब्लास्ट कर देते। हाँ। अगर इंसानियत ही ना होती तो प्यार की मिठास सब जगह होनी चाहिए, सब जगह बटोरते रहिए, सब जगह बिछाते रहिए, प्यार लेते रहिए, प्यार देते रहिए। अब डॉक्टर लव से बात करिए।
1: जी हाँ, आसमान वाले ने चाहा तो अगले शनिवार को पुनः आपसे मिलेंगे। कोई दुख तकलीफ चिंता परेशानी कष्ट मुसीबत गिला शिकवा शिकायत तमन्ना इच्छा ख्वाहिश झटका जो कुछ भी आपके पास हो उसको लिख लीजिए, और अगर आसमान वाले ने चाहा तो फिर शनिवार को मिलेंगे और आपकी समस्याओं को करेंगे दूर। अब हमें दीजिए अनुमति।
0: हाँ, सो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में और आपके अपने
1: डॉक्टर लव
0: के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को बहुत सारा मिस करना है, क्योंकि आपकी आज की फरमाइशी की महफिल को मैनेज करने वाली है, हैंडल करने वाली है, उसमें रुमानियत बिखेरने वाली है आपकी अपनी आरजे बिना, और आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को दीजिए यही इजाजत। मिलते हैं सीधे मंडे को, संडे को होगा फंडे, फंडे मीन्स हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स आप सभी को मुझे बहुत सारा मिस करना है, बहुत सारा मिस करना, गाने डेडिकेट करना, एक दूसरे से प्यार करते रहना, एक दूसरे को प्यार देते रहना, और फिलहाल चलती हूँ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये बहुत खूबसूरत सा नगमा।

0: नेवर मिस एन अपडेट।
1: ओए आज खुशी का दिन है, आया निकला मूर्त चंगा भाई, सूट पहन के बन गया दूल्हा, सूट पहन के बन गया दूल्हा, कल

0: यही की गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: कुक स्टूडियो सीजन 14।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर

0: धुन कोई भी बजे, लेकिन आज बिना के साथ आज आपकी वाली धुन बजेगी। सो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप सभी का स्वागत है आपकी फरमाइशी वाली शाम में। और आज आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए मौजूद है आपकी अपनी आरजे बीना। और सबसे पहली फरमाइश हम लोग लेते हैं मुस्तफ़ा की, और चलिए देखते हैं कौन सा गाना है जो मचाने वाला है धमाल। तो चलिए गाना है आज अभी इसी वक्त, हाँ आज इसी वक्त अभी मैं आप लोग के साथ ये शाम सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हूँ, और आप भी मेरे साथ इस शाम के कहते हैं ना कि साक्षी बन गए हैं। तो बिल्कुल साक्षी बने रहिए हर जगह हर तरफ, लेकिन हमारे साथ हमारे अपने लिसनर्स मौजूद हैं।
1: इसी वक्त ये, आज अभी इसी वक्त ये, मुझको पता चला है।
2: क्या पता चला है?

तो चलिए अगले गाने की ओर रुख करते हैं। अगला गाना है मुझे तुमसे हुआ है प्यार, बढ़िया गाना है। अभिराज पांडे NCR दिल्ली से इन्होंने फरमाइश किया है, बहुत सुंदर गाना है। तो चलिए सुनते हैं, और मैं तो यही कहूँगी कि ये फरमाइशों का जो कारवां है वो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जो हमारे दिल का जो रिश्ता है वो बिल्कुल अटूट है। और अटूट रिश्तों के लिए एक खत तो लिखते ही हैं। क्या खत लिखते हैं?

मांगी रब से जब मोहब्बतें मैंने, उसने मुसीबतों का पहाड़ दिया। बड़े चाव से जब उगाए फूल इश्क के, उसने बागों को ही उजाड़ दिया। मांगी यार से जब निशानी कोई, उसने गम दिया तो मैंने गाड़ दिया। सालों बाद सोचा संदेशा भेजे उन्हें, तो एक खत लिखा।

तो चलिए अगले गाने की ओर रुख करते हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतरी है, अनिल वर्मा सैदापुर से इनकी फरमाइश है। क्या बात है,

0: गुले जहां जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा सा गाना सुनने के बाद अब अगले गाने की बारी है और गाना है शिवम तिवारी, बदलाविया। कौन सी जगह है भाई ये, कौन सी जगह है? गाना बड़ा अच्छा है और बदवालिया बदवालिया बड़ा अच्छा सा गाना है। और चलिए गाना सुन के एंजॉय करते हैं। भंवरे ने खिलाया फूल फूल प्रेम रोग फिल्म से, और मेरी फेवरेट फिल्म है ये, ऋषि कपूर, पद्मिनी, लता मंगेशकर की आवाज़ में, सुरेश वाडकर की आवाज़ में। ये फिल्म एक आइकॉनिक फिल्म थी अपने टाइम की, 1982 में इस फिल्म ने वो रिकॉर्ड तोड़े थे जो अच्छी अच्छी फिल्में नहीं तोड़ पाई थी। लेट्स एंजॉय दिस फिल्म सॉन्ग।

तो अगली फरमाइश के लिए हम लोग रुक कर चुके हैं। गाना है छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। ओ हो क्या बात है, ऐसी ऐसे अगर आप लोग साथ देने लगेंगे ना तो भाई हो चुका काम। तो चलिए जुगल की फरमाइश पे सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा कि ये गाना और ज़्यादा ख़ास है। क्यों? क्योंकि इस गाने के बोल ही हैं कुछ ऐसे।

तो बहुत पर मतलब आपकी पसंदीदा वाली फरमाइश सुनने के बाद अब बारी है निशा की फरमाइश का गाना सुनने की, और गाना है बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतज़ार है आजा। क्या बात है, तो कोई इंतज़ार करके ये गाना अगर आपको गा के सुना दे तो समझ लीजिए इंतज़ार सच्चा है।

तो चलिए, आने से, आपके आने से घर में कितनी रौनक है ये मुझे नहीं पता है कि नहीं, ये तो गाना सुनने के बाद पता चलेगा। फरमाइश है बबीता जी।

अनुष्का आपसे मैं बोलूँगी आप फरमाइश हिंदी गाने की करें, क्योंकि भोजपुरी गाने इस टाइम प्ले नहीं होते. आपको भोजपुरी गाना सुनना है तो आप थर्सडे को 6-7 बजे से लेकर 7:45 तक सुन सकते हैं.

कलियों ने घूंघट खोले, क्या बात है यार, कलियां घूंघट खोलेंगी तो सोचिए कितना खूबसूरत नजारा होगा। आहा, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। तो चलिए अगले गाने की ओर रुख कर लेते हैं। अगला है गाना आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, और गाने की फरमाइश है हमारे लिसनर सत्या की, सत्या त्रिपाठी। चलिए आपकी फरमाइश का गाना सुनते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। फिलहाल बहार बनके कोई आया कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप लोग हमारी जिंदगी में, हमारे चैट रूम में

तो चलिए अगले गाने की ओर रुख करते हैं, जो कि है हमारे लिसनर नागेश्वर की फरमाइश का गाना, बड़ा प्यारा सा गाना है, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। क्या बात है, लग रहा है किसी को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है।

0: आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
4: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
5: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

तो चलिए वापस से अपनी फरमाइश शो का जो दौर है उसको बरकरार करते हैं और देखते हैं कौन सा गाना है जो प्ले करने के लिए हमारे पास रेडी है। ओल्ड सॉन्ग प्ले करें लता जी का। ओके, लता जी का कोई भी गाना शशि सुनना चाहती हैं, तो चलिए शशि के लिए प्ले करते हैं लता की आवाज़ में।

तो चलिए अगले गाने की ओर रुख करते हैं। बहुत प्यारा सा हमने गाना सुना और गाना है मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिश तानी। और आज की जो

सो लड़की याद आती है तो हमेशा कुछ कह जाती है यादें, वो ये कह जाती हैं कि आखिर कौन था जो उसको उससे जुदा कर रहा है। फिलहाल आपकी भी कोई आदत हो सकती है या उसकी कोई आदत, फिलहाल कौन सी आदत किसको जुदा करेगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद आप लोग अपेक्षा कर रहे होंगे कि नए जो हमारे कहते हैं ना कि शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है। तो सवालों का जवाब आपको सबको खुद ही पता होना चाहिए। प्रहलाद जोशी हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं और सबको इनके बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं और आगामी शिक्षा में जो परिवर्तन होंगे वो देखने को मिलेंगे। चलिए एंजॉय करते हैं गाना।

तो भाई अगला गाना हम लोग सुनेंगे, फरमाइश है रवि की, गाना है भीगे होठ तेरे। क्या बात है, शिवम लिखते हैं कि कुछ गीत सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक उतर जाते हैं, कुछ आवाजें खामोश दिल को भी एहसासों से भर जाती हैं। भवरे ने खिलाया फूल सुनकर आपने वही एहसास जगा दिया। आर्जबीना जी, आपकी आवाज़ ने आज फिर दिल को मुस्कुराना सिखा दिया। इतनी खूबसूरत गीत के लिए शुक्रिया दिल से, आपने इस शाम को यादों के काबिल बना दिया। ओह क्या बात है शिवम, और थैंक यू फॉर सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट।

0: चलिए अगली फरमाइश की ओर रुक करते हैं। फरमाइश है जरा पर्दा हटा दो,
1: पर्दा हटा दो।
0: और फरमाइश है आशु जी की, बहुत ही बेहतरीन सी फरमाइश, सुन के दिल खुश हो जाने वाली फरमाइश। ऐसे एंजॉय करते रहिए अपने गाने।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल आज है शनिवार और इस दिन का इंतज़ार भाई रहता है क्योंकि ये हमारा सैटरडे स्पेशल होता है। गज़लें हमारी, गीत आपके। तो पहले आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और इसके बाद फिर आपसे सुनेंगे प्यारे से गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे भाई जो श्रोतागण हैं वो भी तैयार हो जाएं अपने खजाने को लेकर के। गजलें हमारी और गीत आपके में आप सभी का इस्तकबाल है। और आइए एक प्यारी सी गजल के बाद रुख करेंगे आपके गीतों की तरफ। फिलहाल ये प्यारी सी

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी रेडियो

0: जी हाँ, तो गजलें हमारी हो गई, एक प्यारी सी गजल हमने आपको सुनाई, और अब बारी है भाई आपकी, गजलें हमारी और गीत आपके। तो देखते हैं भाई कि आज इस कार्यक्रम की आधारशिला, इस कार्यक्रम की नींव कौन रखता है, वो पहले कौन से श्रोता होंगे जो आज बनेंगे वक्ता। शनिवार का दिन बहुत ही प्यारा सा दिन, बहुत अच्छे अच्छे नाम दिखाई पड़ रहे हैं हमको। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुशीब को भी हम देख पा रहे हैं, आशु मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं भाई, रवि जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, और अनिल लदा चौरस पर आपको शुभ संध्या आपको भी। तो शनिवार के इस प्यारे से कार्यक्रम जहाँ पर दो स्वर मिलते हैं, एक वो स्वर होता है जो हमने सुना होता है और एक वो स्वर होता है जो आपके कंठ से निकलता है, तो ये दोनों मिलते हैं और इस दोनों के मिलन को संगम का नाम दे सकते हैं हम, कि कभी हमने सुना और जिसके बाद हमने अपने कंठ से अपने गले से गाया। तो जी, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, लब पे मुस्कान बड़ी देर के बाद आई है। जी हाँ, तो ये प्यारी सी मुस्कान चलती रहे, ये महफिल सचती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि भाई शनिवार के इस कार्यक्रम में आप भी प्रतिभागी होते हैं। तो देखते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम की प्यारी सी शुरुआत कौन करता है। सुनते हैं आपको, आपकी गजलों को। जी हाँ, और देखिए फोन आ चुका है मेरे पास, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार मन्नू भाई।
0: अरे दादा चरण स्पर्श, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो श्री अनिल बनर्जी।
1: अरे आप कैसे गलत हो सकते
0: हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है
0: जी। तो दादा आज मतलब रफी से शुरू करेंगे या किसी और से?
1: गाना पड़ेगा आज।
0: अब आपने फोन कर दिया है तो
1: चलिए, तो मैं शुरू ही कर देता हूँ
0: जी। और हमने बुधवार को नहीं सुना था सविता जी को, तो
1: नहीं, उनकी एक्चुअली तबीयत खराब चल रही
0: है। अच्छा अच्छा, ये बात है, वही हमने सोचा कि उनकी अनुपस्थिति किसी विशेष कारणों से ही।
1: नहीं नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। और जिस दिन आप मतलब था ना, उस दिन उसी दिन बुधवार से तबीयत पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई है।
0: चलिए ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द उनको एकदम सीख।
1: अरे आप लोगों का, आप लोगों की शुभकामना रहेगी।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मैं सोच रहा हूँ कि रफी साहब का ही गाना सुना दूं
0: जी,
1: वादियाँ मेरा दामन।
0: रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम।
1: एक्चुअली अभी मैंने सुना हूँ, इंडियन आइडल में एक बंदा गा रहा था। तो शायद अगर शब्द तो कहीं भूले तो भाई क्षमा चाहूंगा।
0: नहीं नहीं दादा, ये मत कहा कीजिए, नहीं तो हमको खुद पर शर्मिंदगी होती है।
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ
0: जी।

0: हाँ सर, हेलो
1: जी, मैं सुन रहा हूँ।

0: थैंक यू।
1: क्या बात है दादा, एकदम हूबहू उतार दिया आपने।
0: नहीं, लेकिन कोशिश किया
1: जी। नहीं, लेकिन वास्तव में मतलब वो मस्तानी अंदाज, वो मस्ताने वाला अंदाज बहुत जबरदस्त रहा।
0: चलिए, धन्यवाद आपको
1: जी।
0: एक्चुअली अभी एक गाना सुनता हूँ मैंने
1: जी,
0: तो मैंने कहा इसी गाने गा दूं, शायद मैंने कोई अंतरा ना भूला हूँ तो सॉरी।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें।
0: चलिए, धन्यवाद सर
1: जी। प्रणाम दादा,
0: खुश रहिए
1: जी। हाँ भाई, तो एक गजल के बाद एक गीत, अब आइए आपको सुनाते हैं एक फिर प्यारी सी गजल, और गजल के बाद फिर सुनेंगे आपसे एक प्यारा सा गीत। सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, गजलें हमारी, गीत आपके।
2: गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए।

0: जी हाँ, चिट्ठी आई है और जो अपने वतन से दूर है उनके लिए जब ये गजल बजती है तो आहा, वो वे आंखें शायद कभी खाली नहीं रह पाती होंगी और कहीं ना कहीं कुछ मोती जैसे आंसू झिलमिला उठते होंगे। कौन हमारे साथ भाई, हमारे पास एक फोन भी आ चुका है और देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
1: हेलो, हाँ सुरेश कुमार।
0: अरे दर्ज कुमार जी, प्रणाम।
1: भैया
0: कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक है भैया।
0: मौसम का असर लगता है को दिखाई पड़ रहा है।
1: कमलेश्वर को मेरा नमस्कार है
0: जी। तो आज आपसे क्या सुनने वाले हैं शनिवार के खास वाले प्रोग्राम में?
1: एक गीत है फिल्म बचपन का
0: जी,
1: संजीव कुमार के दोनों बेटे और पत्नी नाई से जाते हैं अपने मायके को
0: जी।
1: तो वो जो है नाव डूब जाती है, दोनों बच्चे डूब जाते हैं, उनकी पत्नी भी डूब जाती है। तो जो है गमखार में रहते हैं और वो खिलौने बेचने लगते हैं कि कोई बच्चा खिलौना लेने खरीदने आएगा तो मैं अपने बच्चों को उसी चेहरे में देख के जी लूंगा। तो वो ये गीत गाते हैं, खिलौने बेचते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत सुना आपने।
1: आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आओ मेरे आँख के तारो कहाँ गए मेरे प्यारो। ओ आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आओ मेरे आँख के तारो कहाँ गए मेरे प्यारो। शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, बरसा घटाओं से लाखों मन पानी। मेरी तरह तुम कभी रोए हो ओ सावन के नजारो, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आओ मेरे आ

भरी है कलियों से हर बाग की डाली, भरी है कलियों से हर बाग की डाली, मेरी तो झोली में तो फूल थे खाली, छीन लिए वो भी कहे तूने ओ बेईमान बहारो, आया रे खिलौने वाला फिर खिलौने लेके आया रे आओ मेरे आँख पिता।

देखो मैंने गुस्से की शादी है रचाई, देखो मैंने गुस्से की शादी है रचाई, मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई, गोरी चली बाबुल के घर से डोली ले आओ कहारो, आया रे खिलौने वाला के खिलौने लेके आया रे आया रे, आओ मेरे आँख पे तारो कहाँ गए मेरे प्यारो।

सुरेश कुमार उर्फ दर्द कुमार जी और आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे। और फिर भाई गीत आपके हो चुके हैं तो फिर हम चलते हैं बढ़ते हैं अपनी गज़लों की ओर। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल, आवाज़ है कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब की। जी हाँ, तो आइए अब सुनाते हैं आपको प्यारी सी गज़ल और फिर इसके पश्चात आपसे सुनते हैं कोई गीत। फिलहाल ये गज़ल।

0: जी हाँ, गुलाम अली की साहब की एक ऐसी गजल जो कहीं खो सी गई थी, ढूंढ कर लाए और आपके लिए निकाला। और जी हाँ, हमारे साथ कोई जुड़ चुके हैं भाई, देखते हैं कौन है हमारे साथ इस गजल के बाद। हेलो हेलो एक मिनट जरा रुकिएगा आप। हेलो
1: हेलो
0: जी जी हेलो
1: हाँ जी, शुभ संध्या मनु जी।
0: जी शुभ संध्या,
1: मैं तेज नारायण शुक्ल।
0: अरे अरे अरे चरण स्पर्श,
1: बहुत ढेर सारा आशीर्वाद।
0: बहुत दिनों के बाद आपको सुनने का अवसर मिला है।
1: नहीं, मैं तो असल में बुधवार को मैं कॉल कर रहा था लेकिन लग नहीं पाया, और जब लगा तो समय ओवर हो चुका था, तो इस वजह से
0: 5 मिनट मैंने बढ़ा दिया था, 9:35 तक कार्यक्रम गया था उस दिन।
1: हाँ नहीं नहीं बहुत लेट हो गया था उस दिन, बहुत लेट हो गया था, और मैं मिलाना नहीं चाह रहा था, फोन तो मिल गया था लेकिन मैं मुझे लगा कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है।
0: चलिए खैर, उस दिन जो नहीं हो पाया वो आज हो जाएगा।
1: नहीं, आपने बहुत शानदार गजल अभी सुनाई है, तबीयत एकदम फ्रेश हो गई।
0: हाँ मतलब ये बहुत खोई हुई से उनकी गजल है जो आजकल नहीं लोग सुन रहे, बहुत पुरानी, बहुत खोई हुई।
1: अरे बहुत बढ़िया गजल थी, बहुत बढ़िया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसके लिए। अरे तो हीरे की कद जो है जौहरी करता है, तो गजल अच्छी थी इसकी कद।
1: अरे बस आप बहुत पारखी हैं असल में।
0: नहीं नहीं, पारखी आप लोगों ने बनाया है, मतलब हम न कहा पारखी।
1: आपकी वजह से ही मैं खिंचा चला आता हूँ, मतलब यहाँ नहीं तो मतलब जैसे ऐसा है कि अब हैबिट है, ऑनलाइन कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं उसमें अवसर प्राप्त होता है पाठवाच करने का
0: जी,
1: तो आप समय मैं व्यर्थ नहीं करता हूँ
0: जी।
1: थोड़ा सा मैं आपसे इसका थोड़ा आउटलाइन देना चाहता हूँ कि थोड़ा ये जो मैंने लिखा है
0: जी,
1: ये नई पीढ़ी में आजकल ये ट्रेंड है, और इस ट्रेंड का क्या मतलब, सबका नहीं लेकिन कुछ परसेंट हस्र जो होता है वो अभी आपको इस कविता में पता चलेगा। ये हालांकि मैं इस विधा पर लिखता नहीं हूँ लेकिन कुछ लोगों ने कहा तो मैंने कोशिश की है
0: जी, एक
1: तो मैं शुरू करता हूँ।
0: जी जी
1: शुरू करता हूँ
0: जी, निसंदेह
1: ये प्रेम की इंतहा है
0: जी,
1: जो आजकल नई जनरेशन में है वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि जमाना छोड़ दे मुझको, जमाना छोड़ दे मुझको, मुझे बस याद रखना तुम, ख्वाबों में ख्यालों में बस अपने पास रखना तुम, मेरे जज्बात का एहसास का यही बस मोल दे देना, जो मेरी याद आ जाए तो दिल के पास रहना।
0: क्या बात है, क्या बात है
1: जी, धन्यवाद।
0: क्या बात है?
1: मेरा किरदार मत देखो, मेरा किरदार मत देखो, ये तो छलावा है, बहा जो आंख से आंसू वो भी दिखावा है, मेरा तो दिल भी नहीं अब पास में मेरे अपने, फकत मैं हूँ तेरी यादें और साथ में है सपने।
0: क्या क्या बात है, क्या क्या पराकाष्ठा है
1: जी। मैं खुद को भूल बैठा हूँ, कहाँ जाना नहीं मालूम, मैं खुद को भूल बैठा हूँ, कहाँ जाना नहीं मालूम, मेरी मंजिल भी तुम ही हो, मेरा मकसूद भी हो तुम।
0: क्या बात है
1: जी जी जी। तो अब ये समझ लीजिए कि ये जिसका भी दर्द है उसको मंजिल मिल गई। अब इस मंजिल जी, मंजिल मिलने के 2-4-10 साल बाद क्या होता है, अब आगे की कुछ लाइनें सुनिए, ये मकता है कि तमाम उम्र में तलाश करता रहा खुद को तुम्हारे भीतर। ये वही है जो अभी जिसकी आप सुन रहे थे, जिसका दर्द सुन रहे थे
0: जी।
1: अब वो 10-12 साल जब बीत जाते हैं तो ऐसा होता है कि तमाम उम्र में तलाश करता रहा खुद को तुम्हारे भीतर, और तुम भी करते रहे बस यही इसी तरह, और जिंदगी की शाम हो गई।
0: क्या बात है,
1: दोनों बस खोजते रहे खुद को एक दूसरे के भीतर, दोनों खोजते रहे बस खुद को एक दूसरे के भीतर, और बहुत जल्दी निकल आए दिल के दरवाजे से बाहर।
0: क्या बात
1: बस
0: है?
1: देख जी, बस देखते रहे एक दूसरे को, और उम्र तमाम हो गई।
0: क्या बात है
1: जी, बस ये जो
0: क्या बात है, नहीं वास्तव में भाई, वास्तव में बहुत ही मंथन करने के बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं।
1: असल में ऐसे केसेज होते हैं
0: जी।
1: ये चीजें हैं जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें थी, उससे हट के जो आजकल हो रहा है
0: जी, सही।
1: तो बस यही है कि मैक्सिमम एक दूसरे को ना समझ पाना, और बाद में चीजें ओपन होती हैं तो फिर ऐसा ही कुछ होता है,
0: ऐसा ही।
1: अब जी, अब एक छोटी सी कोशिश, दो चार लाइन मैं भी कोशिश करता हूँ
0: जी,
1: हालांकि गाता नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ
0: जी।
1: समय तो अभी है ना, अभी
0: जी जी जी जी जी
1: जी, दो तीन मिनट समय है आप
0: जी।
1: एक मिनट ये सफर फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं
0: जी।
1: जिंदगी का सफर ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं,

मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, जाएंगे पर किधर पर किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं।

0: नहीं जिनको खेलने से पहले खिजा खा गई। ए परेशान नजर तक गए चाह कर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर एक ऐसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। धन्यवाद।
1: क्या बात है क्या बात है। और प्यार की आपने बात की तो मुझे याद आया कि मतलब एक तरीके का प्यार ये भी हो सकता है कि मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ।
0: अरे वाह।
1: मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए।
0: अरे साधु साधु।
1: मतलब हम चाहेंगे कि अगर आपकी गीतों में इस विचार को कहीं अगर जगह मिले तो अवश्य रखें।
0: और रखेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: मतलब ये विचार है कि हाँ आंसुओं से लिख रहे हैं ताकि हमारे बाद कोई इसको पढ़ ना पाए, उसका नाम भी ना बदनाम होने पाए और हम उसके साथ रहे।
0: बिल्कुल। ये लाइन एक बार रिपीट करिए तो मैं फिर आपको बुधवार को इसको ऐड करके सुनाऊं। मैं
1: उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ
0: जी जी जी
1: कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए।
0: अरे वाह।
1: ये आपकी देन है। मतलब आप जैसे लोगों से मिलते
0: अरे हैं। नहीं अरे अरे तो, अरे ऐसा मत कहिए, आप बहुत जानकार हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जानकार नहीं, बस आप लोगों की चरण धूलि मिलती रहती है प्रभु तो कुछ मुंह से निकल जाता है।
0: मनु जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गाना नहीं चाहिए।
1: नहीं आप बहुत अच्छा गाते हैं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, बहुत प्यारा गाया आपने और ये सत्य है कि आपको गाना चाहिए।
0: ऐसे बिना तैयारी के मैंने गाया।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, जो हृदय से निकलता है वो अपने आप अच्छा होता है। और जब स्वामी हरिदास ने माँ मीरा से कहा था कि तुम्हारा भजन राग के बाहर था,
0: अरे
1: तो माँ मीरा ने उत्तर दिया था कि आप सही कहते हैं स्वामी हरिदास जी, मेरा भजन राग के बाहर था लेकिन अनुराग के बाहर नहीं था।
0: अरे वाह।
1: तो राग जो है वो रिझाता है इंसान को और अनुराग रिझाता है परमात्मा को। तो हम राग से बाहर हो जाएं लेकिन अनुराग से बाहर ना हो, ये महत्वपूर्ण।
0: अरे आप बहुत गहरे आदमी हैं, बहुत गहरा व्यक्तित्व है आपका।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं प्रभु, बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
0: जी जी जी।
1: बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमें कुछ सिखाते रहिए।
0: जी जी धन्यवाद।
1: चरण स्पर्श।
0: अरे आशीर्वाद आशीर्वाद।
1: जी हाँ भाई, तुम्हारे साथ श्री तेजनारायण शुक्ल जी हैं और इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मुस्तफा सऊदी जी रहे भाई हमारे साथ, नताल्या जी भी रहीं और अनोखी शर्मा जी रहीं भाई मुस्तफा जी सऊदी से और जी। और आइए अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त हो चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल रविवार है, ठीक 1 बजे आपसे मुलाकात होगी ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: नई मान्यताओं के रास्ते पर चले आ रहे आकाश को एक नए दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया।
3: हाय, आई एम आकाश। कैसे कोई एक हादसा हमारी पूरी सोच बदल कर रख सकता है, ये मुझे उस दिन महसूस हुआ। माफ कीजिएगा, दरअसल उस रात
2: उस सुनसान रास्ते पर खड़ा आकाश एक अजीब सी असमंजस में था, पर आखिर वो इतनी देर रात घर से इतनी दूर उस सुनसान रास्ते पर कर क्या रहा था? इन सभी सवालों के जवाब उस खत में थे जो आकाश को इस रात से एक हफ्ता पहले मिला। ये खत उसके दोस्त अमित का था। अमित जो एक ही कंपनी में आकाश के साथ काम करने की वजह से उसका सबसे अच्छा या ये कहें उसका इकलौता दोस्त बन गया था। अमित की शादी तय हो गई थी, इसीलिए वो 20 दिन की छुट्टी लेकर राजस्थान में अपने गांव चला गया था। गांव जाते हुए वो आकाश को उसकी शादी में आने के लिए कसम देकर गया था, क्योंकि जब भी अमित उसे उसके गांव चलने के लिए कहता था तो आकाश टाल जाया करता था। वो शहर में ही पला बड़ा था, गांव में कुछ दिन क्या, कुछ पल बिताने का ख्याल ही उसे डरा देता था। पर उस खत में जो आकाश को अमित ने अपनी शादी के कार्ड के साथ भेजा था, उसे कसम के साथ धमकी दी थी कि अगर वो नहीं आया तो वो शादी नहीं करेगा। ये जानते हुए कि ये सिर्फ एक धमकी है, फिर भी आकाश अमित की बात को टाल नहीं सकता था। इसलिए जिस सुबह अमित को यह खत मिला, उसी शाम आकाश ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी लेकर अमित के गांव के लिए रवाना हो गया। अमित के गांव में रेलवे स्टेशन नहीं था। उसके गांव के सबसे करीब का स्टेशन 80 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां से आकाश को 2 बस बदलकर अमित के गांव तक पहुंचना था, और इसी वजह से अमित ने रेलवे स्टेशन से एक कार हायर करने की सोची। इसके लिए अमित ने उस शहर के एक ट्रैवल एजेंट को फोन किया और उसे उस गांव तक जाने के लिए एक अच्छी कार की व्यवस्था करने को कहा। पर उस गांव का नाम सुनते ही ट्रैवल एजेंट की आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट आ गई। पहले तो उसने बहुत आनाकानी की, पर आकाश ने उसे दुगने पैसों का लालच देकर राजी कर लिया। पर ऐसा क्या था उस गांव में जिसका नाम सुनकर उस एजेंट की आवाज में डर भर गया था। ट्रेन में सारे रास्ते आकाश यही सोचते आ रहा था। आकाश की ट्रेन को वैसे तो शाम तक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए था, पर किसी कारण आकाश की ट्रेन कुछ घंटे लेट हो गई थी। पर ये कुछ घंटे आकाश के लिए बहुत भारी साबित हुए, क्योंकि शाम के 7 बजे आने वाली ट्रेन स्टेशन पर करीब 10 बजे पहुंची। छोटा स्टेशन और रात होने की वजह से प्लेटफॉर्म खाली था। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आदमी के नाम पर एक बूढ़ा सा स्टेशन मास्टर अपने केबिन में एक चेयर पे कुछ यूं पड़ा हुआ था, मानो अपने आखिरी दिन गिन रहा हो। प्लेटफॉर्म पर शायद बिजली नहीं थी, रोशनी के लिए सिर्फ एक लालटेन टंगी हुई थी जिसके आसपास कुछ कीड़े मकोड़े मंडरा रहे थे। आकाश बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहा था कि अचानक आकाश के कंधे पर एक हाथ आकर टिका, जिसकी वजह से आकाश एकदम से चौंक गया।
4: मैं सच में काफी डर गया था। उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अचानक एक हाथ का यूं पीठ पर आना, सच में ये काफी डरावना अनुभव था। पर मुझे क्या मालूम था कि ये तो बस एक शुरुआत थी।
2: लालटेन की हल्की रोशनी की वजह से आकाश को काफी पास आकर उस आदमी को देखना पड़ा जब गौर से आकाश ने उसको देखा तो पाया कोई 30-35 साल का व्यक्ति सर पर टोपी पहने खड़ा है, जो आकाश के चौंकने की वजह से शायद खुद भी डर गया था। उसने बिना किसी झिझक के आकाश को बोला, आप आकाश ही है ना? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं, आपकी ट्रेन काफी लेट हो गई। आकाश को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि इस रात के अंधेरे में पहली बार में ही उस ड्राइवर ने आखिर आकाश को पहचान कैसे लिया। पर जैसे उस ड्राइवर ने खुद उसके दिल की बात पढ़ ली हो, वो अपने आप ही बोला, क्या साहब यही सोच रहे हैं ना कि मैंने आपको कैसे पहचाना? अरे इतनी रात इस जगह शायद ही कोई आए, लोग तो इस जगह दिन में भी आने से डरते हैं, और जिस गांव में आप जा रहे हैं वो तो। इतना कहते ही अचानक वो रुक गया, जैसे अगर वो आगे कुछ कहता तो कोई कयामत आ जाती। उसने आकाश का बैग डिग्गी में रखा और गाड़ी में आकर बैठ गया। आकाश ने पीछे बैठे हुए ही ड्राइवर की हरकतों पर गौर किया। वो बहुत सहमा हुआ सा था। उसने जेब से कुछ निकाला और कार के डैशबोर्ड पर रख दिया। कार की लाइट्स जलने पर आकाश ने देखा कि वो हनुमान जी की एक फोटो थी, जिसको वो कुछ इस तरह प्रणाम कर रहा था मानो किसी जंग पे जा रहा हो।
3: वो ड्राइवर बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ जो उसे इतना डरा रहा था। पहले वो ट्रेवल एजेंट और अब ये ड्राइवर, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था ये सब कुछ देखकर। सच कहूं अब तो मैं भी थोड़ा डरने लगा था।

0: गाड़ी शुरू हुई और चंद ही मिनटों में उसकी गाड़ी स्टेशन से निकलकर हाईवे पर आ गई और बाहर थोड़ी बहुत रोशनी भी जैसे कहीं अंधेरों में ही गुम हो गई। अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ी काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। जैसा सन्नाटे का आलम बाहर था उससे कहीं गहरा उनकी गाड़ी में था। ड्राइवर को तो जैसे सांप सूंघ गया था, उसकी जबान को जैसे लकवा मार गया था, बस माथे से पसीना बहे जा रहा था। अब आकाश ने चुप्पी तोड़ी और ड्राइवर से बात करना शुरू की। यहां वहां की बात करने के बाद आकाश ने ड्राइवर से पूछा, इस जगह ऐसा क्या है जिसकी वजह से एजेंट उसे पहले गाड़ी देने से मना कर रहा था, और वो क्या रहस्य है जो वो प्लेटफॉर्म पर कहता कहता रुक गया था। ड्राइवर ने डरते हुए बताया कि इन सारी जगहों पर आत्माओं और चुड़ैलों का कब्जा है, खासकर वो जिस गांव जा रहा है वहां तो इंसानों से ज्यादा आत्माएं बसती हैं। पुराने समय में हुई लड़ाइयां, सती हुई औरतों, हाईवे पर आए दिन होते हादसों से मरे हुए लोगों की आत्माएं इस जंगल और आसपास के गांव में सालों से डेरा जमाए हुई हैं। इन्हें कई बार यहां के लोगों और हाईवे से गुजरते यात्रियों ने अपनी आंखों से देखा है। कई बार तो ये बहुत ही खतरनाक रूप इख्तियार कर लेती हैं, और एक बार किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसके मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। आकाश उस ड्राइवर की बातें किसी डरावनी कहानी की तरह सुनकर बस मजे ले रहा था। वो इन बातों को तब भी नहीं मानता था और अब भी नहीं। उसका मानना था कि ये बातें सिर्फ लोगों का वहम होती हैं और कुछ नहीं। ड्राइवर की बातें सुनते सुनते पता नहीं कब आकाश की आंख लग गई और वो गहरी नींद में चला गया। पर अचानक ही रात 2 बजे एक झटके ने उसकी नींद तोड़ दी। ड्राइवर ने बताया कि शायद गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। अंदर इंतजार करने के बाद आकाश बाहर निकला। ड्राइवर अभी भी गाड़ी सुधार रहा था। पूछने पर उसने बताया कि गाड़ी में कुछ बड़ी गड़बड़ी आ गई है जिसकी वजह से शायद 2 घंटे से भी ऊपर लग जाए। गांव अभी भी 10 किलोमीटर की दूरी पर था। चारों ओर जंगल ही जंगल था। रास्ता सुनसान था। रोशनी की एक किरण भी ना थी। चांद की हल्की रोशनी की वजह से सिर्फ सड़क ही दिखाई पड़ रही थी। अब आकाश को थोड़ी प्यास लगी, पर जितना पानी था वो रास्ते में पी चुका था। ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि यहां से करीब 1.5 किलोमीटर पर एक ढाबा है। आकाश ने ड्राइवर को कहा कि वो पैदल ही उस ढाबे तक जा रहा है, गाड़ी ठीक हो जाए तो उस गाड़ी को वो ढाबे पे ही ले आए। ड्राइवर ने आकाश को बहुत मना किया कि यूं इतनी देर रात इस जगह अकेले रास्ते पर जाने का अंजाम काफी भयानक हो सकता है। आसपास के जंगलों में कई आत्माएं रहती हैं, पर आकाश कहां मानने वाला था। वो ढाबे की ओर बढ़ चला। सुनसान रास्ते पर आकाश बढ़े जा रहा था। आसपास झाड़ियों के अलावा और कुछ न था, जिनमें से जंगली जानवरों और सियारों की रोने की आवाज आ रही थी। वो जहां तक नजर डालता उसे सिर्फ अंधेरा और जंगल दिखाई पड़ता। तभी अचानक उसे बीच सड़क पर सफेद कपड़ों में कोई नजर आया। उसे ये काफी अजीब लगा। पास जाने पर उसने देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी हुई है। शायद उसका एक हाथ भी नहीं था। आकाश ने पास जाकर उस लड़की से पूछा कि वो इतनी रात इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही है। लड़की ने कहा कि वो यहीं रहती है और अक्सर भटके हुए लोगों को देखकर उनकी मदद के लिए आ जाया करती है। आकाश को यह बात बड़ी अजीब लगी। अब वो सफेद कपड़े पहने लड़की आकाश के साथ साथ उस सुनसान अंधेरी सड़क पर चलने लगी। रास्ते में आकाश ने उससे पूछा कि उसके एक हाथ को क्या हुआ, पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस किसी लाश की तरह चुपचाप आकाश के साथ चलती चली जा रही थी। आकाश ने फिर उससे पूछा कि उसका नाम क्या है और वो कहां रहती है, पर इस बार भी उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। वो बस खामोशी से उसके साथ कदम से कदम मिलाए चली जा रही थी। आकाश ने अपने बैग में हाथ डालकर झाड़ियों की फोटो खींचने के लिए कैमरा बाहर निकाला, पर उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा,
1: नहीं।
0: आकाश ने उसकी बात नहीं मानी और वो उसके मना करने पर भी कैमरे से फोटो निकालने की कोशिश करने लगा, पर इस बार उस लड़की ने उसका हाथ जोर से जकड़ लिया और बोली,
1: मैंने तुम्हें मना किया ना, कोई फोटो नहीं।
0: उस खौफनाक रात में नाजुक सी लड़की का यूं इतनी ताकत से उसके हाथ को जकड़ लेना, अब सच में आकाश के अंदर भी दहशत पनपने लगी थी। इस बार आकाश ने कैमरा बैग के अंदर डाला और खामोशी से उस लड़की के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक रात के उस सन्नाटे को चीरती कुछ आवाज आकाश को सुनाई दी।
2: आओ, आओ, आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, आ जाओ।
0: जो दूर झाड़ियों से आ रही थी,
2: आओ।
0: वो आवाज सुनकर आकाश का दिल दहल उठा, पर उसे कुछ नजर ना आया और वो लड़की बिना किसी हलचल के बस आगे बढ़ती जा रही थी। आकाश समझ गया था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। धीरे वो आवाज और तेज हो गई।
2: आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, आओ, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ।
0: ये आवाजें सुनकर आकाश सच में डर गया और अचानक ही उन झाड़ियों में उसे तीन औरतों के चेहरे नजर आए। वो बेहद डरावने थे। वो औरतें अपने हाथों से आकाश को अपने पास बुला रही थी और हंस रही थी।
3: आ जाओ, आओ हमारे पास आओ।
0: अब आकाश समझ चुका था कि ट्रैवलिंग एजेंट और ड्राइवर का डरने और इस गांव में ना आने के लिए कहने का क्या कारण था। उसने गौर किया कि इन सभी बातों का उस लड़की पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। वो बस बढ़ती चली जा रही थी। वो आवाजें लगातार आ रही थी जिन्हें सुनकर अब आकाश बेहोश सा होने लगा था। वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि उस लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। और जैसे पल भर में आकाश के होश अपने आप वापस आ गए, वो आवाजें भी अब बंद हो गई। अब आकाश को दूर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शायद ढाबा आ चुका था। वो लड़की अचानक रुक गई और वापस जाने लगी, पर न जाने क्यों वो लौटी और आकाश के पास आई। पास आकर अपने होंठ आकाश के कान के पास ले गई और बोली,
1: आकाश, हर आत्मा पूरी नहीं होती।
0: आकाश ये सुनकर बुरी तरह कांप गया। उसने देखा वो लड़की वापस उसी रास्ते पर लौट रही है। आकाश की नजर जब सड़क की ओर गई, उसने देखा कि उस लड़की का धड़ तो दूसरी ओर था पर पैर उसकी तरफ। उस लड़की के उल्टे पैर देखकर आकाश बीच सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा।
4: The Haunted Place। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं जहां मौत भी शायद जाने से पहले एक बार सोचे। ऐसी ही एक जगह है हॉन्टेड वास विला। बैंगलोर का ये घर पिछले 14 सालों से यहां किसी के आने का इंतजार कर रहा है, पर किसी का आना तो दूर, लोग इसकी परछाई से भी दूर रहना पसंद करते हैं। इसलिए 14 सालों से ना तो ये घर बिका है और ना ही इस घर में आज तक कोई रह सका है। क्या है इस घर का राज जिसने बना दिया है इस घर को एक हॉन्टेड प्लेस? करीब 100 साल पुराना है। लोग कहते हैं यहां वास नाम का एक वकील रहा करता था जिसकी दो बेटियां थीं। वास के मरने के बाद ये दोनों बेटियां इसी घर में रहती थीं, जिनमें से एक बेटी की किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी और उसकी लाश को उसी घर में कहीं दफन कर दिया। उस समय उसकी उम्र करीब 75 साल की थी। उसके कातिल का आज तक कोई पता नहीं चल सका। उसकी मौत की कहानी जैसे उसकी लाश के साथ ही इस घर की चार दीवारी में कैद हो गई। तब से अब तक इस घर में कोई नहीं रह सका, या यूं कहें कि उस भटकती आत्मा ने किसी को इस घर में रहने नहीं दिया। जब भी इस घर का सौदा होने की बात चलती है तो या तो खरीदार के घर कोई भारी विपत्ति आ जाती है या उसका अपना कोई बुरी तरह बीमार हो जाता है। कई लोगों का तो ये तक कहना है कि इस घर को देखने आए लोगों का जिंदगी तक ने साथ छोड़ दिया। टूटा फूटा सा ये घर अब लगभग खंडहर बन चुका है। टूटे शीशे, टूटे फूटे बर्तन, सोफे और फर्नीचर बस यही इस घर में सदियों से पड़े हुए हैं। पर कोई इंसान यहां की तरफ कदम भी नहीं रखना चाहता। सुनने में ऐसा आता है कि रात होने पर इस घर के आसपास रहने वाले लोग अपना रास्ता तक बदल लेते हैं, क्योंकि जो रास्ता नहीं बदलते मौत उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। The Haunted Night
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
2: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला

सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज़, एक खूबसूरत सी अदाकारा, अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज के सफ़र में, हम इसी खूबसूरत सफ़र को लेकर के साथ में उनकी कई चीज़ों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफ़र होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए पहला गाना सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं के फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपने अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था।

बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाईं। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा सा गीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोकगीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थीं। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो ज़रा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, ज़रा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थीं, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी, ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार SD वर्मन से जिद की कि गाने की शुरुआत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज़ से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया की जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबा गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो डरना क्या कि शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से। आप सही बोला, फिल्म

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी। रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नज़र में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्यौहार था। दर्द छुपाकर भी उन्होंने हंसना सीखा। हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रहीं। अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई। पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफ़र को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम संग मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज ख्वाहिश।
0: और मैं हूँ अर्जिंग गुमसुम।
1: भूले बिसरे गीतों की ये शाम यही थम जाए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में। तब तक आप सभी को शुभरात्रि।
0: शुभरात्रि।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-74-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।